मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 11 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:58.45 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। समय सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयास

0: प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडिया में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है विचार मंथन।

मनुष्य का जीवन एक महानदी की भांति है जो अपने बहाव द्वारा नवीन दिशाओं में अपनी राह बना लेती है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर।

अभी आपने समूह स्वर में ये देशभक्ति रचना सुनी। रचनाकार थे खुर्शीद अजय। अब आपको सुनवा रहे हैं सुरेश वाडकर का गाया ये भजन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बलबीर निर्दोष और ईश्वर का ये भजन। गायक थे नरेंद्र चंचल और साथी। इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है चिंतन परम सुख। आलेख प्रोफेसर रंगनाथ शुक्ल का है, वाचक है दिनेश नामदेव।
1: वर्तमान समय में क्या शिक्षित क्या अशिक्षित, प्रायः अधिकांश जन समुदाय सांसारिक भोग विलास को ही सच्चा सुख समझकर भौतिक उन्नति की चेष्टा में लगा हुआ दिखाई दे रहा है। इस परम सत्य को लोग भूल गए हैं कि विषयेंद्रिय संयोग जनित भौतिक सुख नाशवान क्षणिक और परिणाम में सर्वथा दुख का ही दूसरा रूप है। आजकल हमारे अनेक पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त विद्वान जो अपने को बड़े विचारशील तर्क निपुण और बुद्धिमान समझते हैं, वे पाश्चात्य संस्कृति को जीवन में अपनाकर विलास प्रियता और जड़ेंद्रिय चरितार्थ पर मोहित हो रहे हैं और वेद शास्त्र कथित धर्म के सूक्ष्म तत्व को ना समझकर प्राचीन आदर्श सभ्यता की अवहेलना कर रहे हैं। ऐसे विचार रखने वालों को समझाकर अपने प्राचीन आदर्श की ओर आकर्षित करने की विशेष आवश्यकता है और इसी से सबका मंगल है। विचार करने पर आपको ये विदित हो जाएगा कि पाश्चात्य सभ्यता वास्तव में हमारे देश धर्म धन सुख तथा हमारी आयु का विनाश करने वाली है। सभ्यता के संसद से ही आज हमारा देश अपने चिरकालीन धर्म पथ से विचलित होकर अधोगति की ओर जा रहा है। इस प्रकार ये सभ्यता हमारे सांसारिक सुखों का भी विनाश कर रही है। उससे सच्चे सुख की आशा करना तो विडंबना मात्र है। इसलिए सबको ये बात निश्चित रूप से समझ लेनी चाहिए कि पाश्चात्य सभ्यता और उसका अनुकरण हमारे लिए किसी प्रकार हितकर नहीं है। इससे हमारे धर्म के भाव का विनाश होता है और हमें केवल भौतिक उन्नति के पीछे भटककर सच्चे लाभ से वंचित रहने को बाध्य रहना पड़ता है। विचार करने पर प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को समझ सकता है। खाना पीना सोना इत्यादि सांसारिक भोग जनित सुख तो मनुष्य के अलावा सारे जीवों को मिलते हैं, किंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य का जन्म केवल भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए नहीं हुआ है। मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य तो उस सच्चे सुख को प्राप्त करना है।

0: भोग विलास तो उस साधक को नाशवान, क्षणिक और प्रत्यक्ष दुख के रूप में प्रतीत होने लगते हैं। साधक से इस प्रकार की वृत्तियां बहुत शीघ्र संसार से विमुख होकर भगवान के स्वरूप में अपने आप को समर्पित कर देती हैं, और मनीषियों द्वारा इसी को ही सच्चा सुख कहा गया है। हमें इस बात पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य सच्चिदानंद परम ब्रह्म सर्वशक्तिमान ईश्वर का साक्षात्कार करना है। अतएव इन क्षणिक नाशवान और बनावटी सुखों का सर्वथा परित्याग कर हमें अत्यंत शीघ्र तत्पर होकर उस सच्चे सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के साधन में उत्साह और दृढ़ता पूर्वक लग जाना चाहिए। यही मानव प्राणी का सच्चा सुख है, और आज के चिंतन का संदेश भी यही है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन परम सुख, आलेख प्रोफेसर रंगनाथ शुक्ल का था, वाचक थे दिनेश नामदेव। मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का गायन। गायक हैं श्रीकांत पारगांवकर।

श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को वन की मात्र एक झलक दिखाकर लौटा लाने में, जैसा राजा दशरथ ने चाहा था, सुमंत्र सफल नहीं हुए। शोक और संताप की मूर्ति सुमंत्र महाराज के सम्मुख उपस्थित होकर उस करुण दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। श्री राम ने कहला भिजवाया है कि पिता के अनुग्रह से वन में उन्हें सभी प्रकार से सुख मिलेगा। पिता की आज्ञा का पालन कर वे सकुशल वापस लौट आएंगे। नगरवासियों के लिए उन्होंने विनय पूर्वक अनुरोध किया है कि वही लोग उनके परम हितैषी होंगे जो सब प्रकार से महाराज को सुखी और संतुष्ट रखेंगे। प्रिय अनुज भरत के लिए संदेश है कि राज्याभिषेक हो जाने के बाद भी वे नीति के मार्ग पर चलकर मन, वचन और कर्म से प्रजा का पालन और माताओं का सम्मान करें।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का गायन, स्वर श्रीकांत पारगांवकर का था। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:45 हुए, लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस का गाना आपने सुना। अब हम आपको सुनवा रहे हैं किसान भाइयों के लिए कृषि सामयिकी। इसमें किसान भाई सुने पुराने फल बागों के सुधार के बारे में जानकारी।
1: आज आपको बताते हैं कि आपके पुराने फल बागों को कैसे सुधारना है। सबसे पहले तो पुराने फल बागों के वृक्षों की शाखाओं को चिन्हित कर लेते हैं और भूमि से एक निश्चित ऊंचाई से, जैसे कि यदि आम का वृक्ष है तो 4 से 5 मीटर की ऊंचाई पे, अमरूद में 3 से 4 मीटर की ऊंचाई से, इस प्रकार अन्य वृक्षों की शाखाएं जिनमें नए कल्ले फूटने की क्षमता होती है, उन सभी फल वृक्षों की शाखाएं काट देते हैं। शाखाओं का कृंतन का समय वृक्षों की सुसुप्त अवस्था के समय करना ठीक रहता है। शाखाएं जिनको काटा जाता है, इस कार्य के लिए शक्ति चलित आरी का प्रयोग करें और ध्यान रखें कि कृंतन के समय शाखाएं फटने ना पाएं। सूखी और रोगग्रस्त शाखाएं काट कर अलग कर दें। अब जो कटा हुआ भाग है उस पे बोर्डो पेस्ट का लेप लगाने से हानिकारक कीटाणुओं का प्रभाव इसमें नहीं होता है। जीर्णोद्धार या सुधार के लिए कृंतन एकांतर पंक्तियों में करना चाहिए ताकि आर्थिक प्रभाव इसमें कम पड़ता है और सूर्य का प्रकाश समुचित रूप से पड़ने से कल्ले स्वस्थ और मजबूत बनते हैं। उपचारित वृक्षों के चारों ओर थाला बनाकर 2.5 किलोग्राम यूरिया, 3 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1.5 किलोग्राम म्यूरेटा पोटाश प्रति वृक्ष की दर से तने के चारों ओर लगभग 1 से 1.5 मीटर के घेरे में अच्छे से गुड़ाई करके प्रयोग करें। आधी मात्रा यूरिया की और पोटाश और सिंगल सुपर फास्फेट की पूरी पूरी मात्रा जो हमने बताई है, ये ठंड में आप हो सके तो फरवरी के अंत में आम के वृक्षों में और अमृत के लिए 900 से 1000 ग्राम यूरिया, 2.5 किलोग्राम सुपर फास्फेट, 1 किलोग्राम म्यूरेटा पोटाश वृक्षों के थालों में अच्छे से गुड़ाई करके दें। अमृत में तो ये उर्वरक की मात्रा आपको अभी देनी होगी और अगले 30 दिन तक भी आप इसको दे सकते हैं। यूरिया की आधी मात्रा और सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेटा पोटाश की पूरी मात्रा एक साथ दें और जो आधी मात्रा यूरिया की बची है उसको सितंबर अक्टूबर में दे दें। इन उर्वरकों के साथ साथ गोबर की खाद आम के वृक्ष में 100 से 120 किलोग्राम, अमरूद में 50 किलोग्राम प्रति वृक्ष जो अगला माह आने वाला है इसमें थालों में डालकर अच्छे से मिला दें। आम वृक्षों में मानसून आते तक 10 से

0: 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए, जिससे कि कलियों की वृद्धि अच्छी होती है और वो सूख नहीं पाते। अमरूद में चूंकि कटाई छटाई अप्रैल मई माह में ही की जाती है, इसलिए सिंचाई का प्रबंधन भी मानसून आते तक करें और 10 से 12 दिन के अंतर पर अच्छे कल्ले के लिए सिंचाई जरूर करें। सिंचाई के साथ साथ थालों में उगने वाले खरपतवारों के लिए निदाई गुड़ाई करते रहें, उनको निकाल कर नष्ट करते रहें। थालों में नमी बनाए रखने के लिए पॉलिथीन या आम या अमरूद की पत्तियों का पुआल बना के या फिर सूखी घास डाल के बिछा कर इसको ढक दें। आम और अमरूद में जो नए कल्ले निकलते हैं वे प्रारंभ में काफी घने होते हैं, जिनका विरलीकरण बहुत जरूरी होता है। प्रत्येक शाखा के बाहर की ओर के कल्ले जो होते हैं वो 8 से 10 की संख्या में छोड़कर अन्य को काटकर आप अलग कर दें। विरलीकरण के बाद दवा का घोल बना लें और उसका छिड़काव कर दें। इससे पत्तियों पर लगने वाले फफूंद जनित रोग जो होते हैं वो नहीं होंगे। आम वृक्षों में बागों में सामयिक निदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए ताकि भूमि में छुपे हुए कीट और उनके अंडे नष्ट होते रहें। समुचित देखरेख के अभाव में ये क्रंतित वृक्ष रोगग्रस्त और तनाछेदक कीट से ग्रसित हो सकते हैं। पर्ण धब्बे जैसे रोग, जिसको कि एंथ्रेक्नोस कहते हैं, जिससे पत्तियों पर भूरे काले रंग के धब्बे पड़ते हैं और पत्तियां सूखने लगती हैं, इसके लिए दवा घोल बनाकर छिड़काव करें। यह छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2-3 बार करना चाहिए। तनाछेदक के लिए यदि तने में छिद्र दिखे तो उसके अंदर दवा का घोल या मिट्टी तेल या पेट्रोल से भीगी हुई रुई को छेद में अंदर डालकर गीली मिट्टी से छेद को बंद कर दें। इससे इस कीट पर नियंत्रण हो जाता है। आम में नए सृजित कल्ले 2 वर्ष के बाद पुष्पन और फलन करने लगते हैं। इन वृक्षों से 60 से 65 किलोग्राम गुणवत्ता युक्त फल प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अमरूद से भी दूसरे वर्ष 40 से 50 किलो फल प्राप्त होते हैं।
1: कृषि सामयिकी में किसान भाई सुन रहे थे पुराने फल बागों के सुधार के बारे में जानकारी। मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग सुबह 8:30 पर हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। 9 बजे लोक संगीत का कार्यक्रम होगा लोक रसधार। कलाकार होंगे मिठाई लाल चक्रवर्ती और सुकुल सिंह धुर्वे। 9:30 पर आकाशवाणी भोपाल से सुनिएगा नाटक गौरव गान की 150वीं वंदे मातरम। सुबह 10:05 पर फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा 10:20 पर।

दिन में 1 बजे महिला सभा आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति। इसमें सुनिएगा, बच्चों में टीकाकरण कब और क्यों, इस विषय पर डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल से कामना श्रीवास्तव की बातचीत। लोक संगीत 1:33 पर, सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा 1:45 पर, फिल्म संगीत दिन में 2 बजे। हमारी दूसरी सभा शाम 5 बजे आरंभ होगी न्यूज हेडलाइंस से। 5:02 पर युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम होगा युवाणी। इसमें आज सुनिएगा डॉक्टर संजय भारती से नीलाभ वाजपेयी की बातचीत। विषय होगा युवाओं में होने वाले श्वसन संबंधी विकार, कारण और बचाव। फिल्म संगीत 5:33 पर, शाम 6 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 6:30 पर लोक संगीत में सुनिएगा प्रकाश तिवारी की गाय लोकगीत। 6:45 पर सुगम संगीत, कलाकार होंगे निकिता कोढ़े। कृषि जगत कार्यक्रम शाम 7:21 पर, इसमें आज किसान भाई सुनेंगे श्री गुप्तेश्वर द्वारका गुप्त का बुंदेली कविता पाठ। फिल्म संगीत 8:35

मिनट पर, स्पॉटलाइट रात 9:15 पर, 9:30 पर आपको सुनवाएंगे धारावाहिक हंसना मना है। आज आप सुनेंगे इसका पांचवा भाग, आलेख हेमंत कुलकर्णी, परिकल्पना विमल कांत येंडे, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर बैजनाथ गौतम। शास्त्रीय संगीत रात 10 बजे, इसमें आज सुनिएगा सुभाष दीक्षित का वायलिन पर बजाया राग केदार। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मनभावन रात 10:30 पर।

मीडियम व्यापार आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, 6:55 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 7:10 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदेहल्याः राष्ट्रपतिभवनस्य सांस्कृतिक केन्द्रे नीति आयोगस्य एकादशे शासि परिषदोपवेशने अध्यक्षतां विधास्यति। विकसित भारताय प्रधानमन्त्रिणः टीम इंडिया इति संकल्पानुगुणम् अस्य वर्षस्य मुख्य विषयो विकसित भारतम् @2047 इत्यस्य कृते समावेशी मानव विकासः इन्क्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत @2047 इति अस्ति। विषयोयम् आयु क्षेत्र लिंग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमिकायाः भेदं विनैव प्रत्येकं भारतीयस्य कल्याणाय विकासाय च केन्द्रीकृतो वर्तते। उपवेशने अस्मिन् अस्य लक्ष्यस्य प्राप्तये दृष्टिं समेत्य देशस्य प्रत्येकं नागरिकं प्रति अस्य सुदृढमापनयोग्यपरिणामेषु परिवर्तनस्य विषये गभीरं मन्थनं भविष्यति। अस्मिन् महत्वपूर्णे उपवेशने समावेशी मानव विकास प्रारूपस्य विषये चर्चां कर्तुं सर्वे मुख्यमन्त्रिणः केन्द्रशासित प्रदेशानाम् उपराज्यपालाः च एकत्रिताः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आश्वासितवान् यत् देशस्य 44,00,000 नागरिकाणाम् आकांक्षाः निश्चप्रचं पूरयिष्यन्ते। तेन समुदीरितं यत् राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधन दलं सदैव राष्ट्रस्य विश्वासं सुदृढं कृतवत् अस्ति। अत्रावधेयं यत् श्रीमोदी गतरात्रौ नवदेहल्याः भारत मण्डपे आयोजितं NDA सम्मेलनं संबोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा भणितं यत् देशस्य प्रत्येकमपि नागरिकः विकसित भारतस्य स्वप्नेन पूरितो वर्तते। एषः स्वप्नः इदानीं कस्यापि एकस्य व्यक्तिविशेषस्य प्रशासनस्य वा राजनीतिकदलस्य परिधौ सीमितो नैवास्ति।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा। देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: अस्मिन् अवसरे एनडीए घटक दलैः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऐतिहासिक उपलब्धेः श्लाघनाय एकः संकल्प प्रस्तावः स्वीकृतः। एतदन्तरं सम्पूर्ण विश्वतः प्रधानमन्त्रिणे अभिनन्दन सन्देशाः आगच्छन्तः सन्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा

0: उर्सुला वॉन डेर लेयन इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जर्मनी देशस्य चांसलर फेडरिक मर्स इजराइल देशस्य प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कनाडा देशस्य प्रधानमंत्री मार्क कॉर्नी सहैव दक्षिण कोरिया देशस्य राष्ट्रपतिः ली जे म्यूंग इत्यादयः प्रमुख वैश्विक नेतारः श्री मोदिनं प्रति वर्धापनं प्रेषितवन्तः। संस्कृति मंत्रालयेन गतवर्षस्य कृते संगीत नाटक अकादमी पुरस्काराः अथ च उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्काराः घोषिताः। अकादमी संघस्य सामान्य परिषदा संगीत नृत्य रंगमंच पारंपरिक लोक जनजातीय कला वैविध्येभ्यः कलामंचं यावत् विविध क्षेत्रेभ्यः अष्टोत्तरैकशत प्रसिद्धाः कलाकाराः चतुर्विंशत्युत्तरद्विसहस्रतमवर्षस्य अथ च पञ्चविंशत्युत्तरद्विसहस्रतमवर्षस्य अकादमी पुरस्कारार्थं चिताः। एते चिताः पुरस्कारविजेतारः अशेषस्य हि देशस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। ये विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः च सम्बद्धाः सन्ति। बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धायाः महिलानां वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य द्वितीय चक्रं प्रति प्रविष्टवत्यौ। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई भी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुल्ता रांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक आज नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा, देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के दौरान कल विदेशी मेहमानों ने किया ग्रामीण हाट का दौरा। और प्रदेश के ग्वालियर और जबलपुर समेत 34 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए टीम इंडिया के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे, जो चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, जिनमें आधारभूत मानव पूंजी, भविष्य के लिए आवश्यक कौशल विकास, उत्पादक रोजगार, उद्यमिता और विकेंद्रीकरण विकास, स्वास्थ्य, पोषण और जन कल्याण तथा सभी के लिए समानता और गरिमा सुनिश्चित करना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी और एनडीए ने हमेशा राष्ट्र के विश्वास को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है, देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: इसके पूर्व एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देते हुए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया। सम्मेलन में एनडीए के सभी सहयोगी दलों के प्रमुख नेता, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर भी चर्चा की गई। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भावनात्मक पत्र लिखा है। डॉक्टर यादव ने इस विशेष उपलब्धि पर श्री मोदी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण, अधोसंरचनात्मक विकास तथा देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश को मिले अभूतपूर्व सहयोग के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया है। राज्यसभा में मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर उम्मीदवारों की अंतिम सूची कल जारी कर दी गई है। रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा द्वारा जारी सूची में भाजपा उम्मीदवार तरुण चुग, महेश केवट और रजनीश अग्रवाल के नाम शामिल हैं। इससे पहले 9 जून को कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया था, जिसके खिलाफ कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कल नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। कांग्रेस आज इस मामले में उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 15 जून को शिलांग के मावक सियांग स्थित लारिती परफॉर्मिंग केंद्र में पूर्वोत्तर भारत अवसंरचना शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी एनईआई इंफ्रा शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करेंगे। मेघालय सरकार 15 और 16 जून को पूर्वोत्तर भारत अवसंरचना शिखर सम्मेलन और एनईआई इंफ्रा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगी, जिसमें पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ 8 केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से आकाशवाणी एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है, जिसके आज के अंक में हम पेश कर रहे हैं सरकार द्वारा युवा शक्ति को सशक्त बनाने के लिए किए गए प्रयासों पर एक रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के दौरान विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने कल ग्रामीण हाट का भ्रमण किया। 5 दिवसीय सम्मेलन में 21 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ग्रामीण हाट में विदेशी मेहमानों ने प्रदेश के कृषि उत्पादों, हस्तशिल्प, प्राकृतिक खेती आधारित उत्पादों और एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत प्रदर्शित वस्तुओं को देखा। वहीं मंडला की मिलेट क्वीन लहरी बाई के दुर्लभ बीज संग्रह ने भी विदेशी मेहमानों का ध्यान आकर्षित किया। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यापार, जलवायु अनुकूल खेती और कृषि नवाचार जैसे अहम विषयों पर चर्चा हो रही है। 12 जून को कृषि मंत्रियों का एक विशेष संवाद भी इस सम्मेलन में आयोजित किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर राष्ट्रव्यापी अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू करके यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस ऑडिट में स्टेशन भवन, विद्युत उपकरण, वातानुकूलन और वेंटिलेशन सिस्टम तथा आपातकालीन निकास द्वार और अग्निशमन उपकरण सहित सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा अवसंरचनाओं को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों की कल घोषणा कर दी। इसके साथ ही उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कारों की घोषणा भी की गई। सामान्य परिषद ने वर्ष 2024 और 25 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों के लिए संगीत, नृत्य, रंगमंच, पारंपरिक लोक, आदिवासी संगीत, नृत्य, रंगमंच और कठपुतली कला सहित विभिन्न क्षेत्रों से 108 कलाकारों का चयन किया है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून आने के पहले की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। चक्रवात के दो अलग अलग सिस्टम बनने से कल कुछ हिस्सों में आंधी के साथ बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग ने आज ग्वालियर और जबलपुर समेत प्रदेश के 34 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार आंधी बारिश का यह दौर कल भी जारी रह सकता है और प्रदेश में मानसून के अगले

सप्ताह सक्रिय होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत इंदौर और आसपास के जिलों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए हरिद्वार ऋषिकेश तीर्थयात्रा आयोजित की जा रही है, जो कि 20 जून को शुरू होगी। इस यात्रा में इंदौर के साथ धार, बड़वानी और देवास के वरिष्ठ नागरिक शामिल होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय की स्थापना के 13वें वर्षगांठ समारोह पर आयोजित 5 दिवसीय महुआ महोत्सव का समापन कल 13 राज्यों के पारंपरिक और जनजातीय नृत्यों की प्रस्तुति के साथ हुआ। मैहर जिले की प्रभारी मंत्री राधा सिंह ने कल जिला मुख्यालय में 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली नवीन जिला पंचायत भवन निर्माण का भूमि पूजन किया। शिवपुरी कलेक्टर ने आवास प्लस के लंबित आवासों की लंबित सभी किश्तों का भुगतान समय सीमा में करने के निर्देश दिए। आगरमालवा जिले के बेरोजगार युवक युवतियों को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी कल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के सफल संचालन के 10 वर्ष पूरे होने पर झाबुआ में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। गुना में जिले की सहकारी दुग्ध समितियों के सदस्यों और अध्यक्षों के लिए चारा विकास कार्यक्रम के तहत साइलेज एवं गोरस ऐप की उपयोगिता विषयक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इंदौर के ग्राम माचल में MPIDC द्वारा अत्याधुनिक एवं एकीकृत लॉजिस्टिक हब के लिए 23 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि आवंटित की गई है। झाबुआ के राणापुर में SDM ने फार्मर रजिस्ट्री का लक्ष्य एक सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए और पन्ना टाइगर रिजर्व में विशेष स्वच्छता पखवाड़े के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर से प्लास्टिक कचरे को हटाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक आज नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में NDA सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। इंदौर में वृक्ष कृषि सम्मेलन के दौरान कल विदेशी मेहमानों ने किया ग्रामीण हाट का दौरा और प्रदेश के ग्वालियर और जबलपुर समेत 34 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडिया में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर।

श्रोताओं, स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर में। आज है 11 जून और आज एक विशेष दिन है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 11 जून का दिन विशेष महत्व रखता है। इसी दिन वर्ष 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में महान क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था। वे उन अग्रणी स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का बिगुल फूंका और युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत की। रामप्रसाद बिस्मिल का बचपन ऐसे दौर में बीता जब देश में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष तेजी से बढ़ रहा था। युवावस्था में ही उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख संस्थापकों में से एक थे और देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने

के लिए संगठित प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाई। बिस्मिल का संबंध उस दौर के अनेक प्रसिद्ध क्रांतिकारियों से था, जिनमें अशफाकउल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु, सुखदेव और रोशन सिंह जैसे नाम शामिल हैं। इन क्रांतिकारियों ने मिलकर ब्रिटिश शासन को चुनौती देने के लिए कई साहसिक कदम उठाए। स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन को काकोरी के निकट रोककर धन जब्त किया था। इस कार्यवाही का उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए संसाधन जुटाना और ब्रिटिश शासन को चुनौती देना था। इस घटना के बाद बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई और लंबी न्यायिक प्रक्रिया चली। रामप्रसाद बिस्मिल केवल क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील कवि और लेखक भी थे। उनकी रचनाओं ने युवाओं में देशभक्ति और बलिदान की भावना को मजबूत किया। उनकी लेखनी आज भी स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणादायक विरासत का हिस्सा मानी जाती है। काकोरी प्रकरण में दोषी ठहराए जाने के बाद रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी सहित कई क्रांतिकारियों को मृत्युदंड सुनाया गया। 19 नवंबर 1927 को मात्र 30 वर्ष की आयु में रामप्रसाद बिस्मिल ने हंसते हंसते देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे महान सपूत को शत शत नमन है।

सोनू निगम और साथियों की आवाज़ में अभी आपने ये देशभक्ति गीत सुना। फिल्म थी द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, संगीत ए आर रहमान का था।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: को जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अब बात करते हैं खेल दिवस की। 11 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस खेल को संरक्षित करने, बढ़ावा देने और प्राथमिकता देने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, ताकि सभी लोग, विशेष रूप से बच्चे, इसके लाभ प्राप्त कर सके और अपनी पूरी क्षमता तक विकसित हो सके। खेल महज मनोरंजन से कहीं बढ़कर एक सार्वभौमिक भाषा है, जिसे सभी उम्र के लोग बोलते हैं और जो राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक सीमाओं से परे है। ये साझा जुनून समुदाय की भावना और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देता है। ये व्यक्तियों में लचीलापन, रचनात्मकता और नवाचार को भी बढ़ावा देता है। विशेष रूप से बच्चों के लिए खेल रिश्तों को मजबूत बनाने और आत्मनियंत्रण, आघात से उबरने और समस्या समाधान कौशल को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये बच्चों को संज्ञानात्मक, शारीरिक, रचनात्मक, सामाजिक और भावनात्मक कौशल विकसित करने में मदद करता है, जो उन्हें तेजी से बदलती दुनिया में सफल होने के लिए आवश्यक है। खेल के अवसरों को सीमित करना बच्चे के स्वास्थ्य और विकास में सीधा अवरोध उत्पन्न करता है। शैक्षिक परिवेश में खेल आधारित अधिगम को विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करने का एक प्रभावी तरीका माना गया है। ये अधिगम को अधिक आनंददायक और प्रासंगिक बनाने में सहायक होता है, जिससे सीखने की प्रेरणा और जानकारी को याद करने की क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा खेल को सहिष्णुता, लचीलापन को बढ़ावा देने और सामाजिक समावेश, संघर्ष निवारण और शांति निर्माण में सकारात्मक प्रभाव डालने वाला माना जाता है। इसे मान्यता देते हुए संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन के अनुच्छेद 31 के तहत खेल को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर खेल के महत्व को बढ़ाने के लिए एकजुटता का अवसर प्रदान करता है। ये विश्वभर में शिक्षा और सामुदायिक परिवेश में खेल को एकीकृत करने के लिए नीतियों, प्रशिक्षण और वित्त पोषण की मांग का संकेत देता है। 2026 का जो विषय है, खेल की रक्षा करें, बचपन की रक्षा करें। जून माह के दौरान यूनिसेफ खेल के विज्ञान से लेकर पूरे परिवार के लिए मनोरंजक गतिविधियों तक हर विषय पर अभिभावकों के लिए विशेषज्ञ सुझाव और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। ये देखते हुए कि खेल का प्रचलन धीरे से ऑनलाइन हो रहा है, एजेंसी अभिभावकों को ऐसे गाइड और स्पष्टीकरण उपलब्ध करा रही है, जिससे वे अपने बच्चों के ऑनलाइन अनुभवों को सुरक्षित और सकारात्मक बनाए रखने में मदद कर सके। यूनिसेफ की वेबसाइट पर इस दिन के महत्व, परिवारों के लिए संसाधनों, प्रत्येक बच्चे के खेलने के अधिकार को पूरा करने के लिए सरकारों से की गई अपीलों और दुनिया भर में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खेल जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है? बच्चे खेल के माध्यम से सबसे अच्छी तरह सीखते हैं। खेल बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास के सभी क्षेत्रों में सीखने के सशक्त अवसर प्रदान करता है। खेल के माध्यम से बच्चे दूसरों के साथ संबंध बनाना सीखते हैं, नेतृत्व कौशल

विकसित करते हैं, लचीलापन विकसित करते हैं, रिश्तों और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना सीखते हैं और साथ ही अपने डर पर काबू पाना सीखते हैं। खेलते समय बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं। बच्चे अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए खेलते हैं। सामान्य तौर पर खेल बच्चों को अपनी कल्पना और रचनात्मकता को व्यक्त करने और विकसित करने का मंच प्रदान करता है, जो आज की तकनीक आधारित नवोन्मेषी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण कौशल है। खेल खेल में की जाने वाली बातचीत माता पिता, देखभाल करने वालों और बच्चों के कल्याण और सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य में योगदान देती है। जब मानवीय संकट बच्चों की दुनिया को उलट पुलट कर देते हैं तो खेल ही वो माध्यम है जिसके द्वारा बच्चे प्रतिकूल अनुभवों से सुरक्षा और राहत पा सकते हैं, साथ ही दुनिया के साथ अपने अनुभवों को समझने और उन पर विचार करने में सक्षम हो सकते हैं। जब बच्चे युद्ध, संघर्ष और विस्थापन के कारण अपने घरों से विस्थापित हो जाते हैं तो माता पिता, देखभाल करने वालों और साथियों के साथ स्नेहपूर्ण संबंध, हिंसा, संकट और अन्य प्रतिकूल अनुभवों के प्रभावों से बचाव के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। खेल बच्चों को सुकून और शांति प्रदान करता है। माता पिता, देखभाल करने वाले और बच्चों के बीच मनोरंजक अंतः क्रियाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारों और अन्य हितधारकों को एक अनुकूल वातावरण बनाने की आवश्यकता है। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई खेल की, और अब सुनते हैं ये गीत।

भाग मिल्खा भाग। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना दिव्या कुमार की आवाज़ में। गीत प्रसून जोशी का था, संगीत शंकर एहसान लॉय का। और श्रोता, अब हम आपको सुनवा रहे हैं साबरी ब्रदर्स, सोनू निगम, अलका याग्निक और तौसीफ अख्तर की आवाज़ में समीर के बोल। धुन बनाई है नदी मिश्रवण ने। फिल्म का नाम है ये दिल आशिकाना।

लीजिए, आप सुनिए मदन मोहन और जयदेव के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी के बोल, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की है।

0: मीडियम में 374.5 मीटर यानी 801 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है, 8 बजने वाले हैं। अब समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से हम रिले कर रहे हैं।
1: बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
4: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है।

0: है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्व भर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
3: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
2: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10.82 करोड़ लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
4: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
2: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10.55 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1.12 करोड़ से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: ही हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
0: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओरमूज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में NDA सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
4: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप है। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
0: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
5: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्य ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1,000 रुपये तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में NTA अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने NTA ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमेरिका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में POK की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने POK में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का POK में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी ITBP। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है मोहन किशोर नामदास। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा और महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझ दे मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

भारतीय ज्ञान परंपरा के आकाश में कुछ ऐसे नक्षत्र उदित हुए हैं जिनका प्रकाश समय की सीमाओं को लांघकर पीढ़ियों का मार्ग आलोकित करता रहा है। आयुर्वेद के पुनरुत्थान से जुड़े एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति। जब परंपरा और आधुनिकता के बीच संवाद की आवश्यकता थी, तब उन्होंने आयुर्वेद की सनातन चेतना को नए युग की धड़कनों से जोड़ा। उनके लिए आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं थी, बल्कि वो आयुर्वेद को भारतीय संस्कृति की जीवंत आत्मा मानते थे। उसे जीवन को संतुलन, स्वास्थ्य और समरसता प्रदान करने वाली एक संपूर्ण दृष्टि मानते थे। ज्ञान उनकी साधना था, सेवा उनका धर्म और आयुर्वेद का उत्थान उनका संकल्प। वो आधुनिक भारत में आयुर्वेद चिकित्सा और

सार्वजनिक स्वास्थ्य के सबसे प्रमुख प्रणेताओं में से एक थे। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति का जन्म 3 मार्च सन 1880 को आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के माधोवरम गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम

उनके बाल्यकाल पर उनके दादा सुब्बा रायडू और प्रसिद्ध समाज सुधारक कुंदुकुरी वीरेश लिंगम का गहरा प्रभाव पड़ा। इन दोनों विभूतियों के सानिध्य ने उनके भीतर ज्ञान और समाज सेवा के बीज बोए। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उनकी माताजी गंभीर रूप से बीमार हुईं। उपचार के दौरान अचंता लक्ष्मीपति की भेंट राजमहेंद्रम के एक प्रसिद्ध वैद्य डॉक्टर सीतारमैया से हुई। ये केवल एक वैद्य से भेंट नहीं थी, बल्कि आयुर्वेद से उनका पहला सटीक परिचय था। डॉक्टर सीतारमैया ने उन्हें आयुर्वेद के व्यावहारिक सूत्रों से परिचित करवाया और उनके मन में इस भारतीय चिकित्सा परंपरा के प्रति आदर भाव जागृत किया। इस तरह भारत की इस अमूल्य विरासत को नई प्रतिष्ठा दिलवाने का संकल्प उनके मन में जागा।

ये वो समय था जब भारत में आधुनिक चिकित्सा शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा था। अचंता लक्ष्मीपति ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को समझने का निश्चय किया। सन 1904 में उन्होंने बीए की शिक्षा पूरी की तथा छात्रवृत्ति प्राप्त कर मद्रास मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। इस तरह सन 1909 में उन्होंने एलोपैथी चिकित्सा में प्रामाणिक डिग्री हासिल की। सन 1910 में उन्होंने मद्रास में अपनी प्रैक्टिस शुरू की और वो वेंकटगिरी के राजा जैसे संभ्रांत वर्ग के पारिवारिक चिकित्सक बने। लेकिन सन 1914 में ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट पारित किया गया, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद को गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति घोषित करना था। इसके विरोध में डॉक्टर लक्ष्मीपति ने अपना नाम एलोपैथी के मेडिकल रजिस्टर में दर्ज करवाने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार के इस कदम को उन्होंने केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं माना, उन्होंने इसे भारतीय ज्ञान परंपरा के सम्मान का प्रश्न समझा। ये उनके पेशेवर जीवन के लिए जोखिमपूर्ण समय था, लेकिन इसी समय उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का प्रवेश हुआ, वैद्य रत्न पंडित दीवी गोपाल चारलू। वो मद्रास के सुप्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान थे जिन्होंने अचंता लक्ष्मीपति की प्रतिभा को पहचाना तथा अपने संरक्षण में उन्हें आयुर्वेद के गहन अध्ययन का अवसर दिया। सन 1914 से 1919 तक अचंता लक्ष्मीपति ने उनसे गहन ज्ञान प्राप्त किया। सन 1919 में विश्व स्पेनिश फ्लू नामक घातक महामारी की चपेट में आ गया। इस महामारी ने दुनिया की एक तिहाई आबादी को अपनी चपेट में ले लिया था। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ये महामारी फैली थी। ऐसे कठिन समय में डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से हजारों रोगियों को राहत पहुंचाई। इस अनुभव ने उनके इस विश्वास को और भी दृढ़ कर दिया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता है। इसके बाद उन्होंने एलोपैथी इलाज पूरी तरह से छोड़ दिया

और स्वयं को आयुर्वेद के लिए समर्पित कर दिया। सन 1920 में उनके गुरु वैद्य रत्न पंडित देवी गोपाल चारलू का निधन हो गया और गुरु का दायित्व शिष्य के कंधों पर आ गया। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति को मद्रास आयुर्वेदिक कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। सन 1920 से 1928 तक उन्होंने इस संस्था को केवल एक शिक्षण केंद्र नहीं बल्कि उसे आयुर्वेदिक चेतना का केंद्र बिंदु बना दिया। इस कॉलेज को चलाने के लिए मुंगला के राजा ने भी बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की थी। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति स्वास्थ्य को जीवन पद्धति का विषय मानते थे। यही कारण है कि उन्होंने सन 1926 में मद्रास के पास स्थित आवड़ी में आरोग्य आश्रम समिति की स्थापना की। ये केवल एक आश्रम नहीं था बल्कि स्वास्थ्य और प्रकृति के समन्वय का प्रयोग था। एक ऐसा स्वास्थ्य ग्राम जहां उपचार के साथ साथ जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने युवा वैज्ञानिक डॉक्टर यल्ला प्रगदा सुब्बा राव की प्रतिभा को पहचान कर उनके प्रारंभिक शोध कार्यों को प्रोत्साहित किया और उनकी उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया, जिन्हें चमत्कारिक औषधियों का जनक माना जाता है। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति पर रमण महर्षि के आध्यात्मिक विचारों का गहरा प्रभाव था, जिन्होंने उनके चिंतन और विचारधारा को एक सार्थक दिशा प्रदान की। वो गांधी जी के विचारों से भी अत्यधिक प्रभावित थे तथा स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई।

सन 1933 में डॉक्टर अजंता लक्ष्मीपति की सेवाओं और नेतृत्व क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई। बीकानेर में आयोजित ऑल इंडिया आयुर्वेद महासम्मेलन में उन्हें अध्यक्ष चुना गया। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे देश में फैल रही थी। लोग उन्हें केवल एक चिकित्सक के रूप में नहीं बल्कि आयुर्वेद का पुनरुत्थान करने वाले मनीषी के रूप में देख रहे थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी यात्रा अभी शेष थी, एक यात्रा जो उन्हें गांधी जी के और निकट ले गई, एक यात्रा जिसने गांव गांव जाकर स्वास्थ्य संदेश पहुंचाया। सन 1938 का साल भारत की स्वाधीनता के स्वप्न से आंदोलित साल था। महात्मा गांधी ग्रामोदय और स्वावलंबन के विचार को जन जन तक पहुंचा रहे थे। इसी समय डॉक्टर अजंता लक्ष्मीपति ने एक अभिनव अभियान आरंभ किया जिसका नाम था आरोग्य यात्रा। वो लगभग 100 चिकित्सकों के साथ पैदल चलते हुए गांव गांव पहुंचे। उन्होंने लोगों को

स्वच्छता, संतुलित जीवन शैली और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सिद्धांतों का महत्व समझाया। वो पंचशुद्धि प्रणालिका के 5 नियमों का संदेश लिए आगे बढ़ते रहे। अपने इस अभियान में उन्होंने प्रत्येक गांव में कम से कम 1 एकड़ भूमि पर औषधीय पौधों का उद्यान विकसित करने हेतु लोगों को प्रेरित किया। उनका मानना था कि स्वास्थ्य अस्पतालों से नहीं बनता, वो विकसित होता है स्वच्छ विचारों, संतुलित आहार और प्रकृति के सानिध्य में। डॉक्टर लक्ष्मीपति के इन प्रयासों से गांधी जी अत्यंत प्रभावित हुए। सन 1939 में गांधी जी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से सेवाग्राम आश्रम आने का निमंत्रण दिया। वर्धा का सेवाग्राम आश्रम उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था। सेवाग्राम पहुंचकर उन्होंने केवल एक चिकित्सक की भूमिका नहीं निभाई, बल्कि उन्होंने स्वास्थ्य और ग्राम विकास के गांधीवादी स्वप्न को मूर्त रूप देने में सहयोग दिया। गांधी जी ने उन्हें आश्रम में एक विशाल उद्यान विकसित करने का दायित्व सौंपा। इस उद्यान का उद्देश्य केवल औषधियां उगाना नहीं था, बल्कि ये सिद्ध करना था कि भारत के गांव अपने स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्मीपति की धर्मपत्नी श्रीमती रुक्मिणी लक्ष्मीपति भी राष्ट्र सेवा को समर्पित रहीं। वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थीं और सन 1946 में मद्रास प्रांत की सरकार में वो सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री बनी। इस तरह पति पत्नी ने साथ मिलकर भारतीय चिकित्सा के विकास की एक नई धारा प्रवाहित की। सन 1947 में भारत की आज़ादी के बाद भी वो राष्ट्र सेवा को समर्पित रहे। गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर वो समाज सुधार के कार्य में भी निरंतर संलग्न रहे। डॉक्टर लक्ष्मीपति अंतरजातीय विवाह के प्रबल पक्षधर थे। यही कारण है कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अपनी जाति से बाहर एक गैर ब्राह्मण युवक से किया। इसके साथ ही वो पृथक आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना के भी पक्षधर थे। सन 1960 में भारत सरकार ने उन्हें योजना आयोग में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया, जहां उन्होंने रोग प्रतिरोधक चिकित्सा और जीवन शैली सुधार पर विशेष बल दिया। उन्होंने तेलुगु और अंग्रेजी भाषा में चिकित्सा पद्धतियों पर लगभग 100 पुस्तकें लिखीं, जिनमें से 63 पुस्तकें विशुद्ध रूप से भारतीय चिकित्सा प्रणालियों और आयुर्वेद के अनुवादों पर आधारित थीं। उनकी आत्मकथा आयुर्वेद के पुनरुत्थान का प्रामाणिक दस्तावेज मानी जाती है। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति को देश भर में भिषग रत्न, प्राणाचार्य तथा आयुर्वेद वाचस्पति जैसी कई उपाधियों से विभूषित किया गया था। आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए उन्होंने 6 अगस्त सन 1962 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। इस दौरान 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में एनडीए सम्मेलन में कहा कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण, अधोसंरचनात्मक विकास तथा देश के हृदय मध्य प्रदेश को मिले अभूतपूर्व सहयोग के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया है। राज्यसभा में मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची कल जारी कर दी गई है। इसमें भाजपा उम्मीदवार तरुण चुग, महेश केवट और रजनीश अग्रवाल के नाम शामिल हैं। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र निरस्त मामले में कांग्रेस आज उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकती है। और मौसम विभाग ने प्रदेश में चक्रवात के 2 अलग अलग सिस्टम बनने से आज ग्वालियर और जबलपुर समेत प्रदेश के 34 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले सप्ताह मानसून के सक्रिय होने का अनुमान है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 9:02 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार। कलाकार हैं मिठाई लाल चक्रवर्ती। आइए सुनते हैं इनके गाए बुंदेली लोकगीत।

अभी आपने मिठाईलाल चक्रवर्ती के स्वर में ये देवी गीत सुना और अब हम आपको सुनवा रहे हैं शुकल सिंह धुर्वे और साथियों के गाए आदिवासी लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार। कलाकार थे शुकुल सिंह धुर्वे और साथी। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 9:30 होने वाले हैं। अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी भोपाल से रिले कर रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है नाटक पसंद अपनी अपनी। इस नाटक के लेखक हैं विलियम शेक्सपियर, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर अरविंद सोनी और रूपांतकार हैं दिनेश राय।
1: प्रस्तुत है नाटक पसंद अपनी अपनी, विलियम शेक्सपियर के मूल अंग्रेजी नाटक एज यू लाइक इट का हिंदी नाट्य रूपांतरण। रूपांतरकार हैं दिनेश राय, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर अरविंद सोनी।
2: ऑरलैंडो, यहां अकेले कैसे बैठे हो?
3: क्या करूं एडम, तुम ही बताओ कहां जाऊं क्या करूं। सब कुछ तो जानते हो तुम, मेरे पिता मरते वक्त 1000 क्राउन छोड़ गए थे मेरे बड़े भाई के पास। किस लिए? ताकि वो मेरी अच्छी तरह परवरिश करे, मुझे पढ़ाए लिखाए, काम धंधे से लगाए, ताकि मैं वो जिंदगी जी सकूं जो सर रोलैंड के बेटे को जीना चाहिए। खुद किसकदर ठाट से रहता है और मैं इस तरह फटेहाल। बहुत हो गया, अब मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं करने वाला।
2: मालिक, तुम्हारे भाई ओलिवर आ रहे हैं, मैं जाता हूं।
3: ठीक है, तुम जाओ, आज तो मैं इसे देख लेता हूं।
4: ऑलरेडो, क्या कर रहे हो यहां?
3: कुछ करने लायक होने दिया है तुमने मुझे?
4: ए, जानते हो किससे बात कर रहे हो तुम?
3: जानता हूं, मेरी रगों में भी वही खून बह रहा है जो तुम्हारी रगों में।
4: बकवास बंद, एक लफ्ज भी मत बोलना वरना।
3: वरना वरना क्या? हाँ बोल,
4: अरे,
3: बोल,
4: अरे,
3: वरना क्या?
4: अरे छोड़ मुझे, छोड़ मेरा गला, छोड़ छोड़।
3: अगर तू मेरा भाई ना होता तो गर्दन दबाने के साथ इस हाथ से तेरी जुबान भी खींच लेता। हाँ जा, छोड़ देता हूं, लेकिन वो सारी रकम जो पिताजी मेरे लिए छोड़ गए हैं तेरे पास है, मेरे हवाले कर दे ताकि मैं भी सलीके की जिंदगी जी सकूं।
4: ठीक है, दे दूंगा, लेकिन फिर?
3: फिर यहां कौन रुकने वाला है?
4: जाते वक्त अपने साथ इस बूढ़े कुत्ते को भी ले जाना।
2: बूढ़ा कुत्ता, या खुदा, मरहूम बड़े मालिक ने तो कभी ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया।
3: एडम, कहां पिताजी और कहां ये? छोड़ो इसे, आओ मेरे साथ।
4: ये कौन आ रहा है? ओह, ये तो चार्ल्स है, ड्यूक का खास पहलवान। आइए आइए पहलवान, आइए सुनाइए, किले की क्या खबरें हैं?
5: वही पुरानी बातें, छोटे ड्यूक फ्रेडरिक ने बड़े ड्यूक को बाहर निकाल दिया, जो 3-4 लॉर्ड्स उनके वफादार थे साथ चले गए।
4: और बड़े ड्यूक की बेटी रोजलिन?
5: वो यही है, छोटे ड्यूक की बेटी ने जिद करके उसे रोक लिया।
4: अच्छा,
5: दोनों साथ साथ बड़ी हुई है ना, ये उसके बगैर नहीं रह सकती ना वो उसके बगैर।
4: अच्छा, बड़े ड्यूक आखिर रहेंगे कहां?
5: सुना है आर्डन के जंगल में अपनी संगी साथियों के साथ रॉबिनहुड बनकर दिन बिता रहा है।
4: रॉबिनहुड, ये भी खूब रही। अरे हाँ, कल तो आपकी कुश्ती का दिन है।
5: हाँ, मुझे बताया गया है कि आपका छोटा भाई ऑरलैंडो मेरा मुकाबला करने की सोच रहा है, सोचा आपको चलकर सावधान कर दूं। मेरे हाथ पड़ गया तो कुछ हड्डियां जरूर चटक जाएगी उसकी, सोच लो।
4: अब दुष्ट के बारे में आपसे क्या कहूं पहलवान, बहरहाल आपके हाथों उसकी गर्दन सलामत रह गई तो ऊपर वाले का शुक्र मनाऊंगा। खैर चलो, कुश्ती का ये मुकाबला सारा किस्सा तमाम कर देगा।
6: रोजलिन, मेरी प्यारी रोजलिन, इतनी दुख

0: जो उन्होंने तुम्हारे पिता से छीना है। अरे ये शोर कैसा है? सुनो ये क्या हो रहा है बाहर?
1: शहजादी, शाही दंगल हो रहा है ना, उसी का शोर है।
0: और ये रोने चीखने की आवाज?
1: अच्छा, वो आदमी, वो जो रो रहा है, अपने तीन पहलवान बेटों के साथ आया था। पहलवान चाल से मुकाबला हुआ तो सबसे पहले बड़े बेटे की पसलियां टूट गईं, फिर बीच वाला आया तो उसकी गर्दन चटा, आखिर में आया तीसरा तो पहलवान ने पता नहीं कहां कहां की हड्डियां तोड़ डाली। पड़े हैं जमीन पर तीनों और रो रहा है सर पकड़कर बाप बेचारा। वो देखिए, वो सामने से जो लड़का आ रहा है।
0: हाँ तो?
1: ललकारा है इसने हमारे चार्ल्स पहलवान को। अब देखिए क्या गत बनती है बच्चू की।
0: चलो हम भी चलकर देखें। चलो ना रोजलिन, चलो।
2: हाँ ठीक है,
1: आइए आइए, आपको शाही खेमे तक पहुंचा दूं।
0: पिताजी।
3: अरे बेटी तुम, ओहो बहन को भी साथ लाई हो, दंगल देखने आई हो। लेकिन इस मुकाबले में कोई खास मजा नहीं आने वाला। ये जोड़ भी कोई जोड़ है? कहां हमारा ताकतवर कद्दावर पहलवान और कहां ये कल का छोकरा। हमने तो समझाने की बहुत कोशिश कर ली कि मुकाबले से हट जाए, पर मानने को तैयार ही नहीं।
0: ओ, अब क्या होगा पिताजी, वो तो वाकई बहुत छोटा है।
3: बेटे हमारे कहने से तो नहीं माना, हो सकता है तुम्हारा कहा मान जाए।
0: जी सुनो, बुलाओ उसे।
1: ए पहलवान, शहजादी बुलाती हैं।
4: ऑरलैंडो हाजिर है शहजादियों।
5: नौजवान, उस पहलवान को चुनौती देने वालों का हश्र तुम देख ही चुके हो, बेहतर होगा तुम अपना इरादा छोड़ दो।
4: मुकाबले में अगर मेरी जान भी जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं।
6: कौन है, कौन है जिसने अपनी मौत को ललकारा है? सामने आ।
7: मैं हूं, अभी आया।
6: हुजूर, आपके करम से यह छोकरा पानी मांगने लायक भी नहीं बचेगा।
7: सिर्फ जुबान ही लड़ाएगा या कुश्ती भी लड़ेगा?
6: ए, मसल कर फेंक दूंगा।
7: बस बस
8: बचा, ये लो।
0: गजब, ऑरलैंडो ने उसे दबोच लिया।
8: छोड़ दो मुझे, छोड़ सरकार, आ, आ, आ, सरकार।
7: बस बस, बहुत हुआ लड़के, छोड़ दे उसे। आप कहते हैं तो लीजिए। छोड़ दिया।
5: मुबारक हो।
4: शुक्रिया शहजादी।
5: लो ये रहा तुम्हारा इनाम, संजीर, मेरे जिला बदर पिता की निशानी है। ऑरलैंडो,
4: आपका यह बेशकीमती तोहफा दिलो जान से अजीज रहेगा शहजादी।
5: सीलिया, अब हम चलें। ऑरलैंडो, अपना ख्याल रखना।
4: जी
5: चलो सीलिया।
0: रोजलिन, क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ इस छोटी सी मुलाकात में तुम उसे इस कदर जाने लगी?
5: सीलिया, उसके पिता सर रोलिन को मेरे पिता बहुत पसंद करते थे।
0: वाह वाह वाह, ये भी कोई वजह हुई?
5: वजह कोई भी हो, मैं उसे चाहने लगी हूँ बस।

0: इसी तरफ आ रहे हैं।
1: सुनो, तुम जितनी जल्दी हो सके राज्य को छोड़कर चली जाओ।
0: कौन, मैं?
1: हाँ, तुम।
0: लेकिन माय लॉर्ड, मेरा कसूर क्या है?
1: क्योंकि तुम जिस बाप की बेटी हो भरोसे के लायक न वो था और न तुम।
0: मेरे पिता गद्दार नहीं थे माय लॉर्ड।
1: तुम्हें 10 दिनों की मोहलत दी जाती है लड़की, इस राज्य की सरहदों से दूर चली जाओ वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगी।
2: पिताजी, आपने खुद ही इन्हें अपनी सरपरस्ती में रखने का फैसला लिया था, और आज जब हम दोनों सगी बहनों की तरह इस कदर घुल मिल गई हैं कि एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकती, आप इन्हें हमसे जुदा कर देना चाहते हैं। आपकी नजरों में अगर रोजलिन गद्दार है तो फिर मैं क्यों नहीं?
1: इसका साथ छूटेगा तो यकीनन तुम एक बेहतर लड़की बन सकोगी।
2: लेकिन
1: बस, अब एक लफ्ज भी नहीं, हमें जो फैसला लेना था ले चुके।
2: रोजलिन, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती बहन, मैं भी तेरे साथ चलूंगी।
0: पागल मत बनो सीलिया, जाने का हुक्म मुझे दिया गया है, तुम्हें नहीं।
2: लेकिन ये तो बेवजह की सजा है और इसे तुम अकेले नहीं भुगतोगी।
0: सीलिया मेरी अच्छी बहन, मेरा खुद कोई आसरा नहीं तो मैं तुझे ठोकरे खाने के लिए कैसे साथ ले जाऊं? भला कहाँ रहेगी तू?
2: क्यों, अपने चाचा के पास ऑर्डन के जंगल में?
0: पगली, सुनसान बियाबान जंगल तक जा पहुंचना क्या हम लड़कियों के बूते का काम है?
2: हम भेष बदल कर जाएंगे, फटे पुराने मर्दाना कपड़े पहनकर और चेहरे पर धूल मिट्टी लगाकर चुपचाप निकल जाएंगे।
0: मर्दाना भेष में? लेकिन तुम्हें किस नाम से पुकारूंगी मैं?
2: अलीना। और तुम्हारा नाम?
0: मेरा नाम गेनीमिट।
2: हाँ, ये ठीक है। तो चलो हम झटपट अपने गहने जेवर और रुपए पैसे समेट कर जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएं।
0: हाँ। वो समझते हैं ये सजा है, हम समझते हैं ये रिहाई है।

0: बस अब मुझसे नहीं चला जाता।
1: बस इलिया, थोड़ी सी हिम्मत और कर लो। हम आर्डन के जंगल में आ ही पहुंचे हैं।
0: रोजलिन, फिलहाल तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ।
1: सीलिया, बस बस थोड़ा सा धीरज और रखो, हम पहुँचने ही वाले हैं।

0: मालिक, अब और नहीं चला जाता।
1: वाकई तुम थककर निढाल हो गए हो, लेकिन मैं क्या करूं?
0: मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए मालिक, यहीं पड़ा रहूंगा, आप आगे बढ़िए।
1: इस तरह हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा एडम। ठीक है, तुम यहीं आराम करो, मैं कहीं से कुछ खाने लायक चीज ढूंढकर लाता हूं।
2: ओहो, खाने का वक्त हो गया, लेकिन ये जैकल्स कहाँ गायब है?
3: लीजिए, वो चला रहा है खाना लेकर।
4: लीजिए जनाब।
5: खबरदार, कोई खाने को हाथ नहीं लगाएगा।
2: नौजवान, या तो ये भूख की शिद्दत का असर है, या फिर तुम्हें कोई तमीज नहीं।
1: भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है।
2: बैठो और इत्मीनान से खाना खाओ।
1: माफी चाहता हूं, लेकिन आप यहां इस जंगल में क्यों रह रहे हैं?
2: मालूम हो जाएगा।

0: फिलहाल तुम अपनी भूख मिटाओ।
1: पहले मुझे किसी और की भूख मिटानी है सर, इजाजत हो तो थोड़ा खाना ले जाऊं उसके लिए।
0: शौक से, हम तुम्हारे आने का इंतजार करेंगे, जाओ।
1: जी जी, शुक्रिया सर।
2: ये ठंडी हवाएं, ये डाल डाल पर खिलते फूल, हरे भरे दरख्त, सब कुछ कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन ये डालियों पर कागज कैसे लगे हुए हैं? ओहो, किसी ने नरम तनों को चाकू से गोद भी डाला। लगता है कुछ लिखा है, जरा पढ़ूं तो। पुकारता है दिले बेकरार रात और दिन, वाह वाह। पुकारता है दिले बेकरार रात और दिन, एक फकत नाम तेरा। ओह रोज़लिन, अरे ये मेरे नाम की शायरी जगह जगह इस तरह कौन लटकाता फिर रहा है? पता लगाना चाहिए, आखिर कौन है ये?
3: मैं बताऊं?
2: सीलिया, तुमने तो मुझे चौंका ही दिया।
3: अभी कहाँ, चौंकाने वाली बात तो मैंने तुम्हें सुनाई ही नहीं। अच्छा ये बताओ, एक जंजीर हुआ करती थी कभी तुम्हारे पास, अब वो कहाँ है?
2: हाँ, पर अचानक ये सवाल क्यों पूछ रही हो?
3: इसलिए क्योंकि हूबहू वैसी ही जंजीर मैंने किसी के गले में देखी है।
2: जंजीर कहाँ, किसके गले में सीलिया?
3: यही, एक नौजवान के गले में।
2: और कौन है वो नौजवान?
3: पता नहीं, लेकिन अपना नाम ऑरलैंडो बताता है।
2: क्या कह रही हो सीलिया, ऑरलैंडो यहाँ इसी जंगल में?
3: हाँ है तो इसी जंगल में, तुम तो उसे पहचान ही लोगी। लेकिन वो तुम्हें?
2: क्यों, वो क्यों नहीं पहचानेगा मुझे?
3: इस मर्दाना भेस में।
2: ओहो, मैं तो ये भूल ही गई थी। तो ठीक है, मैं इसी भेस में उससे बात करूंगी। सीलिया, शायद वो यहीं आ रहा है।
3: मैं हट जाती हूँ।
2: हाँ
4: क्या आप बता सकते हैं इस वक्त कितने बजे होंगे?
5: कितने बजे होंगे ये तो नहीं बता सकता, अब जंगल में घड़ी कहाँ मिलेगी। हाँ चाहो तो ये बता सकता हूँ कि क्या वक्त है।
4: वक्त सबके लिए एक सा नहीं होता जवान, किसी आशिक के लिए जितना वक्त लंबा होता है, फांसी चढ़ने वाले के लिए उतना ही छोटा होता है।
5: वाह, बातें तो खूब करते हो, कहाँ रहते हो तुम?
4: अपनी बहन के साथ, बस करीब ही एक झोपड़ी में।
5: बोलचाल में खासी नफासत है, कहीं और से आए हो क्या?
4: नहीं यार, यहीं का वासी हूँ। हाँ बोलचाल की जहाँ तक बात है तो मेरे एक चाचा खासे पढ़े लिखे थे, बस उन्हीं से थोड़ा बहुत सीख लिया।
5: ओह, तब तो तुमने इन पेड़ों पर लटकी नज़्मों और अशार को पढ़ा होगा।
4: हाँ पढ़ा तो है, लेकिन इन्हें इस तरह लटकाने और खास तौर से चाकू से गोद गोद कर बेचारे पेड़ों को जख्मी करना मुझे कुछ समझ नहीं आया।
5: इश्क के जुनून में अक्सर कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिनका समझाने से कोई ताल्लुक नहीं होता।
4: लेकिन इस तरह अपनी महबूबा का नाम लिख लिख कर उसे बदनाम करना तो ठीक नहीं मेरे दोस्त। खैर, कभी उस दीवाने आशिक से मुलाकात हुई तो उसे कुछ नेक मशवरे दूंगा, और जरूरत हुई तो इलाज भी कर दूंगा।
5: नेक मशवरा, इलाज, वो क्यों?
4: जुनून एक हद तक रहे तो ठीक, वरना कभी ये बीमारी जानलेवा हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं।
5: तो ठीक है, वो बीमार तुम्हारे सामने है।
4: कौन, तुम?
5: हाँ, वो दीवाना आशिक मैं ही हूँ।
4: अच्छा, लेकिन देखने में ऐसे लगते तो नहीं हो। एक से एक बिगड़े आशिकों का इलाज किया है मैंने।
5: रोज़लिन की मोहब्बत में गिरफ्तार बेजार और लाचार,

0: जो भी हूं मैं ही हूं, मेरी मदद करो यार।
1: ठीक है इलाज हो जाएगा, लेकिन मेरा एक तरीका है इलाज करने का, जिसके मुताबिक तुम्हें मुझे रोजलिन नाम से ही पुकारना होगा।
0: रोजलिन तुम्हें? चलो मंजूर है।
1: और न सिर्फ पुकारोगे बल्कि मेरे साथ उसी तरह पेश आओगे जिस तरह रोजलिन के साथ आते थे या फिर कभी आते। ठीक, कल से बिना बुलाए रोज मेरे पास आओगे?
0: आऊंगा।
1: तो कल से पक्का?
0: बिल्कुल पक्का।
2: सुनिए।
3: जी कहिए।
2: यहां कोई ऐसा लड़का रहता है जो कुछ कुछ लड़की जैसा लगता हो?
3: क्या मतलब?
2: मतलब वो यहीं कहीं रहता है अपनी बहन के साथ। अच्छा तो नाम बताया था उसने, रोजलिन। हाँ हाँ वही। क्या आप ऑरलैंडो को जानती हैं?
3: हाँ।
2: उसी ने मुझे भेजा है रोजलिन तक एक पैगाम पहुंचाने।
3: ऑरलैंडो ने? रोजलिन, तुमसे कोई मिलने आया है?
1: कौन, आप? कहिए।
2: ऑरलैंडो ने कहलवाया कि वो आज आपके पास नहीं आ पाएगा।
1: लेकिन क्यों?
2: वो बुरी तरह जख्मी हो गया है।
3: कैसे?
2: हुआ यूं कि भटकता हुआ मैं इस जंगल में आ पहुंचा। बुरी तरह भूखा था और थक भी चुका था, बेहोश हो गया। एक भूखी शेरनी ने मुझ पर हमला कर दिया, तभी वो मुझे बचाने आगे आ गया। शेरनी ने उसके बांह पर झपट्टा मारा।
3: क्या?
2: लेकिन वो पीछे नहीं हटा। आखिरकार शेरनी को ही मैदान छोड़ना पड़ा। ये निशानी के तौर पर उसने अपना ये खून से सना रुमाल भेजा है।
1: खून?
3: ये तो खून से रंगा हुआ है।
2: हाँ, मेरे भाई के खून से।
1: क्या मतलब, तुम ऑरलैंडो के भाई हो?
2: हाँ, उसका बड़ा भाई ओलिवर।
1: ओह, तो तुम्हारी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान खतरे में डाल दी,
3: जबकि तुमने उसे मौत के घाट उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
1: ऑरलैंडो ने हमें सब कुछ बता दिया है।
2: मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ।
0: भाई, तुम उनसे मिले? कैसे लगे वो भाई बहन?
2: बहुत अच्छे लोग हैं, खास तौर पर रोजेलिन की बहन, वो मुझे बहुत अच्छी लगी।
0: बहुत ही अच्छी। ओहो, पहली मुलाकात में ही फिदा हो गए।
2: हाँ, मैंने तो अपने दिल की बात बता दी, अब तुम्हारी बारी है।
0: मेरी बारी? मैं समझा नहीं।
2: रोजेलिन के बारे में क्या ख्याल है? मुझे शक है मर्दाने भेस में रहने वाली वो एक लड़की है।
0: ये तुम कैसे कह सकते हो?
2: जब मैंने उसे तुम्हारा खून आलूदा रुमाल दिखाया तो उसकी वो चीख किसी मर्द की चीख नहीं थी, साथ ही उसे गश आ गया, ठीक लड़कियों की तरह। उसका ये बर्ताव आखिर क्या साबित करता है?
0: क्या साबित करता है?
2: यही कि रोजेलिन एक लड़की है और वो तुम्हें बहुत प्यार करती है।
0: हाँ, लेकिन मैं कैसे मालूम?
2: हकीकत ज्यादा देर छिपी नहीं रहती, आज नहीं तो कल सच सामने आ ही जाएगा। खैर, मैंने तो सोच लिया, शादी करूंगा तो अलीना से।
0: अलीना से?
2: वही, रोजेलिन की बहन, और इसी जंगल में बस जाऊंगा। पिता की छोड़ी जायदाद तुम्हारी होगी। अलीना से मेरा रिश्ता तुम्ही को पक्का करना पड़ेगा।
0: जरूर, मैं इसी वक्त जाकर बात करता हूं।
1: ओह, तो ये बात है। क्यों रही अलीना, आंखों ही आंखों में कब खिचड़ी पक गई और हमें भनक तक नहीं लगी।
3: तुम्हें अपने गमों से फुर्सत होती तब ना।
1: चुप, शैतान कहीं की। हाँ तो अब आप चाहते क्या हैं?
0: यही कि दोनों की शादी जल्द से जल्द करा दी जाए।
1: ठीक है, हमें एतराज नहीं। चलिए, आपके भाई की मन की मुराद पूरी हो जाएगी
0: और आपकी बहन को एक जीवन साथ

0: साथी मिल जाएगा।
1: बस रह जाएंगे आप और मैं।
0: आप तो बहुत गुनी हैं, क्या इस मसले का कोई हल नहीं निकाल सकते?
1: एक जादूगर ने मुझे ऐसी विद्या सिखाई थी कि जिसे चाहूं अपने जंतर मंतर के बल पर उसे जहां चाहूं बुला लूं।
0: वाह, तो फिर?
1: तुम्हारी रोसलिन को हाजिर कर दूंगा तुम्हारे सामने।
0: वाकई?
1: हाँ, कल एक साथ तुम दोनों भाइयों की शादी होगी, ये मेरा वादा है। जाओ, जाकर तैयारियां करो।
2: और तुम्हें उस छोकरे की बात पर यकीन है?
0: है भी माय लॉर्ड, और नहीं भी। लीजिए, वो इसी तरफ आ रहा है।
2: क्यों नौजवान, क्या तुम वाकई ऐसा कमाल कर सकते हो?
1: यकीनन, बशर्ते आप एक वादा करें माय लॉर्ड।
2: कैसा वादा?
1: यही कि आप अपनी रोजलिन का हाथ ऑरलैंडो के हाथ में दे देंगे।
2: मंजूर है।
1: तो फिर मुझे इजाजत दीजिए, कुछ तैयारी करनी होगी।
2: ठीक है, जाओ।
1: आओ अलीना, हम चलते हैं।
3: माय लॉर्ड, अपनी भतीजी सीलिया का सलाम कबूल कीजिए।
2: ओह, मेरी भतीजी, मैं कितना खुश हूँ।
4: और आपकी खुशी दुगनी करने सामने से आ रही है आपकी बेटी रोजेलिन।
1: पिताजी।
2: रोजेलिन।
1: पिताजी, कैसे हैं आप?
2: मेरी प्यारी बेटी।
1: पिताजी।
2: आज मैं कितना खुश हूँ ऑरलैंडो। मैं अपने वादे के मुताबिक अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देता। ओ बच्चों, गले लग जाओ।
1: पिताजी।
5: माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, गजब हो गया।
2: क्या हुआ?
5: आपके भाई फर्डिनेंड फौज लेकर हमला करने आए थे।
2: फिर क्या हुआ?
5: तभी एक चमत्कार हुआ। जंगल के मुहाने पर उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग फकीर से हुई।
2: अच्छा।
5: जिनकी बातों ने उनके दिल पर गहरा असर डाला। नफरत हो गई उन्हें ताज व तख्त से जो आपको धोखा देकर हासिल किया था।
6: और माय लॉर्ड, आप पर हमला करने का इरादा छोड़कर वो कहीं चले गए। उनका हुक्म था कि ये पैगाम आप तक पहुंचा दूं।
2: पढ़कर सुनाया जाए।
6: मैं फर्डिनेंड अपना ताज व तख्त इसी वक्त अपने बड़े भाई यानी बड़े ड्यूक के लिए छोड़ता हूं। मुझे अपने किए पर पछतावा है, अपने पापों का प्रायश्चित करने कहीं दूर जा रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए। खुदा आपको सलामत रखे।
7: मुबारक हो माय लॉर्ड, मुबारक हो, मुबारक हो माय लॉर्ड, मुबारक हो,
8: मुबारक हो माय लॉर्ड, मुबारक हो, मुबारक हो।
1: ताज उसको मिल गया जिसका हक बुलंद था,
2: और सबको वो मिला जिसको जो पसंद था।
9: पसंद अपनी अपनी। अभी आप सुन रहे थे विलियम शेक्सपियर के मूल अंग्रेजी नाटक एज यू लाइक इट का हिंदी नाट्य रूपांतरण। रूपांतरकार थे दिनेश राय। भाग लेने वाले कलाकारों का पात्र सहित परिचय इस प्रकार है: एडम राकेश जैमिनी, ऑरलैंडो भागीरथ साहू, ऑलिवर अमित रिछारिया, चार्ल्स संजय मानवटकर, सीलिया ममता चोपड़ा, रोजलिन कंचन राजानी, नौकर अब्दुल रज्जाक सिद्दीकी, ड्यूक बद्रवास्ती, बड़े ड्यूक रईस हसन, लॉर्ड वन रविन्द्र टांक और लॉर्ड टू धर्मेंद्र वर्मा। प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर अरविंद सोनी।
10: अभी आप सुन रहे थे नाटक पसंद अपनी अपनी। नाटक के लेखक थे विलियम शेक्सपियर, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर अरविंद सोनी और रूपांतरकार दिनेश राय। ये आकाशवाणी भोपाल है।

0: एक है विवेक दांगी का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार के।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है निवाड़ी जिले की चिट्ठी। आलेख विवेक दांगी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। निवाड़ी जिले में आजकल मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। कभी धूप है तो कभी हल्की बारिश, जिससे उमस बढ़ रही है और गर्मी अपना असर दिखा रही है। प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुसार आमजन की समस्याओं और शिकायतों के मौके पर त्वरित निराकरण के लिए कलेक्टर जमुना भिड़े की अध्यक्षता में बीते दिनों जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों के साथ आमजन की समस्याओं और शिकायतों को गंभीरता से सुना। आवेदनों पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर ने कई मामलों का मौके पर ही निराकरण किया तथा जांच और कार्यवाही योग्य आवेदनों में से अतिशीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। राजस्व शिकायतों के निराकरण में लंबित स्थिति पर कलेक्टर ने अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए तत्काल निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तरमीम और सीमांकन के शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए राजस्व अधिकारी स्वयं फील्ड पर विजिट करें, निष्पक्ष जाँच कर पात्र हितग्राहियों को तत्काल लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए। जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर ने पृथ्वीपुर निर्वाचन कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के आवेदकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। पृथ्वीपुर तहसील के अंतर्गत आवेदकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एसडीएम मनीषा जैन और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में जनसुनवाई को वर्चुअली जोड़ा गया था। पिछले दिनों कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ जेरोन तालाब का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तालाब की साफ सफाई, स्वच्छता और जल संरक्षण की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जलकुंभी और अन्य जलीय खरपतवार को मशीन और श्रमिकों के माध्यम से पूरी तरह से हटवाया जाए। तालाब किनारे जमा कचरा और प्लास्टिक को भी साफ करवाया जाए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निवाड़ी जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शासन के आदेश के अनुसार इस अवधि में विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इस कड़ी में दिनांक 12 जून से 18 जून तक जिले के प्रत्येक विकास खंड और नगरी निकाय मुख्यालयों पर 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर लगाया जाएगा। शिविर का मुख्य उद्देश्य शासन की योजनाओं से वंचित पात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर मौके पर ही लाभान्वित करना है। इसके साथ ही आमजनों की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। शिविर में राजस्व, पंचायत, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय और कृषि सहित विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे। कलेक्टर जमुना भिड़े ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिविर में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र, पीएम आवास, लाडली बहना, पेंशन और राशन पर्ची जैसे प्रकरणों का भी त्वरित निराकरण किया जाए। कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। कलेक्टर ने जिले के सभी हितग्राहियों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी विकास खंड या नगरी निकाय मुख्यालय पर लगने वाले जन कल्याण शिविर में पहुंचकर योजनाओं का लाभ अवश्य लें। इसके साथ में वे जरूरी दस्तावेज लेकर जरूर आएं ताकि मौके पर ही पात्रता जांच कर लाभ दिया जा सके। जन कल्याण शिविर 12 जून से 18 जून की अवधि में समस्त नगरी निकायों और जनपद मुख्यालयों में कुछ 5 स्थानों पर लगाए जाएंगे, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं आयुष्मान भारत, वय वंदन, पीएम सूर्यघर, पीएम स्वनिधि, लखपति दीदी और वीबीजी रामजी के अंतर्गत छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। बीते दिनों एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत ग्राम पंचायत कुलवा में आयोजित वृहद पौधरोपण कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। विश्व पर्यावरण दिवस पर जिला प्रशासन ने परमार्थ समाज सेवी संस्था के सहयोग से ग्राम पंचायत कुलवा में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस दौरान चंदेली तालाब पर वृहद पौधरोपण भी किया गया। श्री राम राजा सरकार मंदिर ओरछा धाम की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के उद्देश्य से बीते दिनों कलेक्टर जमुना भिड़े की अध्यक्षता में ओरछा में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ. राय सिंह नरवरिया और जिला पंचायत सीईओ रोहन सक्सेना विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में मंदिर के उत्कृष्ट प्रबंधन, समन्वय और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा कर निर्णय लिए गए। निवाड़ी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे निवाड़ी जिले की चिट्ठी। आलेख था विवेक दांगी का, वाचन स्वर थे अभिषेक कटियार के। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है।
1: मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदे मातरम।

वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। ये 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित और बाद में उनके उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। हाल ही में भारत सरकार द्वारा मनाए जा रहे इसके 150 वर्ष के उपलक्ष्य में इसे मूल 6 पद वाले रूप में गाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। वंदे मातरम पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1896 के कलकत्ता कांग्रेस सत्र में गाया गया था। ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी और विभाजन विरोधी आंदोलनों में प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसे राष्ट्रगान के समान दर्जा दिया गया। राष्ट्र इसके 150 वर्ष मना रहा है। सरकार ने 3 मिनट और 10 सेकंड की अवधि के साथ पूरे 6 छंदों वाले संस्करण को गाने के दिशा निर्देश दिए हैं। ये हमारा गौरव गान है। डेढ़ सदी का गौरव, हर दिल की धड़कन, वंदे मातरम। 1875 से 2025 तक सिर्फ गीत नहीं, भारत की आत्मा का प्रतिबिंब। अब इसकी आवाज भी गूंजेगी हर कोने में, इस ऐतिहासिक उत्सव में शामिल हों आप भी, हम भी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं और संदेशों के लिए आभार व्यक्त किया। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत सिट्टे बेलो पर हुए हमले के बाद अमरीका के उप राजदूत को तलब किया। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत के बुल्गारिया के साथ संबंध दीर्घकालिक और स्थिर है और विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 आज रात से शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वे भारत इटली विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने तथा दोनों देशों के नागरिकों के हित में सहयोग बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के संदेश पर कहा कि वे भारत और मलेशिया के बीच मजबूत और स्थायी मित्रता को बेहद महत्व देते हैं। प्रधानमंत्री ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि भारत कनाडा साझेदारी आने वाले समय में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी। प्रधानमंत्री ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के संदेश के जवाब में कहा कि भारत और इसराइल के बीच मित्रता आने वाले वर्षों में और अधिक मजबूत होगी। विदेश मंत्रालय ने कल ओमान के तट के पास भारत के वाणिज्यिक जहाज सिट्टे बेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। घटना के बाद मंत्रालय ने अमरीका के उपराजदूत जेसन मिक्स को तलब किया है। जहाज पर सवार 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 3 सदस्यों के लापता होने की खबर है। भारत ने क्षेत्र में जहाजों पर हो रहे हमलों की लगातार घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए इन्हें बेहद चिंताजनक बताया है। इस बीच भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और शांति के लिए बातचीत की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार क्षेत्र में सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के संचालन की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश अब इन संबंधों को और अधिक गतिशील तथा बेहतर रूप दें। डॉक्टर जयशंकर ने बुल्गारिया के विदेश मंत्री विलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के बाद ये बात कही। उन्होंने बताया कि बैठक में 3 मुद्दों पर बातचीत हुई। इनमें भारत और बुल्गारिया के बीच द्विपक्षीय सहयोग, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी और वैश्विक स्थिरता तथा प्रगति के लिए सहयोग शामिल हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे

0: तेल की कीमत 93 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। ये युद्ध शुरू होने के बाद 25% से अधिक की वृद्धि है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: अमेरिका में वार्षिक मुद्रास्फीति दर मई महीने में बढ़कर 4.2% हो गई है। ये पिछले 3 वर्षों में सबसे अधिक है। ये वृद्धि मुख्य रूप से ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई है। अमेरिका ईरान तनाव के बाद ये दर तेजी से बढ़ी है। अमेरिकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार अप्रैल की तुलना में कीमतों में 0.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास जताया है कि जैसे जैसे होर्मुज जल डमरू मध्य के जरिए तेल की पूर्ति सामान्य होगी, मुद्रास्फीति में कमी आएगी। जापान ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र काशीवाजा की करीवा में एक रिएक्टर को फिर से शुरू कर दिया है। ये कदम वैश्विक तेल संकट के बीच बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के उद्देश्य से उठाया गया है। ये संयंत्र जापान के उन कई परमाणु संयंत्रों में शामिल है जहां प्रयुक्त ईंधन के कूलिंग पूल लगभग भरने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। उद्योग से जुड़े अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि कुछ संयंत्रों में अगले 5 वर्षों में क्षमता पूरी हो सकती है। वर्ष 2011 में फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना के बाद जापान के 54 में से केवल 15 रिएक्टर ही फिर से शुरू किए जा सके हैं। 2011 में आए भीषण भूकंप और सुनामी के कारण 3 रिएक्टरों में मेल्टडाउन हुआ था और लगभग 1,60,000 लोग विस्थापित हुए थे। कनाडा की सरकार ने एक नया विधेयक पेश किया है जिसके अंतर्गत 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट खोलने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रस्तावित कानून के अनुसार सोशल मीडिया कंपनियों को यह साबित करना होगा कि उनका प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए सुरक्षित है, तभी उन्हें छूट मिल सकेगी। विधेयक में आत्महानि को बढ़ावा देने वाली, हिंसा या घृणा फैलाने वाली तस्वीरों जैसी हानिकारक सामग्री पर रोक लगाने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत कनाडा में एक डिजिटल सुरक्षा आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया के साथ अब कनाडा भी उन देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिन्होंने सोशल मीडिया के उपयोग पर आयु आधारित प्रतिबंध लागू किए हैं। भारत और ताजिकिस्तान ने व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग तथा आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। भारत ताजिकिस्तान संयुक्त आयोग की 12वीं बैठक में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने व्यापार, निवेश और बाजार पहुंच पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। ये बात उन्होंने वर्चुअल रूप से आयोजित बैठक में उद्घाटन भाषण में कही। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव मोहित यादव और ताजिकिस्तान के आर्थिक विकास और व्यापार उपमंत्री नूरुद्दीन जोदा अहलुद्दीन ने की। श्रीलंका के लोक सुरक्षा मंत्री आनंद विजयपाला ने कल संसद में कहा कि पूर्व खुफिया सेवा प्रमुख सेवानिवृत्त मेजर जनरल सुरेश सल्ले के खिलाफ 2019 में ईस्टर संडे पर हुए बम धमाकों से जुड़े होने के पर्याप्त सबूत जुटा लिए गए हैं। इनमें 260 से अधिक लोग मारे गए थे। विजयपाला ने आरोप लगाया कि सल्ले को हमलों की पूर्व जानकारी थी। विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
2: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप है। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं और संदेशों के लिए आभार व्यक्त किया। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत सिट्टेबेलो पर हुए हमले के बाद अमेरिका के उप राजदूत को तलब किया। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमेरिकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत के बुल्गारिया के साथ संबंध दीर्घकालिक और स्थिर है और फीफा विश्व कप आज रात से शुरू। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है।

10:20 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा। श्रोताओ, हम हाजिर हैं आपके पसंदीदा गीतों को लेकर आपके खतों के साथ। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं लता मंगेशकर के गए इस गीत से। फिल्म का नाम है पतंग। गीतकार सी रामचंद्र, गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं सी रामचंद्र। अनुरोध करने वाले श्रोता हैं बेरडी से राजेश सोनी, कंचन गायत्री, वैष्णवी ढोमने, चंचल अर्जुन गवनेकर, धीरज सब्बा शेरे, आदर्श नगर मलोड से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरभ शर्मा, ग्राम लोहारी जिला खंडवा से राजेश कुमार धनजे, राहुल धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा वैद्य, नीतू वैद्य, छत्तीसगढ़ बेमेतरा से पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती, भव्या सारथी और सुषमा सारथी।

लीजिए, अब सुनिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत संगीतकार चित्रगुप्त, आवाज लता मंगेशकर और मुकेश की है। फिल्म का नाम ओपेरा हाउस। सुनना चाहते हैं घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया।

प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। भाटापारा छत्तीसगढ़ दतरंगी से द्वारिका वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झविंद्र कुमार वर्मा। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल कमा खत्री, मोहम्मद अल तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री।

0: श्रोताओं, तो ये गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम पारसमणि, गीतकार फारूक कैसर, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अनुरोध करने वाले श्रोता थे बरगी नगर जबलपुर से रविंद्र गदरे, सुभाष दिगंबर गदरे, राजेश गदरे, शिवम शुभांग सृष्टि, नीमच से गोविंद पाटीदार, ममता पाटीदार, पूजा पाटीदार, मधुसूदन पाटीदार, यशस्वी पाटीदार, हंस भी पाटीदार, लुधियाना पंजाब से अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, आदिमा कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वली उल्लाह फकीर, डब्ल्यू उल्लाह, परवीन आसमा, बुलंदशहर से बदरू वली और फर्जू वली अंसारी। अब सुनिए ओपेरा हाउस फिल्म का गीत।
1: सूरजमुखी खेती के लिए उपयुक्त मानते हैं। रबी फसलों की कटाई के उपरांत खेत की यदि जुताई कर दी जाए ताकि उसकी जो नींदा है वो नष्ट हो जाए और खेत को समतल करके भुरभुरा बना दे ताकि अंकुरण अच्छा हो सके।
2: किरणों से लिपटी हवाएं
1: कर सकते हैं और जो खरपतवार होते हैं उनका नियंत्रण आवश्यक है, तो दवाई के नाम पे नामक दवा जो है उसकी डेढ़

0: बीज की तो आपने बात की, तो जो संकर किस्में हैं या जो साधारण बीज है, इसमें भी क्या
1: अब
0: कुछ
1: सुनिए
0: अंतर
1: फिल्म
0: है?
1: गंगा
0: मुझे
1: की
0: ये
1: लहरें,
0: जानना होता है कि
1: इस
0: मात्रा
1: फिल्म का
0: कितनी है
1: गीत
0: बीज की फसल की।
1: सुनना चाहते हैं। बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी प्रांजल गाजीपुर से, प्रीति नवनीत अवधेश अमरावती से, कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम, हादिया खान आसमा सालिया मुस्ताबा, अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर,

0: यंत्र है उनकी सहायता से या लाठी से पीट कर आपस में रगड़ कर बीजों को निकाल लिया जाता है।
1: कश्मीर की गली इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं SH बिहारी, संगीतकार रूपी नैयर, और अनुरोध इन श्रोताओं का है भाटापारा से गन्नूलाल रजक, KR साहू, अश्विनी गणेश मिस्त्री, सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना, प्राची नेमा, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या, करिश्मा कामले, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक और मीका विरक।

मुकेश की आवाज में सुनिए फिल्म तीसरी कसम का ये गीत। गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन। अनुरोध आप सबका, नर्मदा कॉलोनी मंडला से सिया शरण ज्योतिषी, पुष्पा ज्योतिषी, गोल्डी लकी रोली, श्वेता और परु। खोआ मंडी जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन, अरुण चौरसिया। कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश्वर गुजराती, रेखा गुजराती, महिमा हर्षिता, भूमिका मुस्कान, अभय गुजराती। हमारी श्रोताओं की पसंद पर सुनिए ये गीत।

श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है शंकर हुसैन, आवाज़ लता मंगेशकर की है, बोल जानिसार अख्तर के, तर्ज बनाई है खयाम ने। इस गीत के लिए खत भेजा है गड़िया मौजिस्तू से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना, पूजा आरती, सुनीता देवी, दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, रिंगिनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी, जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, नाज प्रवीण, मोरी गेट दिल्ली से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार।

मोहम्मद रफ़ी को सुनिए, फिल्म है पगला कहीं का। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर किशन। अनुरोध करने वाले श्रोता बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा, शंकर लाल, राहुल माखीजा, सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा। शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य, कृष। अमरपुर पेंड्रा से दीपक, रोशन, बंशीलाल। खंडवा संजय कॉलोनी से अब्दुल गफ्फार, खुशनसीब, अब्दुल हक, जियाउल हक और मोहम्मद उमर।

0: इस गीत के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: विदेश मंत्रालय ने कल ओमान के तट के पास भारत के वाणिज्यिक जहाज सेट्टे बेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। घटना के बाद मंत्रालय ने अमेरिका के विदेश मामलों के प्रभारी जेसन मीक्स को तलब किया है। जहाज पर सवार 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 3 सदस्यों के लापता होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक निरंतर प्रधानमंत्री रहने पर सिंगापुर के राष्ट्रपति लॉरेंस वोंग और गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली द्वारा दी गई शुभकामनाओं और संदेशों के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और भारत सिंगापुर संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तत्पर हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महान क्रांतिकारी परम देशभक्त और अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि बिस्मिल ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया और वे महान हस्तियों में से एक थे। राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान तथा अधिकारों की रक्षा को और अधिक सशक्त बनाने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-233-6112 का शुभारंभ किया है। इसके माध्यम से प्रदेश की महिलाएं अपनी शिकायतें, समस्याएं और सुझाव दर्ज करा सकेंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी कुल सचिवों और प्राचार्यों तथा संबंधित संस्थानों को निर्देश जारी किए हैं। और विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता में 48 टीमों के द्वारा 104 मुकाबले खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
3: श्रोताओं नमस्कार। फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे लेकर

0: हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका। हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन के साथ आज चुने हुए विषय पर आपसे करेंगे बात और सुनवाएंगे गीत हमारी पसंद के। दोस्तों, जैसा हमारा चित्त होता है, हमें संसार भी वैसा ही दिखाई देता है। यदि मन में सकारात्मक और सद्भाव हो तो हर ओर अच्छाई नजर आती है। हालात भले डगमगाए लेकिन मन अच्छाई पर डिगा रहता है। हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छाई होती है। अगर हम वही देखें और उससे सीखें तो रिश्ते भी बेहतर बनते हैं और मन भी हल्का रहता है। शोध से पता चला है कि दूसरों की सराहना करने से मस्तिष्क में फील गुड हार्मोन बढ़ते हैं और तनाव कम होता है। जब आप दूसरों की अच्छी आदतों और गुणों को पहचानते हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं और आप पर भरोसा करते हैं। दूसरों की अच्छी आदतों पर ध्यान देने से हम अनजाने में उन्हें अपने जीवन में अपनाने लगते हैं और यही बात हम सभी जानते हैं कि हमारा दिमाग उसी दिशा में ढलता है जिस दिशा में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं। दूसरों में अच्छाई देखने का अभ्यास मस्तिष्क की संरचना तक बदल सकता है जिससे लोग स्वाभाविक रूप से अधिक शांत और खुश रहने लगते हैं। तो चलिए, लोगों में अच्छाई देखने के गुण और सकारात्मक रवैया यानी जित देखूं तित भला के बारे में आप क्या कहेंगे? जुड़ते हैं हमारे आज के पहले कॉलर से। हेलो, नमस्ते।
1: नमस्ते जी।
0: हमारा आज एक विषय रहता है, उस पर हम आपसे बात करते हैं, तो क्या आप अपने उस विषय पर आप हमें अपने विचार बताएंगे?
1: तो विषय बताएं क्या है दीदी?
0: जित देखूं तित भला, जहां हम देखें वहां हमें भला दिखाई दे, अच्छाई दिखाई दे, इस विषय पर आप क्या कहेंगे?
1: जहां हम देखें
0: वहां हमें अच्छा दिखाई दे, क्या ऐसा होता है?
1: हाँ, होता है ना।
0: हाँ बताइए, इस विषय में आप क्या कहेंगे?
1: गांधी जी के तीन बंदरों की याद है, बुरा मत देख, बुरा मत बोल, वो अच्छे से अच्छे विचार रखें, अच्छा से अच्छी सोच रखें, अच्छा से अच्छा काम करें, अच्छा देखें, सबके प्रति अच्छा सोचें।
0: तो आपको किसमें क्या बात अच्छी लगती है? आपके दोस्त, परिवार, नाते रिश्तेदार, या आप जहां कहीं भी, एक कोई अनजान भी यदि आपको मिल जाता है तो उसमें आपको कभी कोई अच्छाई दिखाई दी हो तो एक आध उदाहरण या कोई इंसिडेंट हमें बताइए।
1: हम तो सब जितना बनता अच्छा करते। हमारे पिताजी ने एक अच्छा काम किया, देश हित के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़के महात्मा गांधी के नेतृत्व में जेल गए।
0: अच्छा,
1: फ्रीडम फाइटर थे हमारे पिताजी, 13 मार्च सजा काटी ने आजादी में।
0: क्या नाम था आपके पिताजी का? सादर नमस्कार है हमारा आपके पिताजी के लिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम बता दीजिए, क्या कहाँ से बात कर रहे हैं ये भी बता जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार।
2: नजर

0: हेलो, नमस्ते जी. कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैम, मैं पिंकी बात कर रही हूँ जगदीशपुर शिवगढ़ जिला रायबरेली से। जी
0: अरे पिंकी जी, रायबरेली से बहुत दूर से बात कर रहे
1: जी
0: हैं.
1: आज मैं आपके कार्यक्रम से फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ मैम। मुझे आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर से सुनते हैं।
0: अच्छा, अच्छी तरह से
1: जी
0: सुनाई
1: वहाँ
0: देता
1: से
0: है.
1: कनेक्ट करके सुनाते हैं ना मैम, सुनते हैं हम।
0: जी
1: तो
0: जी
1: आज मैं आपके कार्यक्रम में पहली बार जुड़ी हूँ।
0: अच्छा, आप कार्यक्रम इतने समय से सुन रहे हैं तो आज पहली बार क्यों लगाया आपने फोन? पहले क्यों ट्राई नहीं
1: जी
0: किया?
1: मैम, पहले मुझे नॉलेज नहीं था, तो मुझे किसी ने जानकारी दी। मैंने
0: हाँ,
1: मतलब कार्यक्रम के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे नंबर भी दिया और बोला कि कॉल ट्राई करना। तो कल से ट्राई कर रही थी, कल भी मिल गई थी, तो कल नहीं कॉल रिसीव हुई, आज हो गई। जी
0: आज होगी. चलिए, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि पहली बार
1: और
0: आपका
1: मैम,
0: फोन
1: मैं
0: लगाए.
1: आपका शुभ नाम जानना चाहूंगी क्योंकि आज मेरी फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है।
0: जी, तो हम बता दें, हम प्रियंका बात कर रहे हैं आपसे.
1: जी और मैम, मुझे ना आप लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। और मैंने ये सब मतलब जो बोलना और ये मतलब सब एक मतलब रेडियो से मैंने सीखा है मैम, आप लोगों को सुन सुन के। और
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है.
1: मैम कैसी हैं आप?
0: हम बहुत अच्छे हैं. और आपने जो ये बात कही ना कि हमने रेडियो से सुन सुन के बोलना सीखा है या बोलने का तरीका सीखा है, तो ये एक अच्छी बात आपने हमसे और रेडियो से सीखी है. तो पिंकी जी, आज हमारा विषय भी ऐसा ही कुछ है. तो बताइए, जित देखूँ
1: जी
0: तित भल, तो इस बारे में
1: बिल्कुल
0: आप क्या
1: मैम। और मैम,
0: कहेंगे?
1: रेडियो के माध्यम से ये मोहब्बत ही ऐसी है कि सभी श्रोता इतनी दूर होते हैं, फिर भी रेडियो के माध्यम से हम लोग एक दूसरे के माध्यम से कनेक्ट हो जाते हैं।
0: जी बिल्कुल. तो लेकिन

0: यही बात, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जित देखू तित भला, यानी आकाशवाणी रेडियो जो है वो हर तरफ अच्छाई और भलाई का काम कर
1: बिल्कुल
0: रहा
1: मैम,
0: है।
1: बिल्कुल मैम।
0: अच्छा जी, पिंकी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए, और अब एक सप्ताह बाद आप फिर से ट्राई कीजिएगा, है ना, और
1: ठीक
0: हमसे
1: है
0: बात
1: मैम, मैम
0: कीजिएगा।
1: बिल्कुल मैम, मुझे आपके यहाँ का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। मेरी बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी कि मैम आप लोगों से मेरी बात हो, आज हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: जी, तो ऐसी ही
1: और
0: अच्छी
1: मैम मेरे
0: लगने वाली,
1: दोस्त भी आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं मैम, उनका नाम क्या ले सकते हैं आपके
0: बिल्कुल
1: कार्यक्रम
0: दो
1: में?
0: तीन दोस्तों का नाम लीजिए और उन्हें भी ये जानकारी दीजिए, जैसे आपको कहीं से जानकारी मिली है फोन लगाकर बात करने की।
1: मुझे और मेरी दोस्त हैं गुंजन तिवारी, और मेरी सिस्टर है रिंकी, और मेरे भाई है दिलीप राजमाही, नीरज राजमाही।
0: अच्छा
1: श्रोता शिकायत भी करते रहते कि मेरी कॉल नहीं लगती, कॉल नहीं। मैम जब प्रयास करेंगे तभी तो हमारी कॉल लगेगी, जब हम कोशिश ही नहीं करेंगे बस सोचते रहेंगे कि हमारी कॉल नहीं लगेगी तो मैम कैसे लग जाएगी।
0: बिल्कुल, लेकिन वो श्रोता भी प्रयास करते होंगे तभी तो शिकायत कर रहे हैं ना, बिना प्रयास के
1: नहीं
0: तो कोई
1: मैम, मैं
0: शिकायत
1: बहुत
0: नहीं
1: सारे
0: करेगा।
1: चैनल से सुनती हूँ मैम। देखिए मैम, बहुत सारे श्रोता हैं जो एक साथ कॉल लगाते हैं तो कनेक्ट हो पाती किसी की नहीं हो पाती, लेकिन
0: जी
1: कभी शिकायत नहीं करना चाहिए, बल्कि अपना हौसला ऐसा रखे कि कभी हिम्मत ना हारे, टूटने भी लगे तो अपने हौसलों को बुलंद करे, एक ना एक दिन आपकी कॉल जरूर लगेगी।
0: अरे वाह पिंकी जी, बातों ही बातों में आपने तो कितनी सारी बातें कह दी जित देखू तित भला के बारे में।
1: जी बिल्कुल मैम,
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे और भी श्रोता इंतजार कर रहे हैं, आपसे
1: जी
0: काफी
1: जी
0: लंबी बात
1: बिल्कुल
0: हो
1: मैम,
0: गई है।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्ते।
1: नमस्कार जी।
0: कौन बात कर रहे हैं? अपना नाम और जगह का नाम बताइए।
1: मैं मनीष कुमार बोल रहा हूँ, आगरा।
0: स्वागत है आपका। मनीष जी, आज हमारा कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, यानी हम एक विषय आपको देते हैं एक, और उस पर आप अपने विचार हमें और हमारे श्रोताओं को बताएं ताकि हम जान सके कि उस विषय पर आप क्या सोचते हैं। जी, हमारा विषय हम बता रहे हैं, बिल्कुल बातचीत तो अभी शुरू हुई है। हमारा विषय है जित देखू तित भला।
1: जैसे दूसरी तरफ देखो तो एक दूसरे को मतलब तो अच्छा लगना चाहिए परिवार से, और उसकी बुराई मत करो,
0: जी
1: यही है दूसरे का रवैया।
0: जी लेकिन आप दूसरों में कोई अच्छा गुण कैसे देखते हैं? कौन सा गुण ऐसा है जो आपने किसी दूसरे से अपनाया हो, कोई अच्छा गुण?
1: गुण की तो उससे जब मालूम पड़ती है, उसके उसके दोनों के तालमेल मिलते हैं, वातावरण से अच्छे गुणों की मालूम पड़ती है।
0: आपने कोई बात अच्छी किसी से सीखी है, हमें बताएंगे आप?
1: अच्छी तो ये मतलब किसी से बुरा मत बोलो, अच्छा बोलो, बोलाओ
0: ये तो एक विचार है ना,
1: यानी तो।
0: जो हमारे अपने होते हैं कि भाई किसी का बुरा मत करें, है ना, करें हम। और लेकिन ये होता है ना कि जैसे किसी में कोई गुण होता है कि वो बहुत सलीके से रहता है, कोई सलीके से बोलता है, तो क्या उसकी वो बात वैसी बात आप अपनाते हैं या नहीं?
1: बनाते हैं मानव लाख होते बात वो मान भी जाते।
0: चलिए मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो
0: नमस्ते
1: हेलो,
0: नमस्ते
1: नमस्ते जी।
0: जी। बताइए अपना नाम और जगह का नाम। स्वागत है आपका।
1: मैं ग्राम अध्यक्ष गोयला कुमार थाना सोना तहसील महरौनी जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आपका अपना वीडियो तो दीपक कुमार नाम से बात कर रहा दीदी।
0: अच्छा जी, दीपक जी, अचानक आपकी आवाज़ थोड़ी कुछ ऐसी आने लगी कि जैसे कहीं नेटवर्क की दिक्कत हो।
1: जी, हमारे यहाँ जियो नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है।
0: हाँ, चलिए ठीक है, आपसे बातचीत हमारी हो पा रही है, बहुत अच्छी तरह तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहेंगे, आज विषय है, बात आपकी, गीत हमारे प्रोग्राम है, यानी लोगों में अच्छी बातें और सकारात्मक रवैया को लेकर आप क्या सोचते हैं।
1: जी देखो, ऐसा है कि हम हैं तो हम भले हैं तो सब अच्छे, जैसे आप लोग अच्छे हैं तो सभी अच्छे हैं। कहने लगती है कि आप भले तो जग भला।
0: जी
1: व्यक्ति, अगर व्यक्ति स्वयं के लिए सोचे, अगर आपके प्रति, अगर जो व्यक्ति स्वयं के लिए देखे, हम अगर किसी के सामने एक अंगुली बताते हैं कि आप में एक कमी है, तो तीन अंगुली अपनी ही कमी बताती है। पहले तो आदमी को अपनी कमी देखना चाहिए, किसी दूसरे की कमी बताना चाहिए।
0: जी
1: जी, अपन सारे से किसी को एक उंगली बताते हैं, तीन उंगली गलत का इशारा आप सबको ही देती है। हाँ, इसलिए हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए और सभी की भलाई करना चाहिए।
0: भलाई करना चाहिए और भलाई सब में देखना भी चाहिए।
1: जी
0: जी, धन्यवाद दीपक जी आपका, नमस्कार।
1: जी दीदी, और हमारी एक आपसे शिकायत है।
0: जी बिल्कुल कीजिए।
1: कुछ श्रोता कहने लगते हैं कि हमारी कॉल नहीं निकल रही है, तो आपसे आपसे विनम्र निवेदन है कि जितना कॉल रिकॉर्ड किया जाए, जितना आप निकाल सको, एक्स्ट्रा कॉलिंग रिकॉर्ड हो जाती है।
0: हाँ।
1: कुछ श्रोताओं की शिकायत रहती है हमारी कॉल शामिल नहीं हुई है, वो कार्यक्रम का इंतजार करती रहती है, कॉल भी उसकी रिकॉर्ड हो जाती है, फिर भी परेशान नहीं हो पाता है समय के अभाव से।
0: जी, बिल्कुल सही कहा आपने, समय के अभाव के कारण हमारे वो श्रोता रह जाते हैं कई बार, क्योंकि जिनके कॉल हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि कई श्रोताओं की फरमाइश ऐसी होती है कि अगर एक गीत उन्होंने 7 मिनट का चुन लिया है तो फिर हमें कॉल ही नहीं लेना, वही एक हमारे पास रास्ता रह जाता है ना।
1: इसीलिए तो आपसे कहा कि कॉल बिल्कुल सीमित लें, जितना आपसे कॉल लें तो बिल्कुल सीमित लें। जान लो हम 10 कॉल प्रसारण कर पा रहे तो 10 ही कॉल लें, ज्यादा कॉल एक्स्ट्रा ना लें, क्योंकि श्रोताओं को दिक्कत हो सुनने के लिए। श्रोता 1 घंटा का कार्यक्रम का इंतजार करते हैं और उनका
0: जी,
1: कॉल ना निकले तो उनको बहुत दुख होता है।
0: लेकिन देखिए दीपक जी, ऐसा भी है कि कई बार हम सीमित कॉल ले लेते हैं, लेकिन कई श्रोता के ऐसे रहते हैं कि नेटवर्क की दिक्कत रहती है, कहीं कोई श्रोता अच्छी तरह बात नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है, तो फिर हमें उनके कॉल हटा देने पड़ते हैं, इसलिए भी हम एक्स्ट्रा कॉल रिकॉर्ड करते हैं, है ना। तो दोनों ही तरह से सोचा जाए तो आपकी भी बात सही है, और क्योंकि हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि श्रोताओं के फोन कॉल भी लिए जाए, उन्हें अच्छी क्वालिटी मिले सुनने के लिए, हम इस पर भी ध्यान देते हैं, और उनकी जो फरमाइश है वो भी वो पूरी सुन सके, इस पर भी हमें सोचना पड़ता
1: और
0: है
1: एक
0: ना।
1: सुझाव और है हमारा
0: बिल्कुल।
1: कि जो आप विषय रखती हैं कार्यक्रम में, तो विषय अगर कार्यक्रम के अंत में एक दिन पहले के कार्यक्रम में बता दिया जाए, जैसे कल का विषय है जो आज के कार्यक्रम में बता दिया जाए, तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: जी, आपका ये सुझाव बहुत ही सराहनीय है।

0: हम इस विषय पर अवश्य विचार करेंगे आपके।
1: इसलिए कि हम लोग जो आप विषय रखती हैं तुरंत की तुरंत जल्दी बात सोचने समझने में दिक्कत,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात कही कि हर व्यक्ति तुरंत बोल पाने में सक्षम नहीं होता है, समर्थ नहीं होता है, तो एक दिन पहले वो उस विषय पर सोच ले और अगले दिन फिर बात कर सकता है। ये
1: क्योंकि हम लोगों का फोन लग जाता है तो बहुत खुशी हो जाती है, तो फिर विषय में दिक्कत आ जाती है बोलने में।
0: बिल्कुल, ये बात आप हम मानते हैं और हम ऊपर के अधिकारियों तक आपकी ये बात अवश्य पहुंचाएंगे। तो हो सकता है आने वाले जो भी फोन कॉल्स रिकॉर्ड्स होंगे या प्रोग्राम रिकॉर्ड होंगे तो आप उसमें सुनिएगा, अगले दिन का विषय सुन सकते हैं, यदि हमें इजाजत मिली, अनुमति मिली तो अवश्य इस बात को हम प्रसारित करेंगे।
1: जी, हमारी बात किस तरह, आपका शुभ नाम?
0: जी, मैं प्रियंका बात कर रही हूँ।
1: जी दीदी, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, आपके सभी कार्यक्रम सुनते रहते हैं।
0: जी, हमें भी आपसे बात करके अच्छा लगा, आपने शिकायत भी बहुत अच्छी की, तो उम्मीद करते हैं उसका समाधान भी आपको मिला होगा और आपने जो सुझाव दिया वो भी हमें अच्छा लगा, तो हम प्रयास करेंगे कि हम आपके उस सुझाव पर विचार करें और उस पर अमल करें।
1: जी दीदी
0: जी, धन्यवाद दीपक जी।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है आपका, लेकिन हम आपका नाम जानना चाहेंगे तभी तो स्वागत अच्छी तरह कर पाएंगे।
1: प्रदीप कुमार है जी।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं प्रदीप जी?
1: नई कॉलेज बसई नवाब जिला धौलपुरा स्थान से।
0: ये कहाँ पर है दलबरा?
1: ये बसई नवाब धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है जी।
0: अच्छा, चलिए बढ़िया। तो क्या करते हैं आप?
1: मैं राजमिस्त्री हूँ।
0: अच्छा, तो आप कार्यक्रम सुनते हैं? आप
1: बिल्कुल मोबाइल पर सुनते हैं।
0: मोबाइल पे सुनते हैं। तो आज के कार्यक्रम में बात आपकी गीत हमारे, हम एक विषय दे रहे हैं, आप क्या उस पर बोल सकते हैं?
1: बिल्कुल बोला है, मैं आपका बहुत पुराना श्रोता हूँ। 91 से मैं जुड़ा हुआ हूँ आकाशवाणी से।
0: जी। आज हमारा विषय है जित देखू तित भला, यानी हम जो भी जिन भी लोगों से मिलते हैं उनमें हमें अच्छा दिखाई देता है, इस विषय पर आप क्या कहेंगे?
1: अच्छा भलाई मतलब जैसे किसी की तो एक तो बुराई नहीं होनी चाहिए।
0: जी, लेकिन बुराई तो होती ही है ना, हर सभी में होती है बुराई, तो सभी में होती है और अच्छाई भी होती है, लेकिन हमें देख
1: अच्छा ही होना चाहिए,
0: अच्छा ही होनी चाहिए। तो वही तो हम कह रहे हैं कि आप लोगों में ज्यादा से ज्यादा अच्छाई देखने का नजरिया रखते हैं, कैसे रखते हैं, और क्या उनकी कौन सी बात आपने किसी दूसरे से अपने जीवन में अमल में लाई हो?
1: भलाई ना आवे उसमें तो उसकी दूसरे की मतलब बुराई भी नहीं करना चाहिए, पहली बात तो एक ये है हमारी।
0: बराबर, ये एक अच्छाई वाली बात आपने कही कि लोगों से ये अच्छाई लेनी चाहिए कि हम किसी की बुराई ना करें।
1: दूसरे बुजुर्गों की उनकी कोई अच्छी बात बताए तो उसके दिमाग में रखनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और जैसे मतलब कोई राम आड़े है वैसे ही है, उसकी बातें बताते हैं तो उसकी भी बतानी चाहिए। दूसरा पूछता है तो मतलब क्या सीख क्या उसमें है तुम।
0: बिल्कुल, जैसे कि हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं और जब स्कूल से बच्चे घर आते हैं तो हम सबसे पहले यही पूछते हैं कि आज क्या सीखा है स्कूल में। अच्छी ही बात सीख कर आते हैं बच्चे, पढ़ाई से संबंधित बात सीख कर आते हैं। तो ऐसे ही हम आम जन जीवन में जो है इस तरह की बात को हमें देखना चाहिए कि हम जहाँ सीखे अच्छा सीखे।
1: सबसे ज्यादा तो कम यही है।
0: बिल्कुल। तो प्रदीप कुमार जी, धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।
1: नमस्कार जी।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते, मैं अनु पांडे बात कर रही हूँ गोंडा से। हाँ,
1: गोंडा।
0: यूपी।
1: अच्छा जी, क्या नाम बताया, एक बार फिर से बताइए।
0: अनु पांडे जी,
1: अनु जी।
0: मैम आज मेरी फर्स्ट बार कॉल लगी है और मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है।
1: जी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे नए श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं और पहली बार फोन किया उन्होंने और उनका फोन लगा।
0: हाँ, अब मुझे आपसे जोड़ा है पूनम जी ने, जो कानपुर की है, और मैं आपके लिए कुछ लाइनें बोलना चाहूंगी।
1: जी
0: आसमान से तोड़ के एक तारा दिया है, आसमान से तोड़ के एक तारा दिया है, मेरी तन्हाइयों का सहारा दिया है, मेरी किस्मत भी मुझसे नाज करती होगी क्योंकि ऊपर वाले ने दोस्त भी मुझको इतना प्यारा दिया है आप जैसा।
1: तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। और जब हमारे दोस्त इतने अच्छे हैं तो हम तो अच्छे होंगे ही, क्योंकि आपसे ही तो हम अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। जो हमारा आज का विषय है कि जित देखूं तित भला, हम दूसरे में कोई अच्छी बात देखते हैं, सीखते हैं, उनसे अपने जीवन में अपनाते हैं, तो इस
0: मैम
1: बारे में आप
0: आप
1: क्या
0: ही ना,
1: कहेंगे? अच्छा जी, तो ये जो आपने बात कही कि हम जैसे प्यारे दोस्त आपके जीवन में हैं, तो आप जैसे प्यारे श्रोता हैं, तभी तो हम भी इतने अच्छे हैं। आपसे बात करके ही हम सीखते हैं अच्छी बातें।
0: जी मैं ना, हम लोग आपसे सीखते हैं, आप लोग कुछ बहुत थोड़ा बहुत मुझसे सीखते होंगे, लेकिन मुझे तो लगता है हम लोग ज्यादा आप ही से सीखते हैं।
1: अच्छा, और हमें लगता है कि हमारे पास श्रोताओं की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है ना, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा हमारे श्रोताओं से सीखते हैं।
0: जी मैम,
1: जी, तब ये बताइए कि आप अपने आसपास के वातावरण में और अपने आसपास मिलने जुलने वाले लोगों से क्या अच्छी बात सीखते हैं?
0: मैम मेरे आसपास सबसे बड़ी बात ये बहुत अच्छी बात है कि अपनापन बहुत है, और मेरे आसपास कोई भी बात करता है तो तेरा मेरा करके बात नहीं करेगा, अपना करके बात करेगा, कि जैसे लगेगा सब अपना ही है, और एक दूसरे का सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, ये बहुत अच्छा लगता है मुझको।
1: बहुत अच्छी बात है, तो ये चीज आप दूसरों से सीखते हैं।
0: हाँ
1: जी, बहुत अच्छी बात है अनु जी, और हमें इसी तरह आप फोन करते रहिए, अपने विचारों से हमें अवगत कराते रहिए, हमारे श्रोताओं को भी अवगत कराइए, और हमारे श्रोताओं की और भी संख्या आपके माध्यम से बढ़े, ये हम उम्मीद करते हैं।
0: जी मैम, हम संख्या भी बढ़ाएंगे, जब मुझको सफलता मिल गई है, आज मेरी कॉल लग गई, बात हो रही है, तो हम और लोगों को भी जोड़ेंगे और हमेशा जुड़े रहेंगे।
1: बिल्कुल, क्योंकि अपनी खुशी तो हम सभी को बताते हैं ना। आज आप कितने दोस्तों से कहेंगे कि आज हमारा फोन कॉल लगा, है ना?
0: हाँ, बहुत
1: जी
0: सारे लोगों से बताऊंगी ना।

0: आज मेरी पहली बार कॉल लगी। वैसे तो मैं आकाशवाणी पे FM पे बहुत सारे जगह कॉल लगाती हूँ, पर आपके आज मेरी पहली कॉल है, मेरी पहली बार लगी है।
1: जी जी जी, तो अनु जी बस इसी तरह हमें फोन करते रहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि आज आपका फोन कॉल लगा है तो आप अगला कॉल अब एक हफ्ते के बाद लगाइए ताकि हमारे दूसरे श्रोताओं को भी अवसर मिले। जी नमस्ते।
0: मैं इस चीज का हमेशा ध्यान रखती हूँ, मैं कहीं भी कॉल लगाती हूँ तो हफ्ते 10 दिन का गैप कर ही देती हूँ। रूल है हफ्ते 10 दिन के गैप का, तो भी नहीं है तो भी, क्योंकि इससे ये अच्छा लगता है कि अलग अलग मतलब और भी ज्यादा लिसनर को जुड़ने का मौका मिलता है और नए नए लोग आते हैं तो नई नई बातें जानने का मौका मिलता है, उनके आसपास के बारे में जानने का मौका मिलता है, तो काफी अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल।
0: और जब हर बार हम ही कॉल करेंगे, हम ही बात करेंगे, तो फिर नई नई बातें कहाँ से जानेंगे और हमारे दोस्तों की संख्या कहाँ से बढ़ेगी।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही अनु जी आपने, मतलब ये तो बिल्कुल सटीक बात है। आज हमारे कार्यक्रम का जो शीर्षक है बात आपकी गीत हमारे का, उससे संबंधित आपने बहुत अच्छी बात कही है ये हमारे लिए और हमारे और श्रोताओं के लिए भी।
0: जी मैम।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते मैम।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को बढ़ाने और टिकाऊ रोजगार के अवसर पैदा करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कुछ प्रकारों पर उत्पाद शुल्क को माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय ने ओमान के तट के पास कल भारत के वाणिज्यिक जहाज सेट बेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। घटना के बाद मंत्रालय ने अमेरिका के विदेश मामलों के प्रभारी जेसन मीक्स को तलब किया है। जहाज पर सवार 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 3 लापता हैं। राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-233-6112 का शुभारंभ किया है। इसके माध्यम से प्रदेश की महिलाएं अपनी शिकायतें, समस्याएं और सुझाव दर्ज कर सकेंगी। मौसम विभाग ने प्रदेश के 34 जिलों में आज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में पहला गीत हमने लिया है फिल्म आशिकी से, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल ने। शब्द रचना है समीर की और गीत की धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

वैभव गीत पसंद करना चाहा था आप सभी श्रोताओं ने कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय श्रीमती उषा राय अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय ने इसी गीत को सुनना चाहा था गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले ने लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम की अगली फरमाइश जिसे हमने लिया है फिल्म सड़क से स्वर हैं अनुराधा पोडवाल और कुमार सानू के ये शब्द रचना है समीर की और संगीत निर्देशन है समीर और सुरेंद्र साथियों का तो इस गीत को सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य अभयनंद आर्य परमानंद आर्य पंकज प्रमोद रोहित और मोहित ने इसी गीत को सुनना चाहे बिहार कॉलोनी से नसीमुल इस्लाम गुनौरी प्रकाश वीर राजपूत डोडी लाहौरा बलोद से कमलेश जयपुरिया ने टाउनशिप भिलाई से अनुश्री प्रदीप पिंकी और प्रमिला प्रदीप ने

फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगला गीत हमने लिया है फिल्म दिल का क्या कसूर से। स्वर है साधना सरगम की, गीत लिखा है समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का। इस गीत को सुनना चाहे आप सभी ने, सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा, सालिया, शुएब खान, सादिक भाई और शाहिद भाई। इसी गीत को सुनना चाहे मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंद सिंह और महावीर संधू, गुरचरण और रमेश मिगलानी ने। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

0: इसी गीत के साथ फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

लीजिशु ने कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म रहना है तेरे दिल में सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में इस गीत को सुनना चाहे यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार योगेश मालाकार सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार ने।

इस गीत को पसंद किया था आप सभी ने, यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार ने। इस गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है अंतराल का।

0: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: कवि हेमंत देवलेकर।
4: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है, हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाजें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाए। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
5: अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जंग लगी तलवार का 6वां भाग।
6: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना, शिबू यशवंत के साथ घर लौटता है। यशवंत नारायणी को शिबू के टीबी होने की बात बताता है तो वो दुखी होती है। गेहूं के खेत में मजदूरों की सभा को शास्त्री जी संबोधित करते हैं और हड़ताल का आह्वान करते हैं। गांव के किसान भी मजदूरों का साथ देते हैं। कंपनी की शह पर सभा को सफल होने नहीं दिया जाता। यशवंत बलबीर स्वामी के साथ शास्त्री जी से मिलने जाता है। अगले दिन दलित मजदूरों की सभा करने का फैसला होता है। यशवंत नारायण

रानी को हड़ताल का विरोध न करने के लिए समझाता है। बसुमती का लड़का नौकरी से निकाले जाने के बाद साई नदी के पास बनी दलित बस्ती में अपनी अम्मा से मिलने अपनी लड़की पार्वती के साथ आता है। भृगु यहीं पर रहकर मजदूरी करना चाहता है। अपनी अम्मा के मुंह से हड़ताल की बात सुनकर वो चौंकता है। अब आगे

0: मजदूर साथियों, हम लोग शांति से हड़ताल करेंगे, क्या आप लोग तैयार हैं?
1: मजदूर एकता
2: जिंदाबाद।
0: हमारा सच्चा उद्देश्य तभी सफल होगा जब सबके पास आत्मत्याग की भावना होगी। हड़ताल की सफलता में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। साई की ये बहती धारा मेरी बात की मूक गवाह है। आप सभी को यूनियन का तन मन धन से साथ देना होगा। बोलो, दोगे? हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय, जिला मजिस्ट्रेट तथा चीफ इंजीनियरों को भेजने के लिए नोटिस तैयार किया है। क्या ये आप सब लोग सुनना चाहते हैं? तो सुनिए, रायबरेली जिले के मजदूर सन 1976 के अप्रैल महीने से काम की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे अनेक प्रतिनिधियों ने अब तक केंद्र और राज्य के मंत्रियों से बात की है, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम रही। पिछले लोकसभा चुनाव में सरकार भी बदल गई है। नई सरकार से मजदूरों को आशा की नई किरण दिखाई दी है। नई सरकार बनने के बाद हमने 6 महीने इंतजार किया, पूरे 6 महीने। केंद्र के श्रम मंत्री, राज्य मंत्री, आयुक्त, सहकारी केंद्र और राज्य के मंत्रिमंडलों के सचिव से मिलकर हमारे प्रतिनिधिमंडल ने बहुत बार बात की। सबके जूते घिस गए। कंपनी के अधिकारियों ने सरप्लस मजदूरों की सूची तैयार की, जिससे दिहाड़ी मजदूरों के सिर पर बिजली गिरी। मौखिक रूप से स्थानीय यूनियन के स्थानीय संचालक का जो भी समझौता हुआ वो टूट गया। संचालक ने विश्वासघात किया। अब कोई उपाय नहीं बचा है, इसलिए मजदूरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का फैसला किया है। यह हड़ताल 20 तारीख से शुरू होगी और उचित व्यवस्था होने तक चलती रहेगी। मेरे साथ बोलिए, मजदूर यूनियन
2: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
1: लड़ेंगे,
2: जीतेंगे,
1: लड़ेंगे,
2: जीतेंगे।
0: कल हम 1 हफ्ते का नोटिस देंगे, उसके बाद हम सब लोग इस धर्म युद्ध में कूद पड़ेंगे। मजदूर एकता
2: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
1: हर जोर जुल्म की टक्कर में
2: संघर्ष हमारा नारा है।
1: हर जोर जुल्म की टक्कर में
2: संघर्ष हमारा नारा है।
3: अध्यक्ष महोदय, हमें हड़ताल से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन हमारी एक शंका का अभी तक समाधान नहीं हो पाया है।
0: शंका? कैसी शंका? साफ साफ कहो।
3: हड़ताल के नतीजे के बारे में हमें अभी कोई स्पष्ट गारंटी नहीं मिली है।
0: क्या गारंटी चाहते हो?
3: महोदय, हम लोग दिहाड़ी मजदूर हैं। हम लोगों को पेट पर गांठ बांधनी पड़ेगी। हमारे बच्चे भूखे भी मर सकते हैं। बोलो, क्या गारंटी दोगे?
1: हाँ, बोलो बोलो,
3: गारंटी दोगे?
1: बोलो।
0: किसने कहा कि हम लोग गारंटी नहीं दे सकते? हम गारंटी देंगे और जरूर देंगे। हर तरफ से पैसों का बहाव आएगा, कोई भूखा नहीं मरेगा। साय की धारा महानदी बनेगी।
3: ठीक है महोदय, हम लोग तुम्हारे आश्वासन पर हड़ताल शुरू करेंगे, लेकिन हड़ताल का नतीजा कुछ बुरा हुआ
0: तो क्या होगा तब?
3: तो हम लोग तुम्हें और दूसरे यूनियन नेताओं को साई के बालू में जिंदा गाड़ देंगे।
1: हाँ।

किसी दूसरे घर जाती तो उसका पति अपनी अपनी पलकों पर बिठा कर रखता। लेकिन लेकिन मैं क्यों सोच रहा हूं ये सब? नहीं नहीं, मुझे पर स्त्री के विषय में सोचने का भला क्या अधिकार? कहीं मैं उसकी ओर आकर्षित तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, मुझे अपने आप को भटकने से रोकना होगा। इंसानियत के नाते भले ही मैं उसकी मदद कर दूं, बस इससे अधिक उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है।

0: अरे यशवंत,
1: अरे यशवंत, हम तुझे कहाँ कहाँ खोजते फिर रहे हैं।
2: काकी, तुम मुझसे कोई काम है?
1: हाँ। अच्छा ये बता, हड़ताल होने का फैसला हो गया है क्या?
2: हाँ काकी, अब तो नोटिस भी दिया जा चुका है, हड़ताल तो होकर ही रहेगी।
1: अरे तुझसे हमको ऐसी आशा नहीं थी। अरे तू भी नेताओं के चक्कर में पड़ गया लगता है।
2: काकी, ये हड़ताल हमारे हक की रक्षा के लिए हो रही
1: है। कैसा हक है? कैसा हक यशवंत? अरे हड़ताल हुई तो चारों ओर भूख नाचेगी, भूख, खून खराबा, लाश, चील, गिद्ध, हिंसा ही हिंसा। हे गांधी भगवान, इस नादान को क्षमा कर, क्षमा कर इसे। तू
2: चली गई काकी भी ना, बस
3: हाँ शिबू, तबीयत कैसी है भाई?
4: अरे लीचू भैया, अब तो काफी आराम है। वैसे लीचू भैया, इस कंपनी में और दलित मजदूरों की बस्ती में हम दोनों एक जैसे ही हैं।
3: है? मतलब?
4: मतलब के दोनों अपंग। मैं टीबी का मरीज, ये हड्डियां निकला शरीर।
3: हाँ भाई शिबू, मैं भी अपंग, मेरा एक पैर खराब है। लेकिन हम दोनों पहले तो ऐसे नहीं थे। हाँ। तुम भी भले चंगे थे, हाथ पैरों में जान थी, खूब मेहनत करते थे तुम।
4: अरे जो मेरा हाल है सो तुम्हारा। तुमको जन्म से तो अपंग नहीं थे ना?
3: हाँ हाँ।
4: कंपनी के काम करते हुए ही तुम्हारी ये टांग कटी।
3: हाँ भैया, सुना है शिबू, सरकार अपने कर्मचारियों को इलाज का रुपया देती है और हमें कंपनी गालियां देती है। अरे इलाज तो दूर, नौकरी से निकाल देती है।
4: अरे लीचू भैया, ये देश हमारा है और हम सब इस देश के रहने वाले हैं, आजाद हैं। अरे वो भी काम करते हैं और हम भी भरपूर मेहनत करते हैं। पर लीचू भैया, फिर अलग अलग कानून क्यों है? ये कौन सा न्याय है भैया?
3: अरे शिबू, पढ़े लिखे बताते हैं कि कानून की नजर में तो सभी बराबर हैं, लेकिन अफसर की टेढ़ी नजर है। बराबरी कागजों में बंद है और उसी के साथ बंद है हमारी किस्मत। ये लीडर लोग हम गरीबों को बहका फुसला कर हड़ताल कराते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं, और कुछ नहीं बस।
4: हाँ भैया, देखो तो भला, दुहाई देते हैं गरीबों की, बात करेंगे गरीबों की, उनकी भलाई की, और भलाई की मलाई चट कर जाएंगे ये लीडर लोग खुद।
3: अरे शिबू, शिबू, शिबू, आज तक किसी लीडर को पिटते देखा है? किसी लीडर को मार खाते देखा है? किसी लीडर को गरीब देखा है? किसी लीडर को मेहनत करते देखा है? किसी लीडर के बच्चे भूखे सोते हुए देखे हैं तू नहीं?
4: अरे नहीं नहीं नहीं लीचू भैया, काम धाम कोई नहीं, बस ऐश आराम भरपूर, यही तो है लीडर का मतलब।
3: भैया, अपनी अपनी किस्मत है और क्या।
4: क्या करें लीचू भैया, क्या करें, हम लोग तो सिर्फ बातें करके रह जाते हैं, कुछ कर नहीं सकते, नहीं कर सकते कुछ, नहीं तो हालात बदल सकते हैं।
3: अरे भैया, जब मैं साहब लोगों के घरों में सफाई का काम करता था ना, तो कान उनकी बातें सुनने में लगे रहते थे। शिवू भैया, मैंने अपने इन्हीं कानों से सुनी है।

0: दूसरे देशों की बातें।
1: अच्छा लिच्छू भैया, कुछ कुछ हमें भी तो बताओ।
2: देखो लिच्छू भैया, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो कुछ ही तुम बता दोगे।
0: शिबू शिबू, बड़े लोग कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है। गरीब इसलिए गरीब रह जाता है कि वो पढ़ता लिखता नहीं है।
2: हाँ लिच्छू भैया, ये बात तो सच है। अब हाथ कंगन को आरजी क्या, वो अपने यशवंत भैया को ही देख लो ना, पढ़ लिख गया तो यूनियन कमेटी में बैठ गया।
0: अरे सुनो सुनो शिबू, मैंने सुना है कि दूर देशों में सिर पर मैला ढोने की प्रथा बिल्कुल नहीं है। हाँ? और सभी को खाने के लायक तो मिल ही जाता है।
2: अच्छा लिच्छू भैया, अब इसे भाग्य कहें, कर्म गति कहें, अनपढ़ता कहें, क्या कहें।
0: अरे नहीं शिबू,
2: देखो लिच्छू भैया, हम तो हालात से समझौता करके संतोष कर लेते हैं
0: बस,
2: लेकिन कुछ कर तो नहीं सकते ना।
0: इसी बात का तो होना है।
2: देखो लिच्छू भैया, मैं तो बस यही सोचता हूँ कि बेटे को जरूर पढ़ाऊंगा, जरूर पढ़ाऊंगा उसे, लेकिन अभी तो हालात पेट भरने लायक भी नहीं है, कैसे पढ़ाऊंगा उसे। लगता नहीं मैं अपनी उम्र में बेटे को पढ़ता लिखता देख पाऊंगा।
0: अरे शिबू शिबू शिबू, घबराओ नहीं भैया। और सुनो, साहिब लोग कहते हैं कि दूर देशों में गरीब भूखे नंगे क्रांति कर देते हैं, और हमारे देश में भूखे नंगों के कारण क्रांति कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं।
2: लिच्छू भैया, बड़ी गहरी बात है, बड़ी गहरी बात है। अरे अपनी समझ के ऊपर है।
0: हाँ ऊपर ही है।
2: देखो भैया, हम तो विवश हैं, हमारे भाग्य में लिखा है कि हम अपनी आंखों के सामने अपनी बहु बेटी की इज्जत लूट के देखते रहे।
0: चुप कर।
2: कानून साहब बहादुर की तरफदारी करता रहे। गरीब की कौन सुनता है, कौन सुनता है।
0: बस कर शुरू, बस कर। तू आराम कर, मैं चलता हूँ। टाइम पास करने के लिए इधर उधर भटकूंगा बस, और कुछ भी नहीं। भगवान ने ये टाइम की कैसी विचित्र बला बनाई है। तू आराम कर, बहुत थक गया है।
2: थक तो गया हूँ, लेकिन लिच्छू भैया आते रहना। अरे सुख दुख में तुम्हारा ही तो सहारा है मुझे।
0: अरे ऐसा क्यों कहता है शिव शिव, आराम से। अरे हमें एक दूसरे का ही तो सहारा है।
2: अरे जो
0: क्या है। हाँ तू आराम कर। अच्छा
3: कहाँ जा रही हो नारायणी?
4: अरे आप यशवंत बाबू? कहाँ जाऊंगी मैं, पर आप कहाँ जा रहे हैं?
3: सच बताओ नारायणी, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था। माँ विंध्या वासिनी से तुम्हारे पति के ठीक होने की प्रार्थना करके।
4: यशवंत बाबू, मेरे लिए आप कितनी चिंता करते हैं ना।
3: मुझे अच्छा लगता है नारायणी।
4: यशवंत बाबू,
3: हाँ
4: सुना है कंपनी वाले रंगपुर से नए लोगों को लाए हैं मिट्टी काटने वाले काम के लिए।
3: हाँ सुना तो मैंने भी है नारायणी, शायद नहीं भी, लेकिन ये बात सच्ची समझो तुम।
4: मतलब कि कंपनी वाले ये बताना चाहते हैं कि हम पर हड़ताल का कोई असर नहीं होगा, हम हड़ताल वालों की परवाह नहीं करते। यशवंत बाबू,
3: हाँ
4: मेरा तो कलेजा धक-धक करता रहता है, पता नहीं क्या होगा।
3: देख नारायणी, हड़ताल वाली बात हमारे किसी के हाथ में नहीं है। ये ऊपर वाले लीडर अपनी हेखड़ी चलाने के लिए गरीब मजदूरों को बलि का बकरा बनाते रहते हैं। अरे ये तो उनका खेल है, कोई मरे कोई जिए इन पर कोई असर नहीं पड़ता। हमारी तकलीफों के नाम पर इनकी दुकानें चलती रहती हैं,

0: अरे ये भी व्यापारी हैं, बड़े सौदागर।
1: ये बात आप कह रहे हैं यशवंत बाबू, आप भी तो।
0: वो क्या है ना नारायणी, कि अब मैं भीतर की बातें भी जानने लगा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। अरे हम गरीबों की किस्मत तो गाय बैलों की तरह है, जो मालिक बनता है अपने किस्म से हाँकता रहता। अरे ये
1: आपका रुमाल गिर गया, मैं उठाई देती हूँ। ये लो।
0: अरे नारायणी, तुझे तो बुखार है,
1: वो
0: तेरा बदन तो गर्म हो रहा है। चल घर चल, आराम कर, मैं दवाई लेकर आता हूँ।
1: बाबू इतना बुखार तो रोज ही चढ़ा रहता है।
0: फिर भी तू काम पर जाती है?
1: काम पर नहीं जाऊंगी तो पेट कैसे भरेगा, मेरा काम ही मेरा आराम है। बाबू ये इस तरह मेरी तरफ टकटकी लगाए क्या देख रहे हो?
0: कुछ भी नहीं नारायणी।
1: तो मेरा मेरा हाथ तो छोड़िए ना, कब से मेरा हाथ पकड़े हुए हैं आप? डॉक्टर भी तो ऐसे ही नब्स पकड़कर रोग पहचानता है। आप डॉक्टर लगते हैं
0: है? क्या? हाँ हाँ नहीं, अब पता नहीं कैसे नारायणी, मैं बहुत देर से तुम्हारा हाथ पकड़े हुए हूँ। अब लो छोड़ दिया, अच्छा अब चलता हूँ।
1: अच्छा हुआ बाबू कि अभी किसी ने देखा नहीं।
0: हाँ
1: नहीं तो पूरी लाइन में ही क्या पूरी कंपनी में हल्ला हो जाता।
0: हाँ हाँ वो ठीक है। अच्छा एक बात बता नारायणी।
1: क्या?
0: तेरे पति कैसे हैं?
1: ठीक है ठीक है, आप घर आएंगे उन्हें देखने?
0: हाँ हाँ आऊंगा, जरूर आऊंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना नारायणी।
1: हाँ बाबू आप भी अपना ध्यान रखना।
0: अरे शिवू शिवू, हमारे भूमिहीन लोग जिंदगी भर हार तोड़ मेहनत करते थे, लेकिन कभी भर पेट खाना नसीब नहीं हुआ। चारे अच्छे दिन आने की आस में टकटकी लगाए इस दुनिया से विदा हो गए, मगर उनका सपना कभी पूरा नहीं हुआ शिवू, कभी पूरा नहीं हुआ।
2: अरे लिच्चू भैया, वैसा ही सपना ये यूनियन वाले भी हमें दिखा रहे हैं, पर सपना तो सपना ही होता है ना। पर गरीबों के सपने भी कभी पूरे हुए हैं?
0: अरे शिवू, गरीब सपनों में जीता जरूर है, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलता हुआ देख नहीं पाता। शिवू शिवू आराम से आराम से। अरे शिवू, हमारे समाज की कितनी ही पीढ़ियां इन्हीं सपनों में काल कवलित हो गई हैं।
2: अरे लिच्चू भैया, यहां से अच्छे दिन तो हमारे चारे खेरा वाले दिन थे। तब नारायणी ठाकुर साहब के यहाँ कपड़े धोने जाया करती थी, खाने पीने की कोई कमी थी नहीं।
0: अरे हाँ शिवू, सुना है ठाकुर साहब मांगने जाने पर मना नहीं करते थे?
2: हाँ ठीक ही सुना है तूने।
0: अच्छा,
2: पर मुझे ठाकुर साहब की एक बात अभी भी याद है।
0: कौन सी बात कौन सी बात? हाँ
2: अरे वो चारे खेरा के कंपनी के स्कूल में हमारे दलित लड़कों को बोरी बिछाकर बैठने दिया जाता था।
0: अच्छा
2: हाँ, वो एक दिन क्या हुआ कि ठाकुर साहब स्कूल पहुंचे। हाँ? और सब बच्चों की बोरियों को इधर उधर कर दिया।
0: अच्छा
2: हाँ हाँ, और तब से दलित बच्चे भी साहब लोगों के बच्चों के साथ बैठने लगे।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं शिवू, नहीं नहीं मैं नहीं मानता ऐसा हुआ।
2: अरे लिच्चू लिच्चू, तुझे तो ना ना मानने की बीमारी है।
0: अरे नहीं नहीं शिवू नहीं, दलित बच्चे तो अभी भी साहब लोगों के बच्चों के साथ बैठने लायक नहीं हुए। अरे तू बीमार आदमी, कंपनी का स्कूल कभी देखा है तूने?
2: देख लिच्चू देख देख, तू मुझे ताव ना दिला।
0: अच्छा
2: अरे मैंने कंपनी का स्कूल नहीं देखा तो क्या हुआ? अरे
3: ये बता, तूने देखा है क्या?
0: हाँ हाँ देखा है, देखा है। अरे जब मैं अपंग नहीं हुआ था और मेरा पैर ठीक था, तब मैं कंपनी के स्कूल में पखाना साफ करने का काम करता था। अपंग होने से पहले मुझे स्कूल और दफ्तर में ड्यूटी मिलती थी, इसीलिए कह रहा हूँ तुझे।
2: हाँ, हाँ, हाँ, मैं जानता हूँ कि तू सच कह रहा है।
0: हाँ
2: भाई, मैं तो साहब लोगों के बच्चों के साथ दलित बच्चों के समान होने का सपना बुन रहा था।
0: अच्छा,
2: मगर लिच्चू भैया, तेरी सच्चाई ने मेरे सपने को तार तार कर दिया।
0: अरे शिवू, मेरी भी बड़ी इच्छा है कि मेरा बेटा जगन्नाथ पढ़े लिखे। अगर वो पढ़े तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी यशवंत जैसा बन जाएगा। अरे कंपनी में मुंशीगिरी करेगा।
2: अरे भैया लिच्चू, तेरी तो वही कहानी है, घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने हैं।
0: ठीक है भैया, छोड़ इस बात को छोड़।
3: सुन सुन शिवू, सुना है बटेली के पास ही मुरादाबाद के सफाई कर्मचारी और दुसाद जाति के लोग मंदिर के आंगन में लंगर खाने बैठने लगे हैं।
2: ओ, वो पासी और सफाई कर्मचारी। अरे जानता नहीं तू
0: क्या?
2: सफाई कर्मचारियों के जायसवार, लाठीकर, कुरार, गावाईलिया और फारीकरों के बीच कैसी सरफुटेवल मारपीट हुआ करती थी।
0: अरे उनकी बात छोड़, हमारे माधिया दरदावा और चिदरूरिया के बीच भी कैसी मारपीट होती थी, तुझे नहीं मालूम?
2: मुझे पता
0: है।
2: अरे लिच्चू, लेकिन अब वो पहले जैसे दिन नहीं रहे। अरे काफी बदलाव आ गया है, है ना?
0: अरे मेरे साहब के ब्राह्मण मुंशी के घरेलू जमादार लक्ष्मण सिंह की कहानी जरा पुरानी है। सुन सुन सुन, ब्राह्मण मुंशी साफ सफाई पसंद आदमी थे। सफर करते समय कभी कभी सफाई करने के लिए लक्ष्मण सिंह को भी साथ लेकर जाते थे।
2: हाँ लिच्चू, अरे वो दिन ही कुछ और तरह के थे।
0: ठीक कहा तूने। अरे और जानता है शिवू, लक्ष्मण सिंह बग्घी के कोचवान के पास बैठकर जाता था। एक दिन लक्ष्मण सिंह का कायस्थ के घर निमंत्रण था।
2: अरे लिच्चू भैया, क्या कहता है तू?
0: हाँ?
2: कायस्थ के घर में लक्ष्मण सिंह का निमंत्रण?
0: अरे हाँ शिवू, हाँ मुंशी के साथ उसे भी बुलाया था।
2: अच्छा?
0: हाँ।
2: अरे
0: और मुंशी के साथ वो साफ सुथरी पगड़ी पहनकर निमंत्रण खाने पहुंचा।
2: अच्छा।
0: किसी मोची से वो चमड़े के जूते भी उधार मांग लाया था।
2: अरे
0: हाँ,
2: चमड़े वाला जूता भी।
0: आप सुन तो, वहाँ एक मजेदार वाकया हुआ। मुंशी के पास लकड़ी की मेज कुर्सी पर कायस्थ परिवार ने उसे बिठाया। अचानक मुंशी और लक्ष्मण सिंह चौंक उठे।
2: है? वो भला क्यों?
0: अरे मुंशी को पीतल की थाली कटोरी में खाना परोसा गया था।
2: है?
0: और लक्ष्मण सिंह को चांदी की थाली कटोरी में। शिवू, चांदी की थाली कटोरी में।
2: अच्छा, पर ये कायस्थ परिवार ने क्या गजब किया?
0: अरे सुन तो सही, चांदी की थाली कटोरी देखकर बेचारा लक्ष्मण सिंह एकदम डर गया। कायस्थ परिवार और मुंशी ने कहा, ए भाई खाओ खाओ, तो उसने डरते डरते खाया।
2: अच्छा?
0: और वापसी में मुंशी ने कहा कि आज तूने पहली बार चांदी की थाली कटोरी में खाना खाया है, क्यों?
2: अच्छा, तो फिर लक्ष्मण सिंह ने क्या कहा?
0: अरे लक्ष्मण सिंह ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि प्रभु महाराज, ये तो आपकी कृपा है। तब मुंशी ने हंसते हुए कहा कि ये तेरा सम्मान नहीं है, बल्कि अपमान है ये।
2: है?
0: हाँ।
2: भला इसमें लक्ष्मण सिंह का क्या अपमान हुआ?
0: अरे वही तो बता रहा हूँ शिवू, यही बात लक्ष्मण सिंह ने भी पूछी। इस पर मुंशी ने कहा कि दलित के स्पर्श से चांदी पवित्र मानी जाने लगती है, तेरे छू लेने से कायस्थ परिवार के चांदी के बर्तन एकदम शुद्ध हो गए हैं।
2: अरे लिच्चू भैया, आजकल के कायस्थ लोगों ने हम दुसाद लोगों को कौरव महाराज दुर्योधन के भाई दुशासन का वंशज मानना छोड़ दिया है।
0: अरे शिवु, आजकल राहु की पूजा करने की सामर्थ हमारे पास कहाँ है? पहले के दिनों में हमारे कन्नौजी, मागधी और सिलहटिया लोगों की राहु पूजा में ब्राह्मण भी आते थे।
2: अरे लिच्छू भैया, मेरा तो मानना ये है कि
0: क्या मानना है शिवु, तेरी खांसी तो बढ़ती जा रही है। शिवु शिवु शिवु, तेरी तबीयत ठीक है? तू लेट जा, थक गया, थक गया, लेट जा, आराम आराम आराम। शिवु शिवु शिवु शिवु शिवु, लेट जा, आराम कर, आराम कर।
2: हम तो मरने के बाद ही आराम करूंगा भाई।
0: अरे ऐसा क्यों कहता है शिवु?

0: संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार की 6वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक आयोजित की जा रही है। इस दौरान देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ाने के साथ ही टिकाऊ रोजगार के अवसर पैदा करने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर कहा है कि इस दौरान विकास, सुशासन, गरीबों, महिलाओं, युवाओं, किसानों के सशक्तिकरण के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई शक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी का नेतृत्व विकसित भारत के निर्माण का मजबूत आधार है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु एनसीटी पाठ्यक्रमों बीएड, एमपीड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड के लिए महाविद्यालय आवंटित कर दिए गए हैं। प्रथम चरण में 32,918 अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटित किए गए हैं। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून है। राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा को और अधिक सशक्त बनाने के लिए हेल्पलाइन की शुरुआत की है। राज्य की महिलाएं अब अपनी शिकायतें, समस्याएं और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-233-6112 द्वारा संकेत दे सकेंगी। मौसम विभाग ने प्रदेश में चक्रवात के 2 अलग-अलग सिस्टम बनने से आज ग्वालियर, जबलपुर समेत 34 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 1 सप्ताह में मानसून के सक्रिय होने का अनुमान है। और विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता में 48 टीमों द्वारा 104 मुकाबले खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए बहनों का कार्यक्रम महिला सभा। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की है।

महिला सभा सुनने वाली हमारी सभी सखियों का स्वागत अभिनंदन उनके अपने महिला सभा कार्यक्रम में। आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी सखी रुबीना। आप सभी को हमारा नमस्कार। सखियों, प्रकृति विविध रंगों से भरी हुई है। इनमें सबसे खास रंग होता है हरा, जो हरियाली का संदेश देता है, जिसे देख हम भी नई ऊर्जा, नई उमंग से भर जाते हैं। तपती गर्मी में आँखों की ठंडक है ये हरा रंग, जो न सिर्फ हमें सुकून देता है बल्कि जीवन में आशा का संचार करता है। सखियों, हरा रंग हमें प्रकृति से जोड़ता है। जी हाँ, हमारी वही हरी भरी प्रकृति जिसमें हवा, धूप, पानी जैसे संसाधन मौजूद हैं जो कभी खत्म नहीं होते, और इन्हीं संसाधनों का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जिसे हरित ऊर्जा कहा जाता है। सखियों, इन दिनों आप रेडियो पर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में तो सुन ही रहे होंगे, जिसके तहत सरकार हमें भारी सब्सिडी भी दे रही है। बस यही तो है हरित ऊर्जा, जिसमें सूर्य की किरणों को सोलर पैनल के माध्यम से बिजली में बदला जाता है। यह सौर ऊर्जा कहलाती है। हरित ऊर्जा उत्पन्न करने के और भी कई तरीके हैं, जैसे तेज हवाओं के प्राकृतिक वेग से पवन चक्कियों को घुमाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। इसे हम पवन ऊर्जा कहते हैं। नदियों, बांधों में बहते हुए पानी के दबाव से टरबाइन चलाकर बिजली बनाई जाती है। इसे विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। इतना ही नहीं सखियों, कृषि अपशिष्ट गोबर, जिसे हम जैविक कचरा कहते हैं, इससे बायोमास ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। हम सभी जानते हैं पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक गर्मी मौजूद है। इस गर्मी और भाप का उपयोग बिजली उत्पादन में किया जाता है, जिसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ये सब हरित ऊर्जा के ही प्रकार हैं। सखियों, पारंपरिक ऊर्जा जिसमें कोयले और पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है, उससे अनेक जहरीली गैसें उत्पन्न होती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को तो नुकसान पहुंचाती ही हैं, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को भी बढ़ाती हैं, जबकि हरित ऊर्जा इन सभी समस्याओं के खतरे को कम करती हैं। इसके प्रयोग से हम प्रदूषण मुक्त स्वच्छ पर्यावरण तो पाते ही हैं, हमारे प्राकृतिक संसाधनों का भी संरक्षण होता है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश हमारा भारत देश ही है, जो हरित ऊर्जा से बिजली उत्पन्न कर रहा है। और यह इसीलिए संभव हो सका है क्योंकि हमारा भारत देश प्राकृतिक संपदाओं से भरा है। ये तो बात हुई हरित ऊर्जा की, लेकिन प्रकृति के नज़दीक रहना, उसे निहारना भला कौन नहीं चाहता। आइए इस गीत के माध्यम से हम भी आपको प्रकृति के करीब लिए चलते हैं और सुनवाते हैं मुकेश का गाया यह गीत। फिल्म का नाम है बूंद जो बन गए मोती।

0: सखियों, हमारे आज के बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं, और ये बच्चे जितना स्वस्थ होंगे हमारे देश की नींव उतनी ही मजबूत होगी। इसलिए ज़रूरी है उनके पोषण, उनके टीकाकरण पर उचित ध्यान दिया जाए। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए सुनते हैं यह भेंटवार्ता, जिसका विषय है बच्चों में टीकाकरण कब और क्यों। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल, और इनसे बातचीत की है कामना श्रीवास्तव ने।
1: श्रोता बहनों, माँ बनना सृष्टि की सबसे बड़ी नियामत है, लेकिन 9 माह के लंबे समय के बाद एक माँ की जिम्मेदारी यहीं खत्म नहीं हो जाती, बल्कि असली कवायद तो उसके जन्म के बाद ही शुरू होती है। उसकी सही परवरिश, उचित पालन पोषण, आहार और साथ ही साथ टीकाकरण, ये सभी बातें बच्चे के भविष्य को सुखी और सुरक्षित बनाती हैं। तो टीकाकरण क्या है और क्यों जरूरी है, और कौन कौन से टीके बच्चों को कब लगवाने चाहिए, इन सारी बातों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल जी को। सर, हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है।
2: जी, धन्यवाद आपको।
1: सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि टीकाकरण क्या है और ये क्यों ज़रूरी है।
2: जी हाँ, देखिए, दुनिया में बहुत सारी बीमारियां हैं, खासकर बच्चों को कई जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं, और आप ये देखें कि कोई बीमारी होने के बाद हम इलाज शुरू करें वो ना सिर्फ बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी इलाज सफल भी नहीं होता, और सफल होता भी है तो कई बार बहुत खर्चीला होता है। तो सर्वश्रेष्ठ उपाय ये है कि हम उन बीमारियों को होने ही ना दें, और उनको ना होने देने के लिए इस वक्त जो विज्ञान ने एक बहुत अच्छी जो खोज की है वो है टीकाकरण।
1: जी, तो बच्चों प्रिकॉशन बेटर देन क्योर।
2: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
1: अब आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो टीकाकरण की जिसकी हम बात कर रहे हैं, कितना जरूरी है।
2: बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है हमारा, जो राष्ट्रीय टीकाकरण प्रोग्राम, उसमें 6 जानलेवा बीमारियों से बच्चों को प्रोटेक्ट जाता है, उनसे रक्षा की जाती है, जैसे कि पोलियो, DPT, हेपेटाइटिस बी भी अभी अभी इंक्लूड किया जा रहा है उसमें, खसरा, मीजल्स जिसको बोलते हैं, ये इस तरह के टीके, जैसे खसरा है वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, पोलियो जिंदगी भर के लिए अपंगता कर सकता है बच्चे में, DPT से होने वाली 3 बीमारियां जैसे कि गलघोटू, टिटनस एवं कुकर खांसी भी बच्चे को ना सिर्फ जानलेवा है, बहुत बीमार भी बना सकती है या कमजोर भी कर सकती है।
1: अब ये जानना चाहेंगे आपसे कि सरकारी अस्पतालों में जो टीके उपलब्ध होते हैं, क्या वही लगवाने चाहिए या इसके अलावा कौन से टीके होते हैं।
2: जी हाँ, सरकारी अस्पताल में जैसे मैंने अभी आपको जानकारी दी कि पोलियो, DPT, खसरा और एक जो छूट रहा था वो है BCG। BCG जो TB से बचाव का टीका होता है। इसके अलावा भी जिस तरह से कई बीमारियां हैं उसी तरह से कई तरह के टीके बाजार में आजकल उपलब्ध हैं। 2 तरह के शेड्यूल चलते हैं भारत में, एक है EPI शेड्यूल जिसमें कि सरकारी टीके इंक्लूड हैं, जो कि सरकार, सभी राज्यों की सरकारें इसको दे रही हैं। साथ ही साथ दूसरा शेड्यूल होता है हमारी जो एकेडमी है, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, ये जो कि शिशु रोग विशेषज्ञों की संस्था है, इसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे दूसरे टीके भी हमारे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल होने चाहिए। बट इन नए टीकों की कीमत क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इसलिए शायद वो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में नहीं शामिल हो पाते। उनमें से बहुत सारे टीके आजकल जो इस्तेमाल में हो रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा रोटा वायरस डायरिया का टीका, ये टीका एक पिलाया जाने वाला टीका है, इससे रोटा वायरस नाम के 10 से बचाव होता है। इसी तरह का एक टीका बहुत ही ज़रूरी है और जो कि बहुत महंगा भी नहीं है, वो है हिब। हिब से 3 गंभीर बीमारियों से रक्षा होती है, एक तो निमोनिया, मस्तिष्क ज्वर एवं एक गले का गंभीर इन्फेक्शन होता है उसको एपिग्लोटाइटिस बोलते हैं, तो ये 3 बीमारियों से हिब नाम के वैक्सीन से रक्षा होती है। इसी तरह का एक वैक्सीन जो मैं बोलूंगा कि भारत की हर लड़की को लगा होना चाहिए, खासकर शादी के पहले तो हर लड़की को लग जाना चाहिए, वो है MMR का टीका, जो कि बहुत महंगा भी नहीं है। MMR का टीका 3 बीमारियों से रक्षा करता है, जैसे कि खसरा, मम्स जिसको हम गलसुआ बोलते हैं, और एक रूबेला नाम की बीमारी होती है। ये जो 3 बीमारियां हैं, मम्स, रूबेला और मीजल्स, ये तीनों ही बीमारियां यदि गर्भस्थ शिशु, गर्भावस्था के दौरान यदि माँ को हो इनमें से, तीनों में से कोई भी एक, तो गर्भस्थ शिशु को अत्यधिक गंभीर कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। इस वजह से ये टीका 15 माह की उम्र पर बच्चों को लगता है, तो बच्चियों को खासकर, तो यदि वो 15 माह की उम्र पर आज हम जो लगवा रहे हैं वो ना सिर्फ इस बच्चे की रक्षा करेगा इन बीमारियों से, बल्कि अगली पीढ़ी की भी।
1: जी बिल्कुल। तो यानी लड़कों को ये टीका लगना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि लड़कियों को लगे। जी, ये बताइए कि इतने, जब सारी तरफ बीमारियां फैली हुई हैं और टीके इतने महंगे हो रहे हैं, कई टीके, तो ये क्यों नहीं सरकारी बातों में शामिल किए जाते हैं कि ये सस्ते हो जाएं?
2: जी हाँ, देखिए जब भी कोई नई बीमारी का टीका आता है ना तो वो काफ़ी महंगा होगा क्योंकि उसमें बहुत सारी रिसर्च इन्वॉल्व होती है, उसको खरीदने वाले लोग कम होते हैं। इसे मोबाइल फोन्स जैसे आपने सुना होगा कि पहले मोबाइल फोन बहुत महंगे होते थे, आज उनकी स्लैश डाउन होते जा रही कीमत। तो जो भी टेक्नोलॉजी है यदि कोई रिसर्च करके इमीडिएटली कोई लेकर आ रहा है तब ज़्यादा महंगे होते हैं, फिर वो धीरे धीरे सस्ते होते जाते हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि हेपेटाइटिस बी का टीका जब शुरुआत में आया था तो लगभग 2000 रुपये का हुआ करता था, आज से लगभग 12-15 साल पहले
1: जी।
2: और आज जो है उस टीके की कीमत 50 रुपये है। तो टीकों की कीमत लॉन्च के समय ज़्यादा होती है, बट हम अपने बच्चों को तब तक के लिए इंतजार नहीं करा सकते,
1: बिल्कुल
2: देना होगा। और सरकार अपनी ओर से कोशिशें करती हैं कि जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा टीकों को शामिल किया जाए, जैसे कि अभी हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने हेपेटाइटिस बी को हमारे टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल कर लिया
1: है। जी ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि अगर कोई टीका बच्चे को समय पर नहीं लग पाया यानी देर हो गई उसे लगवाने में, तो कितने समय के अंदर फिर उसे लग जाना चाहिए?
2: जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए कायदे से तो पहला टीका बर्थ के समय लग जाता है जिसको पोलियो जीरो डोज बोलते हैं हम लोग और बीसीजी, लेकिन और फिर 6 हफ्ते पर लगता है, 10 हफ्ते, इस तरह से शेड्यूल है। लेकिन सपोज कभी कोई माँ बाप नहीं लगवा पाए समय पर टीका, तो भी उस टीके को समय रहते दिया जा सकता है। उसके लिए जस्ट आपको ये करना है कि अपने शिशु रोग विशेषज्ञ की एक बार सलाह लेनी है, तो वो जो भी टीके छूटे हैं उसका एक प्रॉपर शेड्यूल बना देगा। हाँ, ये पूरी तरह संभव है कि जो टीके छूट गए हैं उनको भी दोबारा लगाए जा सके।
1: जी डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा गया है कि जब महिलाएं माँ बनती हैं और पहली बार डॉक्टर के पास जाती हैं बच्चे को लेके, तो उन्हें एक कार्ड दिया जाता है बच्चे को टीके लगवाने के लिए
2: जी।
1: तो ये कौन कौन से टीके इनमें से ऐसे हैं जो कि बेहद ज़रूरी होते हैं? जैसे सबसे पहले आपने बताया बीसीजी का टीका लगना
2: जी,
1: और कितने वर्ष तक, 7 साल 8 साल 9 साल, कितने समय तक बच्चे को रेगुलरली डॉक्टर के पास टीका लगवाने के लिए ले जाना चाहिए?
2: जी हाँ, देखिए सबसे ज़रूरी टीके तो जो हमारे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल हैं बीसीजी जो, और पोलियो जन्म के समय, इसके बाद डीपीटी 6 हफ्तों पर, 10 हफ्ते की उम्र पर डीपीटी और पोलियो का डोज फिर से, फिर 14 हफ्ते की उम्र पर फिर से डीपीटी और पोलियो का डोज, और 9 महीने पर खसरा, 1.5 साल पर डीपीटी पोलियो अगेन, और 5 साल पर डीपीटी एवं पोलियो फिर से। ये टीके सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, यदि कभी छूट जाते हैं तो भी संभव है कि इनको दोबारा लगाया जा सके।
1: जी आपसे फिर जानना चाहेंगे कि कितने वर्ष तक, कितने उम्र तक बच्चों को टीके लगवाए जाएं ताकि इसका असर बना रहे?
2: हाँ जी जी, जन्म से लेके 5 साल की उम्र तक रेगुलर टीकाकरण होता है
1: जी।
2: वो जो आपने कहा था जो चार्ट के हिसाब से, तो वो चार्ट के हिसाब से 5 साल तक, लेकिन 5 साल के ऊपर के भी बच्चों को कई टीके लगाए जा सकते हैं, जैसे कि टाइफाइड का होता है, टिटनस का टीका होता है, और आजकल एक आधुनिक टीका अभी अभी जो आया है वो है गर्भाशय के कैंसर से बचाव का टीका, जो कि ज़्यादातर किशोर लड़कियों को लगाया जाता है, वो 10 साल से ऊपर की लड़कियों को और 10 से 45 साल की बीच की युवती को ये लग सकता है टीका।
1: जी जागरूकता की अगर हम बात करें तो आप चूंकि डॉक्टर हैं तो कितने प्रतिशत लोग आपके पास ऐसे आते हैं जो कि कहते हैं कि हम समय पे टीका नहीं लगवा पाए, यानी कि सरकार जो इतना जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही है तो आज लोग कितने पीछे हैं?
2: जी हाँ, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है क्योंकि हमारा जो देश है
1: जी,
2: ये विश्व के मानचित्र में हम यदि हम देखें तो टीकाकरण कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है ये कि हम सारी कोशिशें सरकार की, संस्थाओं की, इसके बावजूद भी हम अपनी बहुत सारी जनता को इसके लिए मोटिवेट नहीं कर पाएँ, प्रेरणा नहीं दे पाएँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, इनफैक्ट हर एक बच्चे को टीकाकरण कराएँ। आपको उदाहरण के लिए मैं बता दूँ कि पोलियोमाइलाइटिस सिर्फ पूरी दुनिया में 3 देश बचे हैं, पाकिस्तान, नाइजीरिया एवं भारत, जहाँ से इरेडिकेट नहीं, अभी तक उसका स्टेटस मिला, जड़ से खत्म नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ ये हमारे समाज को भी देखने की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि एक शर्मनाक बात है कि पूरे विश्व में जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो उसको हम सफलता से नहीं चला पा रहे।
1: जी तो आपके कहने का अर्थ है कि सभी पेरेंट्स को, सभी माता पिता को ये बेहद ज़रूरी है कि जब भी बच्चा छोटा हो उन्हें टीकाकरण ज़रूर।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: जी, आप क्या कहना चाहेंगे अभिभावकों को, माता पिता को?
2: देखिए टीकाकरण से संबंधित कुछ भ्रांतियाँ रखते हैं माता पिता की, इससे कभी कभी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं
1: जी।
2: एक और भ्रांति हमारे गाँव में है, आसपास के, जैसे मैं आंगनवाड़ी वर्कर्स की क्लास लेता हूँ तो मुझे पता चली कि कुछ लोग सोचते हैं कि टीका लगाने से बच्चा दुबला हो जाता है
1: जी।
2: ठीक है, ये सभी तरह की व्यर्थ की भ्रांतियाँ हैं। हाँ, थोड़े से कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स मैं आपको टीकों के बताता हूँ जो कि पूरी तरह से कोई उनमें नुकसान नहीं होता बच्चे को, जैसे कि डीपीटी से बुखार आना, डीपीटी से बुखार आ सकता है और थोड़ा चिड़चिड़ापन हो सकता है, और यह भी मात्र 24 घंटे से 48 घंटे के लिए होता है। मार्केट में इस एक टीका उपलब्ध है जो कि पेनलेस बोला जाता है, जिससे बाद में दर्द एवं बुखार कम होता है, बट मैं कहूंगा कि नहीं, वो थोड़ा दर्द और बुखार होगा भी तो भी उससे कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, क्योंकि वो अत्यधिक महंगा टीका है और जो माता पिता खरीद सकें उनको लगाना चाहिए, लेकिन बाकी माता पिता यदि दर्द वाला टीका लगवा रहे हैं तो वो भी कोई गलत तरीका नहीं, गलत ऑप्शन नहीं है।
1: जी, अगर हमें भविष्य सुखद बनाना है, स्वस्थ बनाना है, तो ये 24 और 48 घंटे का बुखार ज्यादा मायने रखता
2: है बच्चे की भलाई के लिए। जी
1: जी, तो डॉक्टर साहब और ऐसी कोई बात टीकाकरण के संबंध में जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाह रहे हो और छूट रही हो?
2: एक तो जब बच्चा हो तो एक ना एक बार जरूर शिशु रोग विशेषज्ञ से आप जरूर मिलें, ठीक है? वो उससे ना सिर्फ आपको टीकाकरण से संबंधित बल्कि खान पान, दूध कैसे देना है, माँ की देखरेख से संबंधित जो वैज्ञानिक सलाहें मिल जाएंगी। उसी दौरान पर आपको वो टीकाकरण का कार्ड भी मिल जाएगा और उसमें सब कुछ डेट सहित शिशु रोग विशेषज्ञ आपके लिख लेंगे। यदि आप ऐसे जगह रहते हैं जहाँ शिशु रोग विशेषज्ञ की उपलब्धता नहीं है तो अपने नज़दीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सरकारी अस्पताल में जाएं, वहाँ भी आपको एक कार्ड मिलेगा और इससे संबंधित जानकारी दी जाएगी, और अपने बच्चों को जरूर अस्पताल में देखरेख में रहें, डॉक्टर की या फिर जो भी उपलब्ध चिकित्सक या एक ट्रेन पर्सन वहाँ पास में।
1: जी, तो डॉक्टर साहब आप हमारे प्रोग्राम में आए और टीकाकरण से संबंधित इतनी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें हमें बताई, निश्चित रूप से सभी श्रोता इससे लाभान्वित होंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बच्चों में टीकाकरण कब और क्यों, इस विषय पर आपने सुनी डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल से कामना श्रीवास्तव की बातचीत। सखियों, जीवन में स्वस्थ रहना और निरंतर विकास करना बहुत जरूरी है, और यदि पर्यावरण के साथ संतुलन बनाते हुए हम अपना विकास करेंगे तब तो पर्यावरण से अच्छा और सच्चा मित्र हमारा कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन यदि हमने पर्यावरण में थोड़ा भी असंतुलन की स्थिति निर्मित की या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया तो धरती के अंदर और बाहर की हलचल प्राकृतिक आपदा का कौन सा भयावह रूप ले ले कहा नहीं जा सकता। भूकंप, बाढ़, तूफान, भूस्खलन, सूखा, सुनामी, ये प्राकृतिक आपदाओं का ही रूप है, लेकिन इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि प्राकृतिक आपदाएं मानव निर्मित नहीं होती। भूल, लापरवाही, व्यवस्थाओं में कमी का नतीजा ही है सड़क या रेल दुर्घटना, कारखानों में आग लग जाना। कहने का मतलब यह है कि ऐसी अनअपेक्षित घटनाएं जिससे सामान्य जनजीवन गंभीर रूप से प्रभावित हो जाए उसे आपदा कहते हैं। सखियों, आपदाओं को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता, लेकिन सही प्रबंधन से उनके जोखिम और नुकसान को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा समय समय पर रेडियो, टीवी और घोषणाओं के माध्यम से दी जाने वाली चेतावनी का पालन किया जाए। ये तो हुई आपदा प्रबंधन से पहले की तैयारी। आपदा प्रबंधन के दूसरे चरण की बात करें तो ये है आपदा के तुरंत बाद प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना, चिकित्सा, भोजन, पानी उपलब्ध कराना। इस बचाव कार्य का बहुत अहम हिस्सा सखियों आप और हम भी बन सकते हैं। और आपदा प्रबंधन का अंतिम चरण है बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, रेल मार्ग, घरों का पुनर्निर्माण और प्रभावित लोगों का पुनर्वास, यानी जीवन को दोबारा सामान्य और स्थिर बनाना, ताकि आपदा प्रभावित लोगों का घर और जीवन दोबारा बस सके। और इन सब में सबसे जरूरी है धैर्य बनाए रखते हुए हमेशा एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार रहना, प्रबंध कार्यों में सरकार को सहयोग देना ताकि आप औरों के लिए मिसाल बन सकें।

सुदेश भोंसले, मोहम्मद अजीज़ और उदित नारायण की आवाज़ में यह गीत हमने सुना। फिल्म का नाम था हम। उम्मीद करते हैं सखियों, इस गीत की ही तरह आप और हम हमेशा एक साथ होंगे, आपका और हमारा स्नेह यूं ही बरकरार रहे और हम निरंतर आगे बढ़ते रहें, अपनी प्रगति के मार्ग प्रशस्त करते रहें। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ महिला सभा कार्यक्रम से रुबीना को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

चूचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चूचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।

सदियों बाद पैदा होता है एक महापुरुष और हमें दिखा जाता है रोशनी की अनगिनत राहें। आइए हम सब चलें उस मार्ग पर जो दिखाया महात्मा गांधी ने।

वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं साधना जैन के गाए हुए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की है। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे देवी गीत, गैल्हाई और लेद।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे साधना जैन के गाए हुए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ, प्रस्तुत कर रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। हमारी आज की कलाकार हैं रागिनी तैलंग। इनके स्वर में आज आप सुनेंगे कुछ गीत और भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे रागिनी तैलंग के गाए हुए कुछ गीत और भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर बाद।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी, मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
1: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चुनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे सुरीली तान।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत दबंग फिल्म से हमने लिया है। आवाजें श्रेया घोषाल और सोनू निगम की हैं, गीतकार जलीस शेरवानी और संगीतकार साजिद वाजिद।

ओम शांति ओम फिल्म का ये गीत है। आवाजें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की हैं। गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार विशाल शेखर।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक हुई। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल शामिल हुए। इस वर्ष की बैठक का विषय 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास है। बैठक में उद्यमिता, कौशल विकास, रोजगार सृजन और डिजिटल सार्वजनिक ढांचे पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए आदर्श नेतृत्व का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि का कर्तव्य सेवा और समर्पण के जरिए समाज के सभी वर्गों में न्याय, समरसता और लोक कल्याण को बढ़ावा देना है। ये संदेश उनकी संस्कृत सुभाषितम श्रृंखला का हिस्सा है। इससे पहले 10 जून को उन्होंने जनसेवा को सुशासन की सबसे बड़ी कसौटी बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर दुनिया भर के नेताओं से मिली बधाइयों के लिए आभार व्यक्त किया है। 10 जून को 12 वर्ष पूरे कर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। श्री मोदी 2014, 2019 और 2024 में लगातार 3 बार प्रधानमंत्री चुने गए। उन्होंने अमेरिका, सिंगापुर, जर्मनी, इसराइल, इटली, गुयाना और भूटान के नेताओं का धन्यवाद करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर से राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। ये पहल सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि कश्मीर से लेकर देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापक कवरेज देने की योजना है। कार्यक्रम में प्रसार भारती अध्यक्ष प्रसून जोशी, आकाशवाणी महानिदेशक राजीव कुमार जैन और जयपुर सांसद मंजू शर्मा भी उपस्थित थीं। इंदौर में जारी 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आज 3रा दिन है। भारत समेत 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और

0: विशेषज्ञ सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। सम्मेलन में संयुक्त घोषणा पत्र पर पहला सत्र पूरा हो चुका है और दूसरे चरण की चर्चा जारी है। कृषि, खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार और किसानों की आय बढ़ाने जैसे अहम विषयों पर मंथन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कल होगी। कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आज ही सुनवाई की मांग की, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि उन्हें याचिका की प्रति नहीं मिली है। केंद्रीय कृषि मंत्री और विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 14 जून का दिन क्षेत्र के किसानों के लिए ऐतिहासिक होगा। इस दिन सुबह 10 बजे विदिशा के बेरखेड़ी जट्टू में कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा, जिसे भारत का मॉडल कृषि विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही विदिशा, रायसेन, सीहोर और देवास जिलों के लिए तैयार वैज्ञानिक कृषि रोडमैप को भी लागू किया जाएगा। कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान के तहत नकली खाद की पहचान, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रदर्शन और नई कृषि पद्धतियों की जानकारी भी दी जाएगी। भोपाल में एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच कर रही सीबीआई को दिल्ली एम्स की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सौंप दी गई है। सीबीआई अब इस रिपोर्ट का गहन अध्ययन कर रही है। इसे जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। ट्विशा के पति समर्थ सिंह और उनकी सास किरेबाला सिंह फिलहाल भोपाल की केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में है। और अब बात मौसम की। प्रदेश में आज मौसम के दो रंग देखने को मिलेंगे। ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल, बुंदेलखंड संभाग के कई जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और बारिश हो सकती है। वहीं मुरैना, भिंड, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी में ओलावृष्टि का अलर्ट भी है। दूसरी ओर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, मालवा, निमाड़ के जिलों में गर्मी का असर बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले के माकनगर में कल 12 से 15 जून तक अम्बेडकर भवन हाई स्कूल परिसर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। आगर मालवा कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी पात्र हितग्राहियों का ई केवाईसी निर्धारित समय सीमा 30 जून तक पूरा कराया जाए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं।

0: किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर DG साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धे अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, मतलब जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
0: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
2: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट

0: रुख अपनाना होगा।
1: ओमान की खाड़ी में पलाउ ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमरीकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्यवाही में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
2: मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधा कृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के

0: इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं, प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताज़ा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुँच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम, आपकी फरमाइश।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आपकी फरमाइश पर कुछ फिल्मी गीत लेकर हम हाजिर हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आनंद फिल्म के गीत से। इस गीत को लिखा है गुलजार ने, संगीत सलिल चौधरी का है और आवाज लता मंगेशकर की। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं जयराज प्लॉट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले, नेपानगर से सुदर्शन शाह, ताविश शाह, कुंश शाह, पल्लवी सुरभि मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। ये खत आया हुआ है बगबुड़वा पथरिया से, लिखने वाले हमारे श्रोता हैं नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम, और इसी गीत को पसंद करते हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म आनंद में।

आपकी फरमाइश का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर है। धरसीमा से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ, रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सी एल यादव। ये चिट्ठी आई है आमा खोडरा कबीरधाम से। लिखने वाले श्रोता हैं देवी सिंह नेताम, राजेंद्र, कृष्णा, चंद्रदीप, संदीपा और दक्ष प्रिया नेताम। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से इसी गीत को पसंद करते हैं रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी, प्रगति नाचानी, मिथिल नाचानी और उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी। सह्याद्री परिसर भदभदा रोड भोपाल से ये खत आया है। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं योगेश्वर सिंह भारतीय, डॉक्टर शेखावत सिंह भारतीय, भैरव प्रताप सिंह, लोकेंद्र, प्रेमाबाई और ग्राम पोस्ट बाया तहसील रेहटी जिला सीहोर से अमर सिंह भारतीय, कोशाबाई, लक्ष्मी, महेंद्र, सचिन और तरु। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं किशोर कुमार को फिल्म जहरीला इंसान में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और संगीत निर्देशक हैं आर डी बर्मन।

0: श्रोताओं, आपकी फरमाइश के कुछ गीत हम आगे भी आपको सुनवाएंगे, फिलहाल एक छोटा सा अंतराल
1: सुनिए। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं, आनंद बख्शी का लिखा हुआ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसका संगीत तैयार किया है, आवाज़ किशोर कुमार की है और फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी। सुनना चाहते हैं कमर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति और अतुल। सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। बिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया, जानवी, तृप्तेश और इनके परिवार के सभी सदस्य। भाटापारा छत्तीसगढ़ से इसी गीत को पसंद करते हैं सोहन जोशी, विष्णु जोशी, अंकिता, अमृता और लोकेश जोशी। इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। देवास मध्य प्रदेश से राजेश अग्रवाल और संदलपुर से कालीचरण यादव।

अब हम आपको सुनवाते हैं रज़िया सुल्तान फिल्म का गीत, लता मंगेशकर का गाया हुआ। बोल जानिसार अख्तर के हैं और धुन बनाई है खय्याम ने। पसंद आप सबकी है। मोटका माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस पटेल और मन पटेल। पीपरपारा पालचुआ मुंगेली से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर। ये चिट्ठी आई हुई है शाजापुर से। लिखने वाले श्रोता हैं MM राजावत, राज, मधु, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, ऋतिका, ऋचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और इनके परिवार के सभी सदस्य इसी गीत को पसंद करते हैं। तिलदा छत्तीसगढ़ से प्रदीप कुमार चंद्र, सीमा रानी चंद्र, पिया रानी चंद्र, ओशीम कुमार चंद्र और सोमेन कुमार चंद्र, और धमतरी से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार और गजेंद्र कुमार चंदन।

और कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए सुनते हैं। हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश और सौरव, सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा, और ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। आप सबकी फरमाइश पर फकीरा फिल्म में सुनते हैं लता मंगेशकर को। गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक हुई। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए आदर्श नेतृत्व का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि का कर्तव्य केवल सेवा और समर्पण के जरिए समाज के सभी वर्गों में न्याय, समरसता और लोक कल्याण को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर दुनिया भर के नेताओं से मिली बधाइयों के लिए आभार व्यक्त किया है। 10 जून को 12 वर्ष पूरे कर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री और विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 14 जून का दिन क्षेत्र के किसानों के लिए ऐतिहासिक होगा। इस दिन सुबह 10 बजे विदिशा के बेरखेड़ी जट्टू में कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा, जिसे भारत का मॉडल कृषि विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर से राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किया और इंदौर में जारी 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आज तीसरा दिन है। भारत समेत 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आकाशवाणी का ये मध्य प्रदेश केंद्र है।

ये आकाशवाणी भोपाल है। अब एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी जबलपुर द्वारा प्रस्तुत युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:33 पर, 6:30 पर, रात 8:35 पर और 9:30 पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे शाम 6:00, रात 8:00 सुनिए समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष के अंतर्गत साइंस एंड टेक पर केंद्रित कार्यक्रम। रात 10:00 सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। राग रजनी कार्यक्रम में रात 10:30 सुनिएगा उस्ताद रहमत अली खां का सरोद वादन राग रागेश्री। और आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें आज ग्रामीण बहनें सुनेंगी सुश्री ममता वाजपेयी के साथ की गई भेंट वार्ता, मॉनसून के दौरान किचन गार्डन और बगीचे की देखभाल। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल वेब्स ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी भोपाल है। 3:02 हो चुके हैं, मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब सम्पन्न होती है। 5 बजे अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दें, नमस्कार। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी।

डीटीएच पर ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं साधना जैन के गाए हुए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की है। इनके स्वर में आप सुनेंगे देवी गीत, गैलहाई और लेद।

0: आरती गीत तो तुमने बहुत अच्छा सुनवाया, और अब हम पद्मश्री जिन्हें मिला है
1: जी
0: और कठपुतली कलाकार हैं वो, उनके बारे में बात करेंगे।
1: बिल्कुल। तो वर्ष 1929 को कर्नाटक के कोप्पल जिले के मोरनाला गांव में जन्मी भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिलेक्यथारा कर्नाटक की पारंपरिक छाया कठपुतली यानी कि तोगलू गोम्बेता की दुनिया में एक दिग्गज हस्ती रही हैं। वो एक ऐसे परिवार से आती हैं जो इस प्राचीन कला का संरक्षक रहा है।
0: यानी कि हम जिसे कठपुतली के नाम से जानते हैं, कर्नाटक में वहाँ की भाषा में उसे भी कुछ अलग नाम दिया गया है। और कन्नड़ में चमड़े की गुड़ियों का खेल, इसका अर्थ होता है तोगलू गोम्बेयता, जो आपने भी बताया,
1: जी
0: जो कर्नाटक की एक पारंपरिक छाया कठपुतली कला भी है। और इस प्रदर्शन शैली में चमड़े की कठपुतलियों का उपयोग पौराणिक कथाओं से लेकर और अभी लोक कथाओं तक सुनाने के लिए किया जाता है, कि कहानी जब हम सुना रहे हैं तो उनको पात्र बनाया जाता है, उस माध्यम से उन कहानियों को अच्छे से समझाया जा सके।
1: बिल्कुल, जैसे कि कुछ कला का जैसे मंचन किया जाता है ना,
0: हाँ
1: उसी तरीके
0: जी
1: से उस कठपुतली के जरिए मंचन किया जाता है। तो एक छोटी सी बच्ची के रूप में अपने सफर की शुरुआत करते हुए उन्होंने चमड़े की कठपुतली कला में पूरा ध्यान लगाया और रामायण, महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं को सुनाने के लिए कठपुतलियों को बनाने और उन्हें चलाने की कला में महारत हासिल की।
0: जैसे राजस्थान में भी कठपुतलियां बहुत बनती हैं, तो वहां लकड़ी की कठपुतलियां बनाई जाती हैं,
1: जी
0: और जब हम आज जिनकी बात कर रहे हैं, इन्होंने चमड़े की कठपुतलियों के साथ में वो प्रयोग किए।
1: बिल्कुल, और दशकों तक उन्होंने अपनी कला को कस्बों और गांव तक पहुंचाया, जहां उन्होंने कहानी, संगीत और जटिल शिल्प कौशल को मिलाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। लगभग 8 दशकों से भीमव्वा का नाम तोगलू गोम्बेता के पर्याय के रूप में जाना जाता है।
0: और उनके जो प्रदर्शन होते हैं वो पौराणिक कथाओं, संगीत और भावपूर्ण कठपुतली आंदोलनों के मिश्रण के लिए जाने जाते हैं आरती। और बहुत दर्शकों जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के साथ साथ जो वहाँ के लोक परंपराएं हैं उसके साथ में एक जुड़ाव भी महसूस करवाते हैं।
1: बिल्कुल, और सीमित संसाधनों और घटती लोकप्रियता के बावजूद भीमव्वा ने गांव और कस्बों में व्यापक यात्राएं की और पारंपरिक कलाओं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत ग्रामीण कलाकारों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी।
0: पारंपरिक कठपुतली कला के जो विलुप्त हो रही थी और खतरे में जा रही थी, क्योंकि ऐसी कला है ना जिन्हें बहुत लोग नहीं जानते, तो जब उन्होंने इस खतरे को भांपा तो युवा पीढ़ियों को प्रशिक्षित करने का बीड़ा भी उन्होंने उठाया कि भाई जो चीज़ उन्होंने खुद सीखी है वो आने वाली पीढ़ी है वो भी सीख सकें, ताकि जो तोगलू गोम्बे याता की जो कला है इसके अस्तित्व के लिए जो भी ज़रूरी ज्ञान है, कौशल है, वो उन तक भी उसे पहुंचा सकें।
1: बिल्कुल, और उनकी कार्यशालाओं और मार्गदर्शन ने कठपुतली कलाकारों की एक नई पीढ़ी तैयार की है, जिससे ये कला आज भी जीवंत और प्रासंगिक बनी हुई है। उनके मार्गदर्शन में उनका परिवार प्रमुख महाकाव्यों और लोक कथाओं का मंचन करता चला आ रहा है।
0: और ये जो मंचन वो करते आ रहे हैं इससे कर्नाटक की जो सांस्कृतिक विरासत है वो देखिए ना आज भी संरक्षित है। और उनके प्रदर्शन केवल मनोरंजन ही नहीं देते हैं लोगों को, बल्कि उनका जो प्रतीकात्मक महत्व है या जो भी वहाँ के उत्सव हैं, त्यौहार हैं, जो भी परंपरा हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: भीमव्वा की जो जीवन यात्रा है वो केवल एक कठपुतली कलाकार की कहानी हमें नहीं बताती, बल्कि एक सांस्कृतिक संरक्षण किस तरह से किया जाता है ये पूरी कहानी बयान करती है।
1: बिल्कुल, उनका जीवन भर का मिशन कर्नाटक के पर्दे पर कला की जीवंतता को बनाए रखना रहा, ताकि तोगलू गोम्बेता की प्राचीन आवाजें आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करें और उनको शिक्षित करती रहें। और पारंपरिक चमड़े की कठपुतली कला तोगलू गोम्बेता के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिलेक्यथारा को भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री प्रदान किया गया।
0: वो आगे इसी तरह नई पीढ़ियों को ये काम सिखाती रहें और इसके क्या क्या फायदे हैं समझाती रहें, लोगों को इससे जोड़ती रहें, यही शुभकामनाएं हम देते हैं।
1: जी
0: और एक
1: बिल्कुल,
0: गीत सुन लें अभी।
1: जी बिल्कुल।

0: देखिए ना, इस गीत में भी कठपुतली का जिक्र था, और ऐसे जो खेल होते हैं ना, ये बच्चों को बड़े लुभाते हैं। और हम सब ने भी बचपन में जरूर कठपुतली का खेल देखा होगा, और
1: बिल्कुल
0: खास तौर पे स्कूल में जब कठपुतली वाला आता था तो एक बच्चों में बड़ा कौतूहल सा होता था कि
1: हाँ
0: किस तरह के खेल दिखाए जाएंगे। और उसमें कुछ कठपुतलियां होती थी ना जिनकी कमर बड़ी लचकती है, और उनका जो डांस है वो
1: हाँ
0: देखने में बड़ा मजा आता
1: बिल्कुल। अजीब
0: था।
1: अजीब सी आवाजें भी निकालते हैं ना।
0: हाँ
1: तो हमारे एक जो श्रोता है वो लिखती हैं कि कठपुतली का खेल डांस जो डांस होता है प्राय विलुप्त सा हो रहा है। गांव और शहर में मोहल्लों में ये अक्सर दिखाई दे जाते हैं। सोसाइटीज़ और बड़े बड़े बंगला बंगला जो एरिया है उसमें बहुत कम दिखाई देते हैं। हम लोग के स्कूल में कठपुतली का खेल दिखाया जाता था, जैसा आपने बोला वो बोल रही
0: बिल्कुल।
1: हैं।
0: और अगर आपको लगता है कि कहीं भी बच्चों के स्कूल में या आसपास के क्षेत्र में अगर कठपुतली का खेल दिखाया जा रहा है, तो बच्चों को ज़रूर वहाँ लेकर जाएं, ताकि कल बच्चे भूल ना जाएं कि कठपुतली नाम की कोई चीज़ होती है, कठपुतली का खेल कैसा होता है।
1: बिल्कुल
0: और इसीलिए जागरूकता के लिए भी इस तरह के दिन भी मनाए जाते हैं। और जब ऐसे किसी कलाकार को पुरस्कार मिलता है, तो उन्हें भी इस चीज़ के लिए बहुत बढ़ावा मिलता है।
1: बिल्कुल
0: तो बात हम कर रहे थे खेलों के बारे में, आज जो खेल दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो 11 जून को मनाया जाता है, इसके बारे में हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि ये दिवस विशेष रूप से बच्चों के अधिकार, उनकी शारीरिक क्षमता के विकास और खेल के जरिए उनके मानसिक और सामाजिक विकास पर केंद्रित है। इसे यूनिसेफ द्वारा बच्चों के खेलने के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। ये बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी है हमें।
1: बहुत। और खेलना सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता बल्कि ये हर बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी भी है। इसलिए खेल की रक्षा करने के लिए खेल को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा बचपन जो है बच्चों का वो बचा रहता है।
0: बिल्कुल। और खेल की रक्षा करने का मतलब होता है बचपन की सुरक्षा करना, ताकि हर जगह हर बच्चा खेलने का जो अधिकार है उसे पूरा कर सके। और परिवार में जिस सदस्य की खेल की तरफ रुचि ज़्यादा होती है, मतलब सबकी तो नहीं होती ना, तो जिसकी रुचि ज़्यादा है वो खेल के लिए प्रेरणा या खेल का समर्थक बन सकता है उन बच्चों के लिए।
1: बिल्कुल
0: क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े अंतर्मुखी होते हैं ना, तो वो लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं ना खेलना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को प्रेरित
1: बिल्कुल। वो
0: करना
1: जिस
0: बहुत
1: तरीके के
0: ज़रूरी
1: खेल
0: है।
1: में उनको रुचि हो उस तरफ आप उनको बढ़ावा दीजिए।
0: जी
1: और हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद की बधाई दे रहे हैं और कहते हैं कि वर्तमान में बच्चे मोबाइल के आदि हो गए हैं और खेल

0: कूद से रक्त का संचार होता है, शरीर और मन प्रफुल्लित रहता है, स्वस्थ रहता है। पुराने खेल कूद, छिपा छिपाई, गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी, आम के पेड़ पर रस्सी बांधकर झूलना, सब लुप्त हो गए। आज केवल बच्चों को क्रिकेट ही अक्सर खेलते देखा है और मोबाइल चलाना। खैर, हमारी बिटिया रानी ऐसी नहीं है।
1: लेकिन अगर बच्चों को स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है तो उसे थोड़ा कम करके बाहर खेलने के लिए प्रेरित करना बहुत ज़रूरी है,
0: बिल्कुल
1: ताकि उनकी जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है और सामाजिक क्षमता है, टीम में खेलने का जो एक स्पिरिट है, ये सब चीज़ें बच्चों में आ सकें। और ये जो हम खेल दिवस मना रहे हैं आरती, इसका उद्देश्य भी यही है कि खेल की क्या शक्ति है इसे हम सब जानें, पहचानें और समझें। ये हर व्यक्ति को समझना है कि हर बच्चे के विकास के लिए और कल्याण के लिए खेलना कितना ज़रूरी है। और खेल दिवस जैसे आयोजन ये बातें समझने का हमें मौका देते हैं, और यही वो समय होता है आरती जब हम सब मिलकर ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर बच्चा खेलने के अधिकार का पूरा लाभ उठा सकता है।
0: बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी भी है खेल के को महत्व देना। अगर हमें को स्वस्थ रहना है तो हम जो बच्चे आजकल दिख रहे हैं ना, कि छोटे छोटे बच्चे भी जिम जा रहे हैं, तो उनको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो खेलेंगे तो जो प्राकृतिक रूप से उनका विकास होगा।
1: और खेलने के लिए आपके पास बहुत सारी सामग्री हो ये भी ज़रूरी नहीं है, जैसे बचपन में जो हमने खेल खेले हैं या हमारे बहुत सारे सुनने वालों ने भी
0: बिल्कुल,
1: खेले होंगे,
0: दौड़ भाग है,
1: भाग
0: साइकिल
1: दौड़ती है।
0: चलाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम खेल के अपने को स्वस्थ रख सकते हैं।
1: लुका छिपी भी
0: लुका
1: खेलते
0: छिपी
1: थे
0: खेलते
1: और बस
0: थे।
1: पत्थरों से कुछ टुकड़े जमा किए, सतोलिया बना के खेला, और कपड़े की, पुराने कपड़े की एक गेंद बना ली, उससे मारकर खेल रहे हैं उन
0: बिल्कुल, बहुत
1: पत्थरों
0: से
1: के
0: ऐसे
1: टुकड़ों
0: खेल
1: को।
0: हैं और जिनको खेल के मतलब मन तो खुश रहता ही है ना, हम स्वस्थ भी रहते हैं। और जबकि मोबाइल हम लेके एक जगह बैठे हैं तो बस हम उसी जगह बैठे हुए पूरा दिन निकल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलता, हमें कोई दीन दुनिया की खबर नहीं रहती है। तो इससे क्या होता है ना, हम एक ही जगह बैठे रहते हैं तो रक्त संचार भी हमारा सही से हो नहीं पाता पूरे शरीर के अंदर। तो उसकी वजह से ना बच्चों का विकास बहुत ज़्यादा अवरुद्ध भी होता है, और पूरे समय वो स्क्रीन पर लगे रहते हैं, उससे आंखों में हर तरह से उनको नुकसान नहीं होता है। तो बहुत ज़रूरी है बाहर निकलना, बाहर निकल कर खेलना।
1: तो इस दिन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में स्थापित किया, ताकि इस अधिकार को बढ़ावा दिया जा सके और इसकी रक्षा की जा सके। संयुक्त राष्ट्र की ओर से यूनिसेफ और यूनेस्को खेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और इस दिन का आयोजन करते हैं, ताकि ये जो खेल की जो प्रक्रिया है बच्चों में चलती रहे। और हम एक गीत सुन लें, फिर बात
0: बिल्कुल
1: को आगे
0: सुनते हैं।
1: बढ़ाएंगे।

0: बच्चों के साथ मिलकर जो परिवार के सदस्य हैं वो भी जब खेल का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो बच्चों को खेलने में
1: और
0: बड़ी
1: मजा आता
0: रुचि रहती है। तो
1: है।
0: देखिए हमारे एक श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती, कि ये जो दिन है ये बताता है कि हमारे जीवन में खेल कितना ज़रूरी है। और हमारी ये श्रोता जो है वो कहना चाहती हैं कि अगर कोई बच्चा खेल की तरफ रुचि रहता है लेता है तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि खेल में कोई करियर है या नहीं है, बस खेलने के लिए उसको प्रेरित करना है। और आगे लिख रही हैं कि खेल हर चीज़ में हमें जीने का तरीका सिखाता है, इसीलिए सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं। और खेल हार जीत में कैसे उभरना है इसका तरीका भी हमें सिखाता है, और इस बात का भी हमें हमेशा ध्यान रखना होगा।
1: बिल्कुल। और हमारी श्रोताएं जो लिखती हैं कि मेरे विचार से खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खेलों से शारीरिक मानसिक विकास होता है और हम सोशल मीडिया और मोबाइल से कुछ समय के लिए दूर रह पाते हैं। और मेरा मानना है कि बच्चों के साथ खेलने के लिए यदि हमें अपने व्यस्त समय में से थोड़ा वक्त निकालना पड़े तो ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ खेलते खेलते हम भी अपना बचपन फिर से जी लेते हैं। बहुत सही कहा इन्होंने
0: बिल्कुल
1: कि
0: सही
1: हम
0: बात
1: भी
0: है।
1: अपने
0: और
1: बचपन
0: इस
1: में पहुंच
0: साल
1: जाते हैं।
0: जब ये खेल दिवस हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, तो इसका विषय है खेल की रक्षा करें, बचपन की रक्षा करें। और ये विषय हम सभी को और मतलब जो भी स्कूल हैं, परिवार हैं, व्यवसाय हैं, उनको ये याद दिलाता है कि खुशहाल और स्वस्थ बचपन खेल पर ही आधारित होते हैं। और खेल
1: बिल्कुल
0: खेल में बच्चों को बहुत सारी चीज़ें दिखाई समझाई भी जा सकती हैं ना।
1: बिल्कुल, खेलते खेलते आप उनको पढ़ा भी सकते हैं,
0: जी
1: बहुत सी ऐसी तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं, ताकि आप उनको खेलने, अगर थोड़े समय भी वो मोबाइल से दूर रहेंगे ना तो ये बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे वो सीखेंगे।
0: बिल्कुल, रचनात्मकता, लचीलापन, सामाजिक कौशल, ये सारी चीज़ें बच्चों में विकसित करते हैं खेल। और जीवन भर सीखने की जो खुशहाल जीवन की नींव है इसे भी वो रखते हैं।
1: बिल्कुल
0: और बहुत सारी जगहों पर बच्चों के लिए स्वतंत्र और अनौपचारिक खेल के जो अवसर हैं वो कम हो रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक स्थान है वो कम है, अगर कहीं है तो वो सुरक्षित नहीं है।
1: सुरक्षित
0: हर
1: नहीं।
0: बार बच्चे के साथ कोई जाए ये ज़रूरी नहीं हो पाता, तो माँ बाप भी ये चाहते हैं कि बच्चा घर पर ही खेले। तो ये सुरक्षा भी अगर बच्चों के लिए दी जाए, एक सिक्योरिटी गार्ड हर बगीचे में वहां होना चाहिए जो
1: बिल्कुल
0: बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखे। माता पिता में से कोई एक सदस्य तो जाता ही है, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित हो, इन चीजों
1: बिल्कुल
0: का ध्यान रखना बहुत जरूरी
1: बिल्कुल।
0: है।
1: और बच्चे सीखते हैं कि किस तरह हमें साथ साथ मिलके काम करना है, साथ मिलके खेलना है, टीम वर्क क्या होता है, ये सब चीज़ें खेल के जरिए ही आती हैं। जब वो साथ मिलके खेलते हैं और बच्चों के साथ में खेलते हैं, उनके से उनसे सीखते हैं, शेयर करना सीखते हैं, है ना, ध्यान रखना सीखते हैं, बहुत
0: अभी
1: कुछ सीख
0: जैसे
1: सकते हैं
0: बारिश
1: सीख
0: का जब
1: सकते हैं।
0: मौसम आएगा, पेड़ों पर झूले पड़ेंगे, तो सब बच्चे एक साथ मिलकर झूलते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे हैं अपने आप लंबी पेंग नहीं ले पाते हैं झूले की, तो जो बड़े बच्चे हैं उनको थोड़ा सिखाते हैं झूला
1: हाँ
0: कैसे जाता है, उनके साथ बैठकर, उनके साथ खड़े होकर, तो झूलना भी एक खेल हो गया। तो इस तरह से आप साथ लेकर कैसे चलेंगे ये भावना
1: बिल्कुल
0: विकसित होती है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर यही कहना चाहता हूँ कि मनुष्य के जीवन में खेल का बहुत बड़ा महत्व है। खेल से मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। जब हम खेलते हैं तो सोशल मीडिया से हमारी दूरी बनी रहती है और स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है।
0: और जब बात खेलने की आती है तो हमें किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का इंतजार ही क्यों करना है। बस
1: बिल्कुल
0: हम जो भी हमारे मस्ती भरे पल हैं उन अवसरों की तलाश करें, और हल्की फुल्की जो गतिविधियां होती हैं हमारी, हम उन्हें भी खेल में बदल सकते
1: बिल्कुल। और
0: हैं।
1: हमें रोज ही कम से कम इतना समय निकालना चाहिए और बच्चों के लिए भी इतना समय निकालना चाहिए कि उनके साथ हम खेल सकें, ना कि हम मोबाइल पे या उनके साथ में कुछ इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, बैठे हुए मोबाइल पे देख रहे हैं या हम टीवी में लगे हुए हैं या मूवी देख रहे हैं, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन एक इतना समय ज़रूर होना चाहिए हर दिन कि बच्चों के साथ बाहर खेला जाए। जो बाहर आप खेलते हैं ना, उससे वो पूरी तरह से एक्टिव होते हैं, उनका पूरा शरीर एक्टिव होता है, तो वो उससे उनके उनका विकास होता है, उनका दिमागी विकास बहुत अच्छा होता है, शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है,
0: बिल्कुल,
1: तो
0: जब
1: बहुत
0: बच्चों को
1: ज़रूरी है।
0: धूप में जाने से रोकना है, बारिश में भीगने से रोकना है, ऐसा कोई मौसम की अगर समस्या

0: समस्या है जब बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं, उस वक्त आप उन्हें चाहे कार्टून देखने में व्यस्त करिए या घर में कोई इंडोर गेम खिलवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चों के विकास की हम बात कर रहे हैं वो बाहर खेलने से ही होता है
1: बिल्कुल, और थोड़ा बहुत भीग जाना भी जरूरी होता
0: जी।
1: है कभी कभी।
0: भाई बारिश में नाव चलाना एक बड़ा अच्छा खेल होता
1: हाँ
0: है।
1: बिल्कुल।
0: तो जल्दी गाना सुने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा,
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और देखिए हम बात कर रहे थे बच्चों के खेल की। बच्चे खेलकर कितने खुश हो जाते हैं, और बच्चे कोई दिखावा भी नहीं करते।
1: नहीं, बिल्कुल
0: अगर
1: नहीं,
0: वो खुश हैं
1: तो
0: तो
1: बिल्कुल
0: खुशी दिखाई
1: खुश
0: देगी, अगर
1: दिखेंगे।
0: वो किसी से नाराज हैं, गुस्सा हैं, तो वो गुस्सा भी अपना साफ दिखा देते हैं। लेकिन ये चीजें हम बड़ों में बहुत ज्यादा होती हैं आरती, कि खुश हैं या नहीं, कई बार सिर्फ दूसरे को हमारी तकलीफ का अंदाजा ना हो इसलिए हम खुश रहने का दिखावा भी करते हैं।
1: बिल्कुल, अक्सर ही होता है ऐसा कि दिखावा ज्यादा होता है, खुशी उतनी नहीं होती है।
0: खास तौर पर जब सोशल मीडिया की बात आती है तब ये दिखावा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आज का दौर ऐसा है जहाँ बहुत से लोग वास्तव में खुश रहने से ज़्यादा खुश दिखाने पर ध्यान देने लगे हैं। सोशल मीडिया पर जो मुस्कुराती तस्वीरें होती हैं, शानदार यात्राएं, महंगे सामान, चमकदार जीवन शैली को देखकर कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि भाई ये जो सामने वाला है ना, ये सबसे ज़्यादा खुश व्यक्ति यही है, और हमारे जीवन में कोई खुशी पता नहीं है भी कि नहीं। लेकिन अक्सर इन तस्वीरों के पीछे की जो
1: उसको
0: सच्चाई
1: देख के,
0: है
1: उसको खुश देख के
0: उसके
1: ना,
0: बारे में
1: हम
0: हम
1: लोग भी
0: समझ ही
1: थोड़ा
0: नहीं
1: सा
0: पाते।
1: अवसाद में आ जाते हैं कि वो इतना खुश है हमसे। कहते हैं ना कि हमारी हमारे मतलब तुम्हारे उसके कपड़े हमारे कपड़े सफेद कैसे हो सकते हैं, तो वही चीज है, वो हमसे ज्यादा खुश कैसे हो सकता है।
0: हाँ, तो उन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। और जब जीवन का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना बन जाता है तब व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं से थोड़ा दूर होने लग जाता है।
1: बिल्कुल, और हर कोई ये सोचने लगता है कि लोग उसके बारे में सोचेंगे क्या, बजाय इसके कि उसे वास्तव में क्या अच्छा लगता है, कि उसे सचमुच उसे पसंद क्या है, वो क्या करता है, वो ये करने लगता है कि वो दूसरे क्या पसंद करेंगे, मुझे उस तरीके से अपने आप को तैयार करना है।
0: हाँ,
1: तो परिणाम क्या होता है उसका, तुलना और तनाव, तुलना से क्या होता है, तनाव और असंतोष, क्योंकि

0: उसको कभी भी सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है कि मैं सही
1: बिल्कुल,
0: लग रहा हूँ या मैं सही हूँ, वो सिर्फ दूसरों की नजर से खुद को देखने लगता है।
1: इसीलिए अगर सच्ची खुशी आप चाहते हैं अपने जीवन में, तो क्या करना है, जो लाइक्स और फॉलोअर्स हैं ये दिखावे से नहीं आती। आजकल इसी के पीछे बस सब भाग रहे हैं कि अगर हमने कोई पोस्ट डाली है, कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है जिसमें हम नजर आ रहे होते हैं,
0: हाँ
1: तो वहां हमें बहुत सारे एक लाइक मिले।
0: बस आप क्या करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहते हैं कितने कितने
1: हाँ,
0: लाइक्स हो गए,
1: वो
0: कितने
1: लाइक कितने
0: कमेंट्स
1: बढ़
0: हो
1: गए।
0: गए वो
1: हाँ
0: उसी देख में लगे रहते हैं।
1: और बस इसी से हम है ना, तो ये अच्छे रिश्ते और आत्मसंतोष, स्वस्थ जीवन शैली और अपने काम में आनंद खोजने से मिलती है, इन चीज़ों से नहीं मिलती। ये चीज़ हमें समझनी है आरती। और व्यक्ति खुद से संतुष्ट होता है, अपनी खुशी का प्रमाण दुनिया को दिखाने की हमें ज़रूरत ही नहीं। क्यों हम सबूत दिखाएं कि हम खुश हैं, इस बात की हमें दिखावा करना ही क्यों है, बल्कि हमें ये समझना है कि कोई जीवन में प्रदर्शन नहीं चाहिए, बस जो वो अंदर हमारी खुशी है वो सबसे ज़रूरी है।
0: बिल्कुल, और सच्ची खुशी किसी भी दिखावे की तो मोहताज होती नहीं है कि हमें दिखाना पड़े कि हम खुश हैं कि नहीं खुश हैं, कि कब हम हंस रहे हैं कब हम रो रहे हैं। एक एक चीज़ को उस पर डालने की जरूरत भी नहीं है। तो वो चीज़ें होती हैं जो खुशी होती है ना, वो होती है छोटे छोटे पलों में। हम बहुत बड़े बड़े पलों का इंतजार करते रहते हैं ना, कि चलो ये त्यौहार आएगा तो हम बहुत खुशी से ये पहनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो अभी क्यों नहीं खुश हो जाते? तो
1: बिल्कुल,
0: हर जो जो जो खुशी छोटे छोटे पलों में मिलती है ना, वो खो जाती है उसे इंतजार में कि बहुत बड़ा पल हमारे पास में आए।
1: और जो लोग खुशियों के लिए बहाने ढूंढते हैं ना, इस तरह से उनकी खुशियां जिंदगी में पूरी कभी नहीं होती। ये मिलेगा तब खुश होंगे, उससे
0: बिल्कुल
1: मिलेंगे तब खुश, यहां जाएंगे तब खुश होंगे, इसके इसके ये आएगा तब खुश होंगे, ये तो सिर्फ एक बहाने हैं, लेकिन
0: बिल्कुल
1: वो खुशी छोटे छोटे पलों में, जैसा आप
0: बिल्कुल। और
1: बता
0: ये
1: रही हैं।
0: जीवन है, कोई ऐसा मंच नहीं है कि
1: जी
0: हमें दूसरों को प्रभावित करना है, बस कि वो हमसे प्रभावित हो जाए, वो हो जाए। भाई हमें अपने लिए जीना है ना, हमें दूसरे के लिए इतनी दूसरे की नज़र से नहीं जीना, हमें अपनी नज़र से जीना है कि हम कब संतुष्ट हैं, हमें कब अच्छा लग रहा है, वो देखना है।
1: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिखते हैं कि खुश होना दिल की बात है और खुशी दिखाना चेहरे की आदत है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक में हम अपने लिए जीते हैं और दूसरे में दुनिया के लिए जीते हैं। जब हम असल खुशी में होते हैं तब मन को एक सुकून और संतुष्टि होती है, लेकिन जब खुश होने का हम दिखावा करते हैं तो चेहरा तो मुस्कुराता है पर कंधे थके हुए होते हैं। दिन भर लोगों को दिखाते हैं कि सब ठीक है, पर रात को हम तखिया भी खोते हैं। कभी कभी गिरकर संभलने में थोड़ा दिखावा ही सहारा बनता है, पर दिखावा ही अगर जिंदगी बन जाए तो अंदर का जो बच्चा है वो मर जाता है, जो सच में हंसता था, लेकिन दिखावा वहीं तक सही है जहां तक खुद से झूठ ना बोलना पड़े। ये
0: बिल्कुल
1: इतना प्यारा संदेश है और हम श्रोता ने जिसने भी लिखकर भेजा है उसे बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खुश रहना या दिखावा करना, सच बताऊं तो जब हम खुश होते हैं तो हमारे हाव भाव हमें बता देते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं, और अगर हम परेशान होते हैं तो हम कितना भी खुश रहने की कोशिश करें वो दिख ही जाता है। ऐसा ही कुछ हम सबके साथ में होता है, क्योंकि समाज में रहने के लिए हम सभी को कभी ना कभी दिखावा करना ही पड़ता है, क्या करें। लेकिन अक्सर लोगों की आदत होती है कि कुछ ज़्यादा ही दिखावा करते हैं खुश रहने का, लेकिन मुझसे ये सब नहीं होता। खुश रहने का एक उपाय है, वो बताते हैं वो, कि सबकी सबकी करो, और मतलब सुनो सबकी, करो अपने मन की,
1: क्या
0: क्योंकि
1: बात है,
0: मन से किए गए काम खुश करते हैं।
1: तो चलिए अभी हमें खुश करेगा और हमारे सभी सुनने वालों को खुश करेगा
0: एक
1: ये
0: प्यारा सा
1: प्यारा सा
0: गीत।
1: गाना।

0: बहुत मीठा, बहुत सुरीला गीत हमने सुना, और इसके बाद हम लौटते हैं अपने विषय पर। हम बात कर रहे थे खुश रहना और खुशी का
1: दिखावा
0: दिखावा का।
1: करना
0: जी
1: बिल्कुल। और वैसे भी चंचल, अपनी खुशियों को महसूस करना, उन्हें जीना और उनके लिए आभारी होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि हम उन्हें केवल प्रदर्शित करते रहें। क्योंकि खुश रहने और खुश दिखने में बहुत अंतर होता है। खुश दिखने के लिए मुखौटा लगा सकते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए हमें मन का संतुलन बहुत ज़रूरी होता है,
0: बिल्कुल
1: और हमारे अंदर संतोष होना चाहिए। मैं जैसे कि हाँ, हमें जो भी चीज़ है हम खुश हैं इसमें, वो चीज़ होनी चाहिए।
0: और कई बार ऐसा होता है ना कि कोई सामने वाला व्यक्ति है, वो बात बात पर आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप अपने अंदर की अच्छाई को और खुशी को आप ज्यादा उजागर करके लेकर आइए, अपने सकारात्मक भाव को लेकर आइए, तो सामने वाले के जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं वो आपको कभी प्रभावित नहीं करेंगी।
1: बिल्कुल।
0: और देखिए, अब मैं एक अच्छा सा संदेश पढ़कर आपको सुनाती हूँ। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुश रहना या खुशी का दिखावा करना, दोनों पहलू शामिल हो चुके हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में लोग अक्सर अपनी परफेक्ट तस्वीरों को और स्टेटस के जरिए अपनी खुशियों का दिखावा करने में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, जबकि असल जिंदगी उनकी कुछ और ही होती है। जो अलग अलग सोशल मीडिया के साइट्स हैं, वहां पर अपने स्टेटस, अपना घर, अपने कपड़े, आउटिंग की फोटो डालकर बस लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो कितने खुश हैं और कितने कामयाब हैं, और इस बेहतरीन दिखने की वहां पर होड़ सी मची हुई है। खुशी मांगे जो हो और मांगे सामानों से महंगे पलों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए गए समय में होती है, शांति में होती है, छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाने में छिपी होती है। बहुत
1: बिल्कुल,
0: सही बात लिखी है।
1: बहुत सही बात। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खुश रहना और खुश रहने का दिखावा करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। असल में खुशी आंतरिक शांति और संतुष्टि से आती है, जबकि जो दिखावा होता है वो सिर्फ एक मुखौटे की तरह होता है, जिसमें सामने वाले को प्रभावित करते हुए अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाना होता है और कुछ नहीं। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। कुछ लाइन्स उन्होंने भेजी है गाने की।
0: और इस गाने के माध्यम से इस बात को बहुत सटीक तरीके से समझा जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: एक आगे के संदेश में हमारे श्रोता का कहना है कि आज के समय में लोग अपनी खुशी से ज्यादा उसकी

0: नुमाइश करने में व्यस्त दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर जो प्रदर्शन है उसके बारे में इन्होंने भी लिखा है और आगे लिखते हैं कि दिखावा कुछ समय के लिए ही प्रभावित कर सकता है, लेकिन मन का संतोष, मन की शांति कभी नहीं दे सकता। रिश्तों में अपनापन, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अगर है तो चेहरे पर मुस्कान खुली रहती है और यही सच्ची खुशी है।
1: बिल्कुल, एक और शब्द है जो कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य खुश दिखना नहीं है बल्कि खुश होना चाहिए, क्योंकि दिखावा कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है लेकिन वास्तविक खुशी मन को संतोष और जीवन को अर्थ देती है। जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई के साथ जीना सीख जाता है तब उसे खुशी का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, उसका जीवन ही खुशी का प्रमाण बन जाता है। बहुत सही बात कही उन्होंने।
0: एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा संदेश है कि जीवन में दिखावे की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि खुश दिखना अब खुश रहने से ज्यादा आवश्यक हो गया है। जहां वास्तविक खुशी मन की शांति और संतुष्टि देती है, वहीं दिखावा ऊर्जा को खत्म करता है और मानसिक तनाव का कारण बनता है। ये
1: बिल्कुल,
0: भी
1: और
0: सही बात है।
1: बिल्कुल एक श्रोता लिखते हैं कि खुश रहना और खुश दिखना ये दो अलग यात्राएं हैं। खुश रहना भीतर का अनुभव है, ये सस्ता है क्योंकि इसका लेन देन बाहर की दुनिया से नहीं भीतर से होता है, लेकिन खुश दिखना दिखावे की दुनिया का खेल है। ये सब महंगा है, जेब से, दिल से, शांति से भी। असल में कठिनाई खुश रहने की नहीं, खुश दिखने की मजबूरी छोड़ने में है। सुख हमेशा भीतर से शुरू होता है, बाहरी चमक सिर्फ एक नकली रोशनी है। बहुत बहुत गहरी बात कही है इन्होंने।
0: और भी संदेश हैं।
1: तो एक और जो मैच होता है जो कहते हैं कि भाई दुनिया तो दिखावटी तो है ही अपितु तो उसके पोषक भी है, फिर खुश रहना चाहते तो सभी हैं क्योंकि वो आनंद के सच्चित स्वरूपांश हैं, किंतु खुद में खुश रहना एक कला है और खुशी का दिखावा करते रहने वालों में अक्सर इसका अभाव ही देखा जाता है, क्योंकि वस्तुतः वो खुशी प्राप्त करने की कला को अपने दिखावेपन के माध्यम से सीख रहे होते हैं।
0: ऐसी बहुत सी मिलती जुलती बातें हमारे सभी श्रोताओं ने लिखी हैं। कुछ संदेश जिन्हें हम शामिल नहीं कर पाए हैं उनसे क्षमा चाहते हैं और सुनते हैं ये वाला गीत।

0: आरती, हम बात कर रहे थे ना खुशी रहने के, खुश रहने के बारे में और उसका दिखावा करने के बारे में। एक बड़ा अच्छा संदेश हमें मिला है, खुश रहना दिल की बात है और खुश दिखाना दुनिया को। जो सच में खुश होता है उसे मुस्कुराने की वजह ढूंढनी नहीं पड़ती, उसकी मुस्कान अपने आप ही चेहरे पर आ जाती है। दिखावे की खुशी कुछ पल चमकती है, लेकिन सच्ची खुशी मन को लंबे समय तक रोशन रखती है। इसीलिए खुश दिखने से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। एक और छोटी सी बात ये आगे लिखते हैं, जिंदगी में सबसे सुंदर बात ये नहीं कि लोग हमें खुश समझें, बल्कि ये है कि हमारा मन सचमुच खुश हो।
1: बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने। और इसी के साथ एक और हमारे श्रोता है, वो लिखते हैं कि जीवन में जब भी मौका मिले खुशी रहना चाहिए। खुश रहने का दिखावा करने से हम आंतरिक रूप से खुश नहीं रह सकते। दूसरों को खुशी दिखाकर हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। और मुझे विश्वास है कि विविध भारती मुंबई की श्रोता, जिसे मैं स्वयं भी हूँ, अगर कभी किसी कारण से दुखी भी हूँ, तो आप सभी की शानदार जो सदाबहार प्रस्तुति होती है और लाजवाब गीत होते हैं, उनको सुनकर हम सभी श्रोताओं के चेहरों पर सच्ची खुशी झलकती है। तो दिखावा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
0: बिल्कुल सही बात है। और अगर आपको विविध भारती सुनकर खुशी मिलती है तो इसके गाने भी आपको पसंद आते होंगे। और
1: जी
0: जब बात सुनने की आ रही है तो भाई कानों का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है,
1: बहुत जरूरी
0: और
1: है।
0: इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। कान हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग कहा जा सकता है, और ना केवल ये सुनने में मदद करता है आरती, बल्कि शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसे निभाता है। इसीलिए कानों की देखभाल बहुत ज़रूरी है।
1: बहुत ज़रूरी है। और कानों में इसलिए क्या करना है, हमें कभी भी कोई नुकीली चीज़ या माचिस की तीली, जैसे अक्सर हम ना
0: हाँ,
1: कुछ नहीं तो अरे कान में कुछ नहीं हो रही तो बस माचिस की तीली लेके करने लगे, तो वो बहुत खतरनाक
0: और
1: चीज़ होती
0: महिलाएं
1: है।
0: हेयर पिन घुमाती हैं
1: हाँ, हेयर
0: जिस
1: पिन, चाबी ले लेता, कोई कोई तो चाबी से करने लगता है, कोई कॉटन बड्स जो होते हैं वो भी, लेकिन क्योंकि वो बहुत पुराने भी कभी कभी बने हुए होते हैं, तो हो सकता है उसमें फंगस हो या कुछ हो, तो कभी इस तरीके की चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो अधिक उपयोग है वो कानों को नुकसान पहुँचा सकता है। और लंबे समय तक हमें तेज़ संगीत भी नहीं सुनना चाहिए, और जो शोरगुल का वातावरण रहता है ना, बहुत समय तक ऐसे उसमें भी नहीं रहना चाहिए कि बहुत तेज़ आवाज़ आ रही हो जहाँ पे, उसमें भी रहने से, क्योंकि वो एक अलग फ्रिक्वेंसी पे रहता है ना,
0: जी
1: जो हमारे कानों की होती है वो एक लिमिटेड होती है, उससे ज़्यादा हम अगर में शोर में रहेंगे तो वो हमारे कानों को नुकसान पहुंचाएगा।
0: देखो, जिस तरह से आंखों में जब गंदगी आती है, कोई कचरा जाता है, तो आंखों में जो नमी है वो अपने आप आंख उसे निकालकर कुछ देर बाद बाहर फेंकती है, और हम बस हल्के से इशारे से उस गए हुए तिनके को बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरह कान में जो एक वैक्स बनता है, जो मोम जैसा होता है, वो अपने आप धीरे धीरे स्वतः ही साफ होते रहता है। कई बार उसे जबरदस्ती निकलवाने की कोशिश में हम कान की सफाई करवाने कहीं कहीं चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे औजार बना लेते हैं। तो अगर आपको कभी लगे कुछ खुजली आ रही है, तो जो सॉफ्ट वाले ईयरबड होते हैं आप उनका इस्तेमाल करें। जो चाबी, नुकीली चीजें,
1: बल्कि हम
0: हेयर
1: कहेंगे
0: पिन,
1: कि आप
0: इनका तो
1: को
0: कभी
1: बिल्कुल
0: ना
1: आप
0: करें।
1: इसको बहुत हल्के हल्के हाथों से ही करिए, बल्कि अपने आप जितना आपका ये कहते हैं ना, जितनी आपकी उंगली जो आपके हो सके जा सके उस हिसाब से आप करिए, वो सब चीज़ें आप प्रयोग मत करिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि पुराने जो होते हैं वो बर्ड्स, उसमें वो फंगस भी होती है, तो वो अंदर जाके नुकसान पहुँचाता है, इसलिए ये सब चीज़ें आप ना प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने कानों का बहुत ध्यान रखिए, और जो ईयरफोन वगैरह रहता है ना उसका बहुत कम से कम इस्तेमाल करिए,
0: जी
1: और क्योंकि ना आजकल लोगों को बहुत समस्या हो रही है, कि बहुत सारे लोग ये समस्या बताते हैं कि कानों में तेज़ आवाज़ सुनाई दे रही है, मतलब हर समय 24 घंटे
0: जी
1: एक आवाज़ सी आती रहती है, तो बहुत परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत अब आजकल लोग ये ईयरफोन का बहुत इस्तेमाल करने लगे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा घंटों आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको कानों को नुकसान तो पहुँचाएगा ही।
0: क्योंकि जब इस चीज़ का प्रचार हो रहा था कि घंटों कान पर मोबाइल लगा के रखने से, बात करने से, मोबाइल के जो गर्म होता है वो हीट हमें नुकसान करती है, तो भाई घंटों अगर आपको कान पर फोन नहीं लगाना है, तो बहुत देर तक अगर आप ईयरफोन लगाकर बात करेंगे या गाने सुनेंगे बहुत तेज आवाज में, तो इससे कानों को नुकसान तो होगा ही। एक और नुकसान, अगर आप सड़क पर चलते समय ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: तो पीछे से आने वाले वाहन की आवाज या अन्य कोई आपको आवाज भी दे रहा है, तो आपका जरूरी काम छूट सकता है, दुर्घटना कोई भी हो सकती है। तो
1: बिल्कुल
0: ईयरफोन का इस्तेमाल कम से
1: बिल्कुल।
0: कम करना
1: और
0: है।
1: सबसे बड़ी चीज़ है, आप अगर आपको सुन ही रहे हैं, आप उसको बहुत ज़रूरी है आपको कान में लगाना, तो आप 50 उसको कम से कम 50 पे रखिए, 50 से ऊपर मत करिए, बहुत ज़्यादा फुल साउंड में मत सुनिए उस चीज़ को, कि आपको बाकी आवाज़ें ना आए। और दूसरी चीज़, अपने एक कान में ही लगाइए, अगर आप बाहर जा रहे हैं उसको लगाएं, एक कान में लगाइए, आप ये करिए ना, एक कान में लगा लिए, थोड़ी देर बाद आपने दूसरे कान में लगाए, इससे क्या होता है ना, कान आपका ऐसे पर्दे पर उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, वो ख़राब नहीं होगा। और साथ ही अगर आपकी बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है या दर्द हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, चाहिए कृपया करके अपने आप कोई दवाई मत करिए। कई लोग होते ना कि कुछ हम ये चलो ये डाल लें, ये वाला तेल डाल लें या इस तरह से डाल लें, तो वो चीज़ आप अपना स्वयं का इलाज मत करिए। आप विशेषज्ञ से के पास जाइए, उनसे दवा लीजिए, उन्हें बताइए जो भी चीज़ें, तो वो उसका पूरा एग्जामिन करें, उस चीज़ से उसकी जाँच करेंगे, उसके बाद आपको दवाई देंगे। और मतलब कानों की जो नियमित जाँच होती है वो भी ज़रूर करवाइए।
0: हमारे श्रोता ने लिखा है कि नहाने के बाद कान सुखाएं, साफ तौलिए से कोने का प्रयोग करते हुए इसे सफाई करें और स्विमिंग प्लग का उपयोग करें। इसके बारे में मेरी जानकारी कम है आरती। आगे लिखते हैं कि तैरते समय पानी को अंदर जाने से रोकें, गलत घरेलू नुस्खे कभी ना आजमाएं, डॉक्टरी सलाह के बिना कान में तेल या कोई अन्य चीज़ ना डालें, पानी को झुकाकर अगर चला गया है तो उसे बाहर निकाल दें और कान में पानी जाने पर एक तरफ झुकाकर ही इसको निकाला जा सकता है। ये बहुत अच्छी जानकारी है। और अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: से तो प्यार।
1: आरती कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं इजाजत। चंचल वर्मा,
2: आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
3: सखी सहेली।

0: फरमाइश के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश के इस सफर में बहुत सारे श्रोताओं से हमारी बातचीत होती है और इस बातचीत से हम एक दूसरे को जान पाते हैं विचारों से और भावनाओं से। और हेलो फरमाइश एक ऐसा मंच है जहां पर हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपना संदेश, अपनी भावनाएं प्रेषित करते हैं। तो आज भी ऐसा ही कुछ हुआ है, तो प्रस्तुत है आपके लिए आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मैं अभिजीत प्रयागराज से बात कर रहा हूँ। मैम, कैसी हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं, आपका कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं विविध भारती के कार्यक्रम। और हम लोग दिन भर जितने कार्यक्रम आपके यहाँ से प्रसारित किए सारे कार्यक्रम से जुड़े रहते, बहुत अच्छा लगता है आपका कार्यक्रम, चाहे वो हेलो फरमाइश हो, हेलो सहेली हो, सखी सहेली का कार्यक्रम हो, गीत माला हो, गीतों भरी कहानी हो, छाया गीत हो, आज के फनकार, ये सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बिल्कुल। तो अभिजीत जी, हमें एक बात बताइए, हम थोड़ा सा आज बात करना चाहते हैं खेलों के बारे में। अपने बचपन की ओर लौटिए और बताइए बचपन में कौन सा खेल खेलते थे आप अपने दोस्तों के साथ?
1: सबसे ज्यादा हम लोग गेंदे जो मैच होते हैं वो ज्यादा खेलना पसंद करते थे। गेंदा जैसे बैट बल्ला है, वो हम लोग जब कभी भी स्कूल से आते थे वो अक्सर हम लोग खेल खेला करते थे, बहुत अच्छा लगता था वो खेल खेलने में, खेल बहुत अच्छा होता था उस टाइम का।
0: कभी बिल्कुल घर में बताते हो अपने बच्चों को या अपने घर में जो परिवार के अन्य सदस्य उनके बच्चे हैं, कभी बात होती है इस खेल के बारे में?
1: बिल्कुल होती है मैम। आज के समय में क्या हो गया है, लोग सबसे ज्यादा मोबाइल का जो इस्तेमाल करते हैं, ये तकनीक, इसी वजह से लोग कोई अभी तक कोई खेल ये जानते ही नहीं है आज के लोग। लेकिन हमारा तो यही कहना है सभी लोगों से कि मोबाइल से ज्यादा अगर कोई ऐसा खेल खेला जाए तो ज्यादा ही कुछ अच्छा होता है।
0: बिल्कुल। तो चलिए, आपसे अच्छी बातचीत हो गई है, अब बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: चमत्कार फिल्म का नाम है और गाने का बोल है, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: अस्सलाम वालेकुम,
0: वालेकुम सलाम
1: मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। मैडम
0: जी, नाम बताइए अपना।
1: जलाल अहमद।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है, आप कैसे हो मैडम?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: मुझे एक गाने की फरमाइश है आज।
0: बिल्कुल, हम आपको गाना सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले चंद बातें कीजिए हमारे साथ। कैसे हैं, क्या करते हैं आप कश्मीर में?
1: जी हम मैं शाल काम करते हैं।
0: किस तरह का? पश्मीना शॉल?
1: हाँ, पश्मीना हम बनाते हैं।
0: उसके बारे में बताइए थोड़ा हमको, क्या खासियत है पश्मीना शॉल की? लोग क्यों पसंद करते हैं शॉल को?
1: कश्मीरी शॉल तो बहुत पसंद है, बाहर स्टेटों में भी वो जाते हैं, वहाँ भी पसंद करते हैं लोग, यहाँ भी। यहाँ तो बहुत इसके कारीगर है, हाथों से बनाते हैं हम, वो बहुत मेहनत उस पे लगते हैं, तो बहुत बढ़िया बनते हैं मैडम
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर होते हैं और गर्म भी होते हैं, है ना?
1: जी। इसका मुख्तलिफ साइज है। फिल्म
0: चलिए बताइए हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं।
1: है साथी, उसका कुमार सानू गा रहे हैं। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए।
0: बहुत गहरा गीत है ये तो, है ना?
1: हाँ हाँ बहुत।
0: बहुत सुंदर गाया है कुमार सानू ने, और बहुत ही सुंदर इसके जो शब्द हैं बहुत ही सुंदर है, गहरे शब्द हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना।
1: फैसल इमाम।
0: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं फैजल साहब?
1: मैम अच्छा हूँ मैं, आप कैसी हैं? ठीक है,
0: बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं आप?
1: मैम मैं यूडीसी पोस्ट पे हूँ, डिविजन क्लर्क पे हूँ कॉलेज में।
0: तो नौकरी के साथ साथ विविध भारती को भी सुनना पसंद करते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, विविध भारती तो बचपन से, ये सौगात मेरी मम्मी से मिला, सुनते आ रहे थे और कई बार पहले भी बात हुई है विविध भारती में, फरमाइश में।
0: अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो बचपन में आप स्पोर्ट्स भी करते होंगे, खेलते होंगे बहुत सारे खेल?
1: जी जी बिल्कुल, क्रिकेट खेलना बहुत शौकीन है हमारा।
0: कैसे खेलते थे, कितने रन बनाए, बताइए अपने बारे में, क्रिकेट की दुनिया कैसी थी आपकी?
1: क्रिकेट की दुनिया बहुत अच्छी थी, हम लोग तो ज्यादातर बैटिंग करते थे, बॉलिंग दोनों थे। बचपन में तो खैर बहुत कम ही खेल पाते हैं।
0: अब तो नहीं खेलना होता है ना?
1: अब खेलना होता है, सुबह सुबह फुटबॉल खेल लेते हैं,
0: अच्छा
1: खेलने का मौका नहीं मिल पाता है।
0: अच्छा, तो किस खिलाड़ी से ज्यादा प्रभावित रहे आप क्रिकेट खेलते समय?
1: हमारे तो फेवरेट खिलाड़ी रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर रहे हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो आपने अपनी बैटिंग में कितने रन बनाए होंगे ज्यादा से ज्यादा?
1: महीने तो ज्यादा 70-80 बनाए हैं।
0: कभी सेंचुरी नहीं बना पाए?
1: बनाना था वो तो खैर, क्रिकेट हम लोग खेलते थे 10 ओवर 20 ओवर, तो ज्यादातर चलता नहीं था हम लोग टाइम में। ये है कि फुटबॉल में बहुत गोल किया मैंने।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फुटबॉल खेला।
0: बहुत अच्छी बात, बताइए क्या
1: खेलने की बहुत चाहत थी, फिर जिम्मेदारी हमारी गुजर गए, जिम्मेदारी घर की आ गई तो सब चीज से छोड़ना पड़ा।
0: ये होता ही है जिंदगी में कि हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं लेकिन घर की जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां कई बार हमको रोक देती हैं वो काम करने के लिए, और हम एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा बताइए, तो आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आपकी सफाई फिल्म का गाना है वादा कर ले साजना।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: वादा

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, MP से।
0: क्या बात है, आपका स्वागत है बहुत बहुत अरुण साहब
1: जी। और आप कैसी हो?
0: अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं?
1: बस हम बहुत अच्छे हैं, मौसम अच्छा है, खुशनुमा है, बादल हो रहे हैं, थोड़ी सी हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, हवाएं भी चल रही है।
0: अच्छी कंपेयरिंग की आपने मौसम पर।
1: जी। और आपके इधर मौसम कैसा है?
0: हमारे इधर तो अभी गर्मी है भाई, बहुत उमस है,
1: जी,
0: पसीना आता है,
1: जी
0: परेशान हो जाते हैं, बस बारिश का इंतजार है।
1: जी।
0: बताइए अरुण साहब, अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं, रेडियो का भी शौक करते हैं, क्रिकेट का भी शौक है, कबड्डी का भी शौक है, हर चीज का शौक है।
0: क्या बात है, क्या बात है। आज तो हम खेल के बारे में ही बातें कर रहे थे, हमारे श्रोताओं से जानना चाह रहे थे कि आपके जीवन में खेलों का क्या स्थान है, खेलते हैं कि नहीं। आपने तो खुद ही कह दिया कबड्डी खेलते रहे, कबड्डी का शौक है।
1: कबड्डी का हर चीज का शौक है, लेकिन खेलते नहीं है, सुनने का है, कमेंट्री आती है कमेंट्री सुनते हैं।
0: तो कभी बचपन में गांवों में खेला तो होगा आपने, ग्रामीण अंचल में तो बहुत सारे खेल होते हैं हमारे, ग्रामीण खेल।
1: नहीं, ग्रामीण में तो खेले हैं बचपन में, गिल्ली डंडा भी खेले हैं, फुटबॉल भी खेले हैं, भूत रंजा, टीप टीप, चोर सिपाही, हर चीज खेलने की तो कुछ बात ही अलग है।
0: लेकिन आपने कौन सा खेला, गिल्ली डंडा खेला या कबड्डी खेली? आप कह रहे हैं फुटबॉल भी?
1: गिल्ली डंडा खेले हैं, अंटी भी हर चीज खेली है हमने।
0: अंटी क्या होता है?
1: अंटी वगैरह खेलते हैं ना, अंटी रहती है ना, कौन में रखते हैं, छाटते हैं उसको, उंगली से मिलाते हैं, उसको मारते हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: जी,
0: तो बहुत अच्छा लगा कि आप बचपन में ये खेल खेला करते थे, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आपकी पसंद का गीत।
1: अंदाज से सुना देना, आएगा मजा बरसात का।
0: अरे वाह, क्या बात है, अभी तो बरसात आई नहीं, मजा कहाँ आएगा।
1: जी, लेकिन बरसात तो आने वाली है, कहूँ कहूँ तो बारिश भी हो रही है।
0: बिल्कुल सही कहा, कई जगह बारिश हो रही है, तो चलिए हम भी इंतजार करते हैं उस बारिश का, आपके गीत

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम तो बताइए अपना।
1: मैं ग्राम बड़ा गाँव जिला गुना मध्य प्रदेश से मांगीलाल धाकड़ बोल रहा हूँ।
0: मांगीलाल जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, और आपसे बात करके और अच्छे हो गए हैं।
1: जी, काफी दिनों के बाद कॉल लगी है, बहुत खुशी है मुझे।
0: अरे, खुशी तो होगी, क्यों नहीं होगी, लगातार आपने प्रयास किया होगा।
1: जी जी,
0: कैसा लग रहा है अब आपको, जब आपकी कॉल लग गई है तो?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं, और कार्यक्रम में मनचाहे गीत सुनता हूँ।
0: मनचाहे गीत के लिए खत लिख रहे हैं हमें?
1: जी जी, भेजे हैं।
0: ठीक है,
1: और हेलो सहेली सुनता हूँ, साथी सहेली सुनता हूँ, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: बहुत अच्छी बात है मांगीलाल जी। और क्या करते हैं आप?
1: मैं खेती बाड़ी करता हूँ मैम, किसान हूँ।
0: मौसम भी अभी आपके अनुकूल हुआ कि नहीं हुआ, खेती बाड़ी के अनुकूल?
1: अभी नहीं, 25 तारीख तक बारिश आ जाएगी।
0: यानी इंतजार है, सब कुछ अच्छा होगा ना?
1: जी जी मैम।
0: तो बताइए, हम थोड़ा सा आज अपने श्रोताओं से ये जानना चाह रहे हैं कि बचपन में वो कौन सा खेल खेलते थे, क्या उन्हें याद है कि वो खेल खेला करते थे अपने ग्रामीण इलाकों में? हमारे कुछ पारंपरिक खेल हैं जिन्हें हम सभी खेला करते थे, आपको याद है कोई ऐसा खेल जो आपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला है?
1: जी मैम, मैं मैच का शौकीन हूँ, मैच भी खेलता हूँ।
0: अरे, बैटिंग करते हैं या बॉलिंग?
1: बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं।
0: क्या बात है, हरफन मौला है फिर तो आप।
1: जी
0: तो सबसे ज्यादा कितने लिए आपने, विकेट कितने लिए हैं बॉलिंग में?
1: विकेट जो मिल जाते हैं जो ले लेते हैं, 10-12 विकेट ले लिए थे मैंने एक बार।
0: अरे, फिर तो आप मैन ऑफ द मैच हो गए।
1: जी जी मैम, बहुत शौकीन है मैं, रेडियो का बहुत शौकीन हूँ।
0: अच्छा, कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: आज मुझे खुदा गावा फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ मैम, रब को याद करूं पिछड़ा याद मिला दे वो रब्बा।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मोहम्मद रफीक, नागपुर कुतुब सा नगर नागपुर से बोल रहा हूँ मैडम।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: जी बढ़िया मैडम, आप कैसे हैं?
0: हम भी बढ़िया हैं। बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: जी मैडम, मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, घर में छोटी दुकान है, किराना वही चलाता हूँ मैडम।
0: अच्छा एक बात बताइए, दिन भर तो आप किराने की दुकान में काम करते हैं है ना, तो कभी रेडियो के लिए समय तो निकालते ही हैं, विविध भारती के लिए समय निकालते हैं आप?
1: हाँ इससे तो पुराना रिश्ता है मैडम मेरा रेडियो से।
0: तो खेल में रुचि है आपकी?
1: स्कूल में मैडम फुटबॉल खेलते थे मैडम, हम लोग कबड्डी ये चलता था मैडम।
0: अच्छा कैसे खेलते थे, अच्छा लगता था, गोल कर पाते थे?
1: ज्यादा तो मुझे गोल की बनाते थे कि हाई रुचि थी ना।
0: हम आज ना अपने श्रोताओं से ही जानना चाह रहे थे कि अगर हम उन्हें बचपन की ओर लौटाएं तो उन्हें क्या याद आता है, कि क्या वो खेला करते थे? हम जब छोटे थे कितना खेल खेला करते थे ना।
1: हाँ मैडम सही बात है,
0: तो
1: बचपन होता ही है बेफिक्री का रहता है मैडम, जवानी तक बुढ़ापा ही कठिन जाता है मैडम, बचपन और जवानी अच्छी रहती है मैडम।
0: हाँ जब आप युवावस्था में आए तब भी आपका ये खेल जारी था फुटबॉल का, या फिर काम में लग गए?
1: हाँ मैडम क्या बोलते, सरकारी जॉब लगा था, पार्टी में ही था, जब जॉब लग गया था मतलब सरकारी महाराष्ट्र साधन का, लेकिन मैंने फिर 2.5 महीने छोड़ दिया, यानी 2 महीने छुट्टी के लिए किया था मैंने, जेब खर्चे के लिए।
0: अच्छा छोड़ा क्यों
1: मैडम? क्योंकि मैं तो आगे पढ़ाई करना था मैडम, उस जमाने में 10वीं पास करना लोहे के चने जमाना जैसा था,
0: हाँ, हाँ।
1: पहले से 10वीं तक पढ़ाई किया हूँ, बिगर ट्यूशन से पास हुआ हूँ।
0: अरे वाह,
1: मैंने कसम खाया था कि मैं 10वीं पास होकर दिखाऊंगा, चैलेंज दिया था दो भाइयों ने,
0: क्या
1: फिर आगे पढ़ना नहीं था 10वीं पास करके, क्योंकि उस फ्रेंड में तो 10वीं बहुत काफी था उस जमाने के साथ।
0: बहुत अच्छी बात है कि आपने जज्बा रखा ना पढ़ाई का, और आज आप अपना घर चला रहे हैं दुकान के जरिए।
1: जी मैडम।
0: तो बताइए अब कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: झुक गया आसमान का मैडम, कौन है जो सपना में आया है, कौन है जो दिल में समाया है, लो झुक गया आसमान भी इसको मेरा
0: रंग लाया। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: कौन है जो सपना

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं बनेरा जिला अमरावती पद्माताई सिंगारे बात कर रही मंदाकिनी दीदी।
0: अरे आपको पता है कि मंदाकिनी बोल रही है इधर?
1: मैं आवाज से पहचान रही हूँ दीदी
0: अरे
1: आपको। हेलो
0: क्या बात है,
1: कैसे हो दीदी आप?
0: अच्छे हैं आप? बताइए
1: मैं भी अच्छी हूँ दीदी।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं तो घर पे रहती हूँ दीदी,
0: घर पे घर के काम करती हैं?
1: घर का काम करती हूँ, घर पे रहती हूँ और अभी भारतीय के कार्यक्रम में सुनती हूँ दीदी।
0: और क्या शौक है आपके ये बताइए।
1: मेरे को शौक तो गाना सुनने का शौक है दीदी, और रात दिमाग को सवेरे से हेलो फरमाइश में जो कार्यक्रम रहता है वो भी सुनती हूँ। मैं आपका झमकार सुन के मन चाहे चालू जो करे वो, उसके बाद मैं खूब धन्यवाद देना चाहती हूँ दीदी आपको।
0: तो मनचाहे गीतों के लिए आप हमें पोस्ट कार्ड में अपना नाम पता भेज रही हैं, पसंद का गाना?
1: भेजिए
0: अच्छा मुझे एक बात बताइए, आज हम सबसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में कभी स्पोर्ट्स आया, खेल आया? बचपन में हम खेला करते थे ना, युवावस्था में भी खेलते थे। आपने अपने बचपन में कौन सा खेल खेला था? लंगड़ी टांग, कबड्डी, खो खो, कुछ खेला था?
1: मैं तो सबसे ज्यादा ऐसे लंगड़ी खेलती थी दीदी, मैं छोटेपन में अभी खो खो खेलती थी, और मेरी जो बहन है वो ज्यादा मेरे को खेलने नहीं देती थी दीदी, बहुत
0: क्यों?
1: लाड़ती थी ना मैं।
0: अच्छा, लेकिन बचपन तो
1: मैं
0: खेलने का ही नाम होता है ना, बचपन में तो हम दुनिया भर के खेल खेलते हैं। तो अपने बहन के साथ कभी कंचे खेले फिर बैठ के? क्या करती थी बहन के साथ बैठ के? कंचे खेले होंगे, गट्टे खेले होंगे?
1: कंचे खेलती थी, मैं अपने बहन के साथ खेत में जाती थी तो मट्टी खेलती थी, वो मट्टी के बर्तन बनाती थी, मेरी बहन बना के देती थी मेरे को।
0: हाँ याद आया ना आपको अपना बचपन, कितना सुंदर होता है हमारा बचपन, है ना? चलिए अपनी पसंद का गीत बताइए हमें, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम था खानदान, और गाने के बोले दिल गर्दन के उड़ते बादल।
0: आ आ आ चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश, कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम, नमस्कार। युद्ध भारती मैं
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना,
1: नजीर डोंगरे बोल रहा हूँ,
0: कहाँ से? अच्छा,
1: सोलापुर में बार्शी से। अच्छा
0: स्वागत है आपका नजीर साहब, कैसे हैं आप?
1: हूँ मैडम, तुम
0: अरे वाह, क्या बात,
1: कैसे हो?
0: हम भी अच्छे
1: युद्ध
0: हैं।
1: भारती के बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं मैडम।
0: अच्छा, अच्छे लगते हैं आपको कार्यक्रम?
1: सुहाना सब पर अच्छा लगता है, आदमी नई विचार तो करे ना, तुम कार्यक्रम सुहाना सब पर 1 बजे से 2 बजे तक,
0: सुनते हैं आप सारे कार्यक्रम ना?
1: हाँ अच्छा लगता है। किसे हेलो फरमाइश, गीत गाते हैं, बड़े
0: और
1: अच्छे कार्यक्रम है। नहीं
0: वो आपका मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए हमें पत्र लिख रहे हैं आप?
1: मैडम नहीं लिखा, अभी लिखूंगा इनसे आगे,
0: अरे क्यों नहीं लिखा भाई, आपके लिए तो है वो प्रोग्राम।
1: लिखता अभी इनसे आगे, बहुत पत्र लिखता मैं।
0: हाँ बताइए, गाना कौन सा सुनवाए आपको?
1: दिल फिल्मी का वो प्रिया प्रिया क्यों भूला गया, ये गीत सुनना है मुझे।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश का आइसक्रीम है ये।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी, मैं मैम धेमाजी असम से विमल बसंतर बोल रहा हूँ। मैम
0: विमल जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: जी मैम, हम ठीक है। मेरा सिलाई का काम करता हूँ, मेरा दुकान है, दुकान से फोन कर रहा हूँ। मैम
0: कितने बजे तक सिलाई करते हैं?
1: जी मैम, हम तो सिलाई करते हो, घर में काम करके आके दुकान खुलता हूँ, फिर सिलाई करके जल्दी चला जाता हूँ 4 बजे 5 बजे। तो
0: क्यों जल्दी क्यों चले जाते हैं, लोग तो देर रात तक काम करते हैं।
1: जी मैम, हम लोग का ये थोड़ा बस्ती इलाका है ना मैम।
0: हाँ,
1: इसीलिए थोड़ा बस्ती का अंदर का दुकान है ना, इसीलिए इसे चलता है।
0: अच्छा, समय रहते घर पहुंच जाते हो।
1: जी मैम जी,
0: अच्छे से हो जाता है काम जितना आप चाहते हैं?
1: जी मैम, हम लोग का इधर चल जाता है, थोड़ा मोरा इसे करते रहता है, और सिलाई का अलावा दूसरा सब में रखता हूँ, दुकान और दूसरा है।
0: हाँ, और विविध भारती के लिए कब समय निकालते हो?
1: जी मैम, विविध भारती तो सुनते रहता हो, लेकिन पहली बार आज फोन लगाया मैम।
0: कैसा महसूस कर रहे हो?
1: सुनते रहता हूँ, अच्छा लगता है सुन के मैम।
0: अच्छा, क्या फील हो रहा है अभी जब फोन लग गया आपका तो?
1: जी मैम, आज पहली बार फोन मिला, इतना अच्छा लगा है, फिर आप लोग से आज बातचीत हो गया, इतना अच्छा लग रहा है मैम।
0: बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
1: जी मैम, हमको सुनना है करण अर्जुन का बंधन तो प्यार का बंधन, ये गाना सुनना है मैम।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्ते मंदाकिनी मैडम। बिल्कुल,
0: नमस्ते। अरे, आपको पता है कि आज हम बैठे हैं मंदाकिनी जोशी।
1: देश की सुरीली धड़कन प्रसारण सेवा में जब आपकी आवाजें पहुंचती है।

नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलो हर्ट्ज एवं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजने को है, आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन प्रसारण सभा, न्यूज हेडलाइंस और उसके बाद कार्यक्रम युवाणी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास के पथ पर अग्रसर है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है, जिसमें 3 भारतीय नागरिकों की जान चली गई। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि गृहिणियों का कार्य केवल घरेलू कामकाज तक सीमित नहीं है, बल्कि वे परिवारों और भावी पीढ़ियों के निर्माण में अतुलनीय योगदान देती हैं। न्यायालय ने कहा है कि घर का प्रबंधन करने वाली महिलाओं को केवल गृहिणी कहकर संबोधित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह शब्द समाज में उनके योगदान को कम आंकता है। यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारतीय रेल देश भर के स्टेशनों पर फायर सेफ्टी ऑडिट कराएगी। इसमें स्टेशन भवन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट, फायर फाइटिंग सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम समेत सभी अग्नि सुरक्षा इंतजामों की जांच होगी। और पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। ले जब सुनिए युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

0: नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अमीषा पटेल
1: और मैं आद्या नायक।
0: साथियों, हमेशा की तरह हम फिर लेकर आए हैं आप सभी के लिए नई नई जानकारियां और युवा सोच से जुड़े कुछ खास विषय। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की आज के दो प्रश्नों के साथ।
1: हमारा आज का पहला प्रश्न है, AI शब्द का पहली बार प्रयोग किस वर्ष में किया गया था?
0: और आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? साथियों, इन प्रश्नों के उत्तर हम आपको कार्यक्रम के अंत में देंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आज की चर्चाओं में। आद्या, अगर कोई हमसे पूछे कि हमारी पहचान क्या है, तो हम क्या जवाब देंगे?
1: हमारा नाम, हमारा शहर या कुछ और?
0: आद्या, मुझे लगता है कि हमारी पहचान सिर्फ हमारे नाम या पते से नहीं बनती। हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारे संस्कार और जिन मूल्यों के साथ हम बड़े होते हैं, वही हमारी संस्कृति कहलाते हैं।
1: अमीषा, जब हम हमारी संस्कृति, हमारी पहचान की बात करते हैं, तो सबसे पहले तुम्हारे मन में क्या आता है?
0: मेरे मन में सबसे पहले आती है भारत की विविधता, जहाँ अलग अलग भाषाएं, खान पान, पहनावे, त्योहार और परंपराएं हैं। और सबसे खास बात यह है कि इतनी विविधताओं के बावजूद हम सब एक भारतीय पहचान से जुड़े हुए हैं।
1: बिल्कुल अमीषा, मुझे लगता है कि संस्कृति को अक्सर केवल त्योहारों या पारंपरिक कपड़ों तक ही सीमित कर दिया जाता है, जबकि संस्कृति उससे कहीं अधिक व्यापक

0: है, यह हमारे व्यवहार, हमारे संस्कार और हमारी जीवन जीने के तरीके में दिखाई देती है।
1: सही कहा। जब हम किसी बड़े व्यक्ति के चरण स्पर्श करते हैं, मेहमानों का स्वागत करते हैं या किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तब हम केवल एक काम नहीं कर रहे होते बल्कि अपनी संस्कृति को जी रहे होते हैं।
0: हाँ, और यही छोटी छोटी बातें हमारी पहचान बनाती हैं। आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, लेकिन कुछ मूल्य ऐसे हैं जो समय के साथ और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
1: भारतीय संस्कृति की खूबसूरती ही यही है कि यह हमें आधुनिक बनने से नहीं रोकती बल्कि अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए आगे बढ़ना सिखाती है।
0: पर अमीषा, आजकल तो युवा पीढ़ी को लेकर अक्सर कहा जाता है कि वे संस्कृति से दूर हो रहे हैं।
1: आद्या, मैं ऐसा नहीं मानती। मुझे लगता है कि आज के युवा अपनी संस्कृति को नए तरीके से दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। कोई लोक संगीत को नए मंच दे रहा है, कोई क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दे रहा है, तो कोई अपनी लोक कलाओं को डिजिटल माध्यम से पहचान दिला रहा है।
0: और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि संस्कृति को बचाने का मतलब केवल उसे संग्रहित करना नहीं बल्कि उससे आगे बढ़ाना भी है।
1: आद्या, हमारी संस्कृति कोई चीज नहीं होती जिसे केवल किताबों में पढ़ा जाए। संस्कृति को अपने व्यवहार और जीवन में अपनाना भी बहुत जरूरी है।
0: हाँ अमीषा, क्योंकि अपनी संस्कृति अपनाना ही अपनी पहचान को मजबूत करना है।
1: साथियों, अब सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म उरी से, जिसमें आवाज दी है शाश्वत सचदेव और शांतनु सुदामी ने।

0: साथियों, अब सुनवाते हैं आपको भेंट वार्ता, जिसका विषय है युवाओं में होने वाले श्वसन संबंधी विकार, कारण और बचाव। विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजय भारती, जिनसे बात की है नीला बाजपेयी ने।
1: युवा साथियों, समय समय पर हम आपको अपनी भेंट वार्ताओं के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास करते रहते हैं, और ऐसी एक नई जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका विषय है युवाओं में होने वाले श्वसन या सांस संबंधी विकार, कारण, लक्षण और बचाव। और इस विषय पर आज विस्तार से बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में रेस्पिरेटरी मेडिसिन के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर संजय भारती जी को। डॉक्टर संजय भारती, आपका हम अपने इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत करते हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद एवं सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा की शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे कि सबसे पहले हम अपने सुनने वालों के लिए जानना चाहेंगे कि हमारे जो श्वसन तंत्र है उसकी बेसिकली कार्य प्रणाली क्या होती है।
2: देखिए, मैं आप सभी के लिए यदि बहुत सरल भाषा में बताना चाहूँ तो श्वसन तंत्र का कार्य हमें वातावरण से ऑक्सीजन लेना, मतलब हम शरीर में ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन तंत्र के द्वारा, और जो बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम वातावरण में छोड़ते हैं श्वसन तंत्र के द्वारा। हम इसको सरल भाषा में ऐसे ही समझ सकते हैं, अदरवाइज इसका जो मैकेनिज्म है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है।
1: ये तो बात हुई डॉक्टर साहब कार्य प्रणाली की। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि आजकल ऐसी कौन सी बहुत सारी बीमारियां हैं श्वसन तंत्र से संबंधित जो युवाओं में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं।
2: जी देखिए, सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि युवाओं में श्वास की संबंधी बीमारियों के क्या क्या कारण होते हैं।
1: जी,
2: एक बहुत लंबी लिस्ट है इसकी, तो हम इसको ऐसे कारणों को विभाजित करते हैं जैसे श्वसन तंत्र के खुद से उसके संबंधित कारण।
1: जी,
2: जैसे अस्थमा आप सभी जानते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा जिसको कहते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं जैसे वायरल निमोनिया, जैसे अभी कोविड हुआ था इस तरह के कोई निमोनिया होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, सीओपीडी थोड़ा सा जल्दी इतनी जल्दी एज में नहीं होती, 40 से 50 के बाद होती है, तो इसलिए लेकिन उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। एक इंटरस्टिशियल लंग डिसीज होती है जिसे फेफड़े में सुकड़ने की बीमारी कहते हैं, न्यूमोथोरेक्स होती है जिसमें कि फेफड़े में कहना चाहिए हवा भरने की बीमारी कही जाती है, और कुछ ऐसे कारण जैसे बचपन में किसी को बार बार इन्फेक्शन होते थे उसके कारण जो फेफड़े में कुछ बदलाव आ गए जिन्हें ब्रोंकाइटिस कहते हैं, वो भी आगे चल के यंग एज में आपको सांस की बीमारी का कारण बन सकते हैं।
1: जी।
2: फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, जैसे कि फेफड़े की जो नलिकाएं होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं, उसमें थक्का बन जाना वो। उसके अलावा ये तो हो गए फेफड़े से संबंधित कारण, अनेक अलग कारण होते हैं जैसे हृदय संबंधी कारण, उनमें भी आप मरीज को सांस ही फूलती है।
1: जी।
2: वो जब प्रेजेंट करता है डॉक्टर के पास तो सांस फूलती है, लेकिन कारण अलग होते हैं, फेफड़े के नहीं होते। जैसे हृदय संबंधी बीमारियां हो गई, जन्मजात हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं, हार्ट में जो वॉल्वुलर डिसीज होती है जिसमें वॉल्व कहते हैं, उससे संबंधित बीमारियां होती है, उसमें भी ऐसे ही होता है। जो रिदम बीट होती है हार्ट बीट की अनियमितता, अरिदमियास कहते हैं, उससे संबंधित बीमारियां, ये भी सांस से ही प्रेजेंट करेंगी। फिर हेमेटोलॉजिकल बीमारियां जैसे एनीमिया, खून की कमी, आपने सुना होगा सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, कुछ अलग टाइप की बीमारी ये होती हैं, रक्त कणिकाएं अलग तरीके की बनती हैं, उसके कारण भी सांस फूलती है।
1: जी।
2: फिर जैसे अलग कुछ ऐसे कारण हैं जिसपे लोग ध्यान नहीं देते, जैसे थायराइड की बीमारी है, डायबिटीज, कीटोएसिडोसिस हो जाती है, ओबेसिटी, मोटापे के कारण भी सांस फूलती है, कुछ एंग्जाइटी, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं जैसे आपको बताऊं पैनिक डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर जिसको आप इग्नोर करते हैं कि नहीं ये तो कोई सोच भी नहीं पाता, वो भी कारण हो सकते हैं सांस बढ़ने के।
1: जी जी।
2: फिर कुछ और भी न्यूरोमस्कुलर कारण होते हैं जैसे मायस्थेनिया ग्रेविस हो गई, प्रेगनेंसी में भी होता है, और बहुत आपने देखा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल आजकल लोगों की है कि बिल्कुल बैठे रहना, ऐसे यदि ऐसे लोग कभी थोड़ा सा भी काम करते हैं तो भी सांस फूल सकते।
1: जी जी जी जी। डॉक्टर साहब, वर्तमान में क्या युवाओं में पहले की अपेक्षा सांस संबंधी या श्वसन तंत्र संबंधी बीमारियां ज्यादा हो रही हैं कि क्या केवल ये एक भ्रांति है?
2: देखिए, आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल किया है जो कि मुझे लगता है युवाओं को जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आज के समय निश्चित ही सांस संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। कारण बहुत सारे हैं, हमारी लाइफ स्टाइल एक तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, हम ज़्यादा मेहनत करते नहीं है तो हमारा शरीर डीकंडीशन हो जाता है, थोड़े से काम करने में सांस फूलने लगती है, फिर मोटापा बढ़ता है, तो मोटापे के कारण जो है बहुत सारी बीमारियां उसके कारण खुद ही हो जाती हैं, उससे सांस फूलती है। फिर स्मोकिंग का चलन आजकल बड़े जल्दी हो गया है, स्कूलों में लोग बहुत जल्दी एज में स्मोकिंग करने लगे हैं, और एक नई चीज़ आज कल आई है जिसको बहुत जानना जरूरी, वेपिंग।
1: जी जी
2: इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होता है
1: जी,
2: इसके थ्रू लोग निकोटीन लेते हैं
1: जी।
2: तो ये एक वेपिंग क्या है, ना केवल वेपिंग के बारे में मैं बताऊं कि स्कूलों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है
1: जी जी जी।
2: स्कूलों में पहले तो लोग कॉलेज उसके बाद में शुरुआत करते थे, आज के समय में लोग स्कूल में ही वेपिंग शुरू कर देते हैं
1: जी।
2: और उसके कारण ना केवल सांस संबंधी बीमारियां, सांस मतलब परमानेंट डैमेज भी हो सकता है, मतलब फेफड़े में कुछ ऐसे टाइप के बदलाव आ जाते हैं जो कि जीवन भर के लिए फेफड़े को कमजोर बना सकते हैं
1: जी जी।
2: तो इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि लोग इसको समझें। फिर पॉल्यूशन प्रदूषण बहुत बढ़ गया है
1: जी,
2: वो एक कारण है। फिर कुछ ऐसे कारण जैसे इंडस्ट्री में कई काम करना
1: जी,
2: केमिकल इंडस्ट्री में काम करना
1: जी,
2: फिर सिलिकोसिस एस्बेस्टस जो सीमेंट वगैरह जहां डस्ट निकलती है ऐसी जगह काम करना
1: जी,
2: ये सब कारण जो है
1: जी,
2: जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है ये सब कारणों से सांस की संबंधी बीमारियां निश्चित ही बढ़ रही है
1: जी जी जी जी जी जी। डॉक्टर साहब, आपने स्मोकिंग और वेपिंग की बात की, तो आप हमारे युवा श्रोताओं को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो इन सब चीजों से श्वसन तंत्र के जो रोग हैं इनसे बचाव के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे?
2: देखिए, आज बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि हमको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। जो पहले हम अनुशासन रहा करते थे सभी लोग करीब करीब कि भाई समय से उठना, समय से अपनी दिनचर्या का यानी निर्वहन करना
1: जी,
2: और दुर्गुणों से बचे रहते थे काफी हद तक
1: जी।
2: लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है कि सब कुछ इजीली एसेसिबल है, तो इस कारण जो व्यसन है उसकी तरफ युवा जो है बड़ी जल्दी आकर्षित हो रहे हैं, उपलब्धता आसानी से हो जाती है
1: जी।
2: तो एक ये बड़ा कारण है
1: जी।
2: दूसरा कि जैसे मैंने कहा था कि मोटापा बढ़ना, ओबेसिटी आजकल, क्योंकि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई, बच्चे जो हैं मैदानों में कम खेलते हैं, मोबाइल में और टैब में अपना समय ज़्यादा व्यतीत करते हैं, तो उस कारण उनकी जो ऊर्जा है यानी सब कार्बोहाइड्रेट फैट इकट्ठा होता है बॉडी में और धीरे धीरे वो मोटापा बढ़ता जाता है, अनेक रोग उससे उत्पन्न होते हैं, न केवल सांस संबंधित मानसिक रोग भी उत्पन्न होते हैं, हृदय संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये हमें बहुत इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को हम सभी त्यागें
1: जी,
2: कसरत व्यायाम जो है वो अति आवश्यक है
1: जी,
2: भोजन में जो हम जंक फूड है उस पर हम बहुत ज़्यादा चले गए हैं
1: जी,
2: हमेशा पैक्ड फूड पे हम बड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बड़े जल्दी हम उसको खाते हैं ज़्यादा
1: जी,
2: तो इसको हमें बहुत कंट्रोल करने की आवश्यकता है
1: जी, जी।
2: सभी अभिभावकों को चाहिए कि अपने बच्चों को इन सभी चीज़ों से दूर रखने की कोशिश करें, व्यसनों से तो करना ही है, साथ में घर में भी आप लाइफ स्टाइल उनकी सेडेंटरी ना होने दें, उनका मोटापा ना बढ़ने दें, उनको जंक फूड से बचाएं, क्योंकि जंक फूड कहने के लिए बड़ा लोगों को आसान लगता है, अरे नहीं खाएंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में घुस चुका
1: जी,
2: है
1: जी,
2: और उसके बिना नहीं रहते लोग
1: जी,
2: तो उससे बचना बहुत आवश्यक
1: जी। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें खान पान की या डाइट की, तो आप हमारे सुनने वाले को क्या सजेस्ट करेंगे कि मतलब एक प्रॉपर हेल्दी डाइट स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या जरूरी है?
2: देखिए, जो हमारी भारतीय डाइट शुरू से रही है, प्राचीन काल से जो परंपरा है कि हम पूरी हेल्दी डाइट हमारी थाली में परोसी जाती थी
1: जी,
2: वो सबसे उत्तम है
1: जी।
2: उसके अलावा आप फल ड्राई फ्रूट्स हैं, दूध है
1: जी,
2: जो मतलब ऐसी चीजें जो कि पैक्ड नहीं है
1: जी,
2: वो खाना सबसे उत्तम है
1: जी।
2: यदि हम कोई भी चीज़ जैसे मान लो हम यही अनाज, ये जो हमने बताया जैसे हम जो दाल चावल या चपाती है कुछ भी, यदि ये सब पैक्ड वाली खाते हैं
1: जी,
2: तो भी वो नुकसान करती है
1: ओके,
2: क्योंकि उसमें जो प्रिजर्वेटिव होते हैं वो नुकसान करते हैं, धीरे धीरे धीरे वो शरीर को बहुत कमजोर करते जाते हैं। और आजकल एक और बीमारी जो कैंसर जो बढ़ी है, कैंसर के बढ़ने का कारण भी यही सब चीजें हैं
1: जी,
2: तो हमें उससे भी सावधान रहना कि सांस संबंधी बीमारी भी बढ़ेगी कैंसर के कारण भी
1: जी,
2: तो हमें उसको बचाने के लिए हेल्दी लाइफ स्टाइल करनी है, मतलब खाना पीना हमारा प्राचीन, हमें वहीं लौटना पड़ेगा, हम जहाँ से हम डाइवर्ट हो गए थे, हम रास्ता हमने बदल दिया था
1: जी,
2: हमें वापस वहीं लौटना पड़ेगा, उन्हीं चीज़ों पे आना पड़ेगा, और कोशिश करें घर में बनी हुई साफ सुथरी चीज़ों का सेवन करें, बाजार की चीज़ें कम से कम खाएं और खासकर पैक्ड फूड बिल्कुल ना खाएं
1: जी। डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे सुनने वालों को आकाशवाणी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: देखिए, पुनः मैं वही संदेश देना चाहूँगा कि हम सभी के लिए एक बड़ी आवश्यक चीज़ है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा करें, अनुशासन का पालन करें, व्यायाम करें, व्यसनों से दूर रहें
1: जी,
2: भोजन अच्छा लें और पेड़ पौधे लगाएं
1: जी,
2: क्योंकि वातावरण को शुद्ध करने के लिए पेड़ सबसे ज़्यादा आवश्यक है
1: जी। डॉक्टर संजय भारती जी, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने युवाओं में होने वाले श्वसन रोग कारण लक्षण और बचाव इस विषय पर विस्तार से अपने विचार रखे। हम आशा करते हैं हमारे सुनने वाले इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। आपको आकाशवाणी से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, जिसका विषय था युवाओं में होने वाले श्वसन संबंधी विकार, कारण और बचाव। विषय विशेषज्ञ थे डॉक्टर संजय भारती, जिनसे बात की थी नीला बाजपेयी ने। साथियों, अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म गुड न्यूज से, जिसमें आवाज दी है रोचक कोहली, लव और अकाशा ने।

0: दोस्तों, टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को पहले से कई ज़्यादा आसान बना दिया है। आज हम जो स्मार्टफोन्स, नेविगेशन ऐप्स और ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ करते हैं, उनमें से कई एआई की मदद से काम करती हैं, और यही है हमारी चर्चा का अगला विषय।
1: बिल्कुल आद्या, एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स को सीखने, सोचने और डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी देती है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो एआई मशीन्स को स्मार्ट बनाता है।
0: आज एआई हर फील्ड में अपनी जगह बना रहा है, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, एग्रीकल्चर हो या बैंकिंग सेक्टर हो, हर जगह एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है।
1: जैसे कि हॉस्पिटल में एआई डॉक्टर्स को डिजीजेस डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, और एजुकेशन सेक्टर में स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है।
0: डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और एआई डेवलपमेंट जैसी फील्ड्स में जॉब्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है।
1: बिल्कुल आद्या, इसीलिए

0: आज के युवाओं के लिए जरूरी है कि वे सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज ही ना करें बल्कि उसे समझें और उससे रिलेटेड स्किल्स भी डेवलप करें।
1: एग्जैक्टली, फ्यूचर उन्हीं लोगों का होगा जो लर्निंग कभी नहीं रोकेंगे। कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग जैसे स्किल्स एआई के युग में बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं।
0: साथ ही एआई का रिस्पॉन्सिबल यूज भी बहुत जरूरी है। हमें प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी और फेक इन्फॉर्मेशन जैसे इशू के प्रति भी अवेयर रहना चाहिए।
1: दोस्तों, एआई को हमें कंपटीशन नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए।
0: ये हमारी कैपेबिलिटीज को इनहेंस कर सकता है और नए इनोवेशंस को जन्म दे सकता है,
1: क्योंकि आज का युवा ही कल का इनोवेटर, लीडर और चेंज मेकर है।
0: चलिए दोस्तों, आप सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म धड़क 2 से, जिसमें आवाज दी है दर्शन रावल, जोनिता गांधी और रोचक कोहली ने।

0: दोस्तों, वक्त हो गया है कार्यक्रम के शुरुआत में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने का। हमारा आज का पहला प्रश्न था, AI शब्द का पहली बार प्रयोग किस वर्ष में किया गया था, जिसका सही उत्तर है 1956।
1: और आज का हमारा दूसरा प्रश्न था, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है, जिसका उत्तर है परम 8000।
0: साथियों, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम समाप्त करने का, तो अनुमति दीजिए आपकी रेडियो दोस्त आद्या नायक
1: और अमीषा पटेल को।
0: हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय, नई चर्चाओं और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार।

मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वर में। फिल्म क्रिमिनल से हमने इस गीत को लिया है। MM करीम का संगीत और गीतकार हैं इंदिवर।

फिल्म क्रिमिनल में भी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक को। एमएम करीम का संगीत था और इंदिवर के बोल। श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले गीत से पहले एक सूचना सुनिए। आपके मैसेज हमारे गीत कार्यक्रम आपके लिए हर शुक्रवार रात 9:30 से रात्रि 10 बजे तक आपके अपने प्राइमरी चैनल पर प्रसारित किया जाता है। इस बार की 5 फिल्में जिनके लिए आपको व्हाट्सएप संदेश भेजना है शुक्रवार शाम 4 बजे तक। फिल्में हैं गीत के बोल हैं जिसके सपने रोज हमें आते रहे, महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर का स्वर है और फिल्म का नाम है गीत। फिल्म ईश्वर। गीत के बोल हैं आगे सुख तो पीछे दुख, नितिन मुकेश और कविता कृष्णमूर्ति का स्वर। फिल्म का नाम है थोड़ी सी बेवफाई। गीत के बोल हैं आंखों में हमने आपके, फिल्म कुली नंबर 1। गीत के बोल हैं आ जाना, फिल्म सपने। गीत के बोल हैं आवारा भवरे और हमारा मोबाइल नंबर है 9425149342। मोबाइल नंबर एक बार पुनः नोट करें 9425149342। आपके संदेश हमें शाम 4 बजे तक मिल जाने चाहिए। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, इस गीत को लिया है हमने फिल्म वक्त पर बोलना से, शकील आजमी के बोल और हरिहरन का स्वर।

श्रोताओं एक सूचना सुनिए। जीआरपी थाना जबलपुर में पंजीबद्ध मर्ग क्रमांक 24/26 धारा 194 BNSS में अज्ञात मृतक रमाशंकर पिता मधुरम उम्र 52 साल जिसके निवास का कोई पता नहीं है का दिनांक 9/6/2026 को शासकीय अस्पताल विक्टोरिया में अज्ञात बीमारी होने से इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक का हुलिया इस प्रकार है, पूरे शरीर में सफेद दाग हैं, सिर में चांद निकला हुआ, बाल रंगे हुए काले, दाढ़ी एवं मूछें हल्की बढ़ी हुई, रंग सांवला, चेहरा सामान्य, बदन इकहरा, कद करीबन 5 फीट 7 इंच। मृतक के बदन पर सफेद कलर का शर्ट एवं नीले कलर का लोअर तथा सफेद सेंडो बनियान एवं कत्थी कलर का अंडरवियर है। मृतक के वारसानों की तलाश पतारसी की गई परंतु कोई पता नहीं चला। जिस किसी को भी इस व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी हो वो कार्यालय थाना प्रभारी रेल पुलिस जबलपुर से संपर्क करें। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं फिल्म त्रिशूल का ये गीत, नितिन मुकेश और लता मंगेशकर का स्वर, खयाम का संगीत, साहिर लुधियानवी के बोल।

लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। सबसे पहले सुनिए हमारी आज की शेष सभा के खास खास कार्यक्रमों के बारे में।

श्रोताओ, आपसे कुछ ही समय बाद यानी कि शाम 6 बजे आप सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। लोक संगीत होगा शाम 6:30 पर। कलाकार है प्रकाश तिवारी। सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे निकिता द्वारा गाए गीत और भजन। समय होगा शाम 6:45। कृषि जगत का समय है शाम 7:21। रात 8 बजे सुर्खियों में और फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात 8:45 पर।

समाचार संध्या आप सुनेंगे रात 8:45 पर, न्यूज 8:09 रात 9 बजे और स्पॉटलाइट रात 9:15 पर। यह सभी कार्यक्रम हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:30 पर सुनिएगा धारावाहिक हंसना मना है का भाग 5। आलेख हेमंत कुलकर्णी का है और परिकल्पना विमल कांत येंडे की। प्रस्तुत करता होंगे डॉ बैजनाथ गौतम। रात 10 बजे शास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे सुभाष दीक्षित का वायलिन पर बजाया राग केदार। तबले पर संगत इफ्तिखार हुसैन खान की। रात 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम मन भावन।

0: श्रोताओं, ये थे हमारे आज की सभा के शेष कार्यक्रम। हमारी आइए अब आपको हमारी कल की सभा के कार्यक्रमों के बारे में बता दें। कल आप 9 बजे सुनेंगे, सुबह 9 बजे सुनेंगे लोक रसधार। गांधी चर्चा का समय है सुबह 9:15। जिले की चिट्ठी सुबह 10 बजे। सारंगा का प्रसारण होगा सुबह 10:20 पर। ये थे हमारे आज और कल के विशेष कार्यक्रम। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। न्यूज हेडलाइंस अब भोपाल से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में अनिश्चितता के बावजूद भारत आत्मविश्वास के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए केंद्र और राज्यों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से 14 जून को आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित विशेष ऑनलाइन योग सत्र में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। ये सत्र अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन अभियान के तहत आयोजित किया जा रहा है। राज्यसभा की 3 सीटें भाजपा ने जीत ली है। भाजपा के तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को आज निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। नाम वापसी की अंतिम समय सीमा 3:00 समाप्त होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी अरविंद शर्मा ने तीनों को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपे। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी मारिवेक्स पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। भारत ने इस हमले में अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों की जान गई है। हालांकि 24 भारतीय चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। इंदौर में जारी 5 दिवसीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के तीसरे दिन भारत समेत 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए। कृषि, खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती और किसानों की आय बढ़ाने जैसे अहम विषयों पर मंथन किया गया। सब्जी उत्पादन में प्रदेश देश के अंदर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। राज्य सरकार ने बताया कि बीते 4 वर्षों में प्रदेश का सब्जी उत्पादन करीब 21,58,000 मीट्रिक टन बढ़कर 257,99,000 मीट्रिक टन हो गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छुपी होती एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी का।
2: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
0: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
0: श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
2: जी
0: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
2: जी
0: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
2: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई है, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती हैं। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजीत जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
0: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
2: जी
0: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
2: जी
0: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
2: श्रोताओ, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओ, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
0: तो श्रोताओ, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं।
2: जी
0: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है, यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है या नारंगी या लाल भी हो सकता है किस्मों और स्थान के अनुसार।
2: जी
0: इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं। फिर क्या होता है?
2: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भून कर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
0: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
2: जी
0: तो श्रोताओ, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
2: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
0: जी विमलेश जी, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था।
2: जी
0: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
2: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
0: जी श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
2: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
2: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओ, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
2: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
2: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियां उनके लिए अनुकूल हैं।
3: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
4: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहां बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पौंडेचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: आहा, वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
0: जी,
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
0: वो क्या था सुबोध जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
0: जी,
1: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती उन्हें कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
0: जी,
1: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करे। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
0: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
1: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
0: जी,
1: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
0: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
1: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
0: जी,
1: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख

0: थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
1: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
0: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं
1: हाँ?
0: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
1: और ब्रह्मचर्य?
0: राम कृपाल
1: जी,
0: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है
1: जी।
0: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
1: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था, ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं
1: जी।
0: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है
1: जी। हाँ,
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें 1-2 विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे
1: जी। अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
0: असल बात तो यह है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए
1: जी।
0: अब सवाल यह है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आएं। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है, उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं। बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल 6ठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5ों इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है
1: जी।
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है
1: जी। हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू ये है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके
1: जी। बिल्कुल,
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

0: श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पौंडेचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
2: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

सैर तो हो गई इस गीत में, अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हाँ मिलकर भी।

0: मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तुम्हारे घर के पास मेला लगे तो जरूर जाना। और हाँ, अकेले नहीं, किसी के साथ। और वहां से आकर अपनी मेले की सैर के बारे में अपने साथियों को भी बताना कि क्या देखा वहां।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत, कलाकार हैं प्रकाश तिवारी।

श्रोताओं, प्रकाश तिवारी के गाए इस बुंदेली लोकगीत के साथ ही हमारा आज का लोक संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत, कलाकार हैं निकिता कोड़े। आइए सुनते हैं इनके गाए गीत और भजन।

निकिता कोड़े के स्वर में अभी आप सुन रहे थे कबीर की रचना। आइए अब सुनते हैं गीत, रचना डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की है।

निकिता कोड़े के गाए इस मीरा भजन के साथ ही हमारा आज का सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने को हैं, अब समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
1: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
0: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा है कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलों से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ओमान के अधिकारी राहत और आपातकालीन समन्वय के प्रयासों में जुटे हैं। टैंकर में आग लगने के कारणों की अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। 8 जून को एमटी मारिवेक्स अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर आकाशवाणी में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has said that despite the world passing through a period of uncertainty and instability, India continues to advance on its growth trajectory with confidence and determination. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, Mr. Modi said, as India progresses towards achieving

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद बैठक में पीएम मोदी का संदेश, दुनिया की अनिश्चितता के बीच आत्मविश्वास के साथ विकास पथ पर भारत। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 12 साल पूरे करने पर पीएम मोदी ने अमेरिका, जर्मनी, इजराइल समेत कई देशों के नेताओं का जताया आभार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 14 जून को आयुष मंत्रालय के ऑनलाइन योग सत्र में जुड़ने की अपील की और प्रदेश की तीनों सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित रिटर्निंग ऑफिसर ने सौंपे प्रमाण पत्र। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में अनिश्चितता के बावजूद भारत आत्मविश्वास के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए केंद्र और राज्यों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं को रोजगार देना प्राथमिकता बताया। इस वर्ष बैठक का विषय 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास है। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर दुनिया भर के नेताओं से मिली बधाइयों के लिए आभार व्यक्त किया है। 10 जून को 12 वर्ष पूरे कर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। श्री मोदी 2014, 2019 और 2024 में लगातार 3 बार प्रधानमंत्री चुने गए। उन्होंने अमेरिका, सिंगापुर, जर्मनी, इजराइल, इटली, गुयाना और भूटान के नेताओं का धन्यवाद करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से 14 जून को आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित विशेष ऑनलाइन योग सत्र में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। ये सत्र अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन अभियान के तहत आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर है और आज ये एक वैश्विक जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक वैश्विक जन आंदोलन के रूप में स्थापित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के 7वें काउंटडाउन के अवसर पर आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 14 जून 2026 को प्रातः 6:15 बजे से 7:35 तक एक विशेष ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अधिक से अधिक नागरिकों को योग से जोड़ते हुए स्वस्थ, जागरूक एवं निरोग समाज का निर्माण करना।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी मारविक्स पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। भारत ने इस मामले में अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों की जान गई है। हालांकि 24 भारतीय चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में तनाव के बावजूद देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह स्थिर है। इंदौर में जारी 5 दिवसीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के तीसरे दिन भारत समेत 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए। कृषि, खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती और किसानों की आय बढ़ाने जैसे अहम विषयों पर मंथन किया गया। सम्मेलन में शामिल विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने वैश्विक कूटनीति और व्यापारिक संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति की है और अनेक देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए हैं। सम्मेलन में शामिल इथियोपिया के एक प्रतिनिधि ने कहा,
2: मैं इंडिया में बहुत बहुत खुश हूँ, भारत में बहुत खुश हूँ। हमारा दोनों देश, प्रधानमंत्री जी भी पिछली बार हमारा देश गया था, तो अच्छा स्टेट विजिट था। हमारा प्रधानमंत्री, इथियोपिया का प्रधानमंत्री भी अच्छे से स्वागत कर दिया मोदी जी के लिए। सो दोनों देशों बीच में अच्छा रिश्ता है।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटें भाजपा ने जीत ली है। भाजपा के तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को आज निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। नाम वापसी की अंतिम समय सीमा दोपहर 3 बजे समाप्त होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी अरविंद शर्मा ने तीनों को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपे। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन हलफनामे में अनियमितता के आधार पर मंगलवार को ही खारिज कर दिया गया था। इसे कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने इस याचिका पर कल तक के लिए सुनवाई टाल दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री और विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 14 जून का दिन क्षेत्र के किसानों के लिए ऐतिहासिक होगा। इस दिन सुबह 10 बजे विदिशा के बेरखेड़ी जट्टू में कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा, जिसे भारत का मॉडल कृषि विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों ने इस योजना को अपने जीवन में आए बड़े बदलावों का कारण बताया है। इस योजना के हितग्राही द्रौपदी राय बताती हैं।
4: उज्ज्वला योजना मिलने से ये फायदा हुआ है कि मेरे घर में अब धुओं से राहत होगी तथा महिला और बच्चों के स्वास्थ्य में बहुत सुधार हो गया है, तथा समय की बचत हो गई है। और प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस योजना से महिलाओं को सम्मान मिला है तथा जीवन यापन में बहुत सुधार आया है।
0: राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव ने आज भोपाल सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया और ट्विशा शर्मा केस के आरोपी सेवानिवृत्त जज गिरबाला सिंह से मुलाकात की। निरीक्षण के दौरान टीम ने महिला वार्ड, अस्पताल, रसोई घर, पुस्तकालय और आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर का जायजा लिया। सब्जी उत्पादन में प्रदेश देश के अंदर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। राज्य सरकार ने बताया कि बीते 4 वर्षों में राज्य का सब्जी उत्पादन करीब 21,58,000 मीट्रिक टन बढ़कर 257,99,000 मीट्रिक टन हो गया है। प्रदेश में इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से आज ग्वालियर, जबलपुर समेत 34 जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। बीसीसीआई ने श्रीलंका दौरे के लिए भारत की पुरुष अंडर 19 टीम का ऐलान कर दिया है। यशवर्धन सिंह चौहान को कप्तान और लक्ष्य रायचंदानी को उप कप्तान बनाया गया है। भारतीय टीम अगले महीने 3 वनडे और 2 मल्टी डे मैच खेलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने आज राजस्व अधिकारियों के साथ सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा और खाद वितरण निगरानी की विस्तृत समीक्षा की। खंडवा जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र खालवा में परंपरागत चिकित्सकों भूमका और पढ़िहार के लिए 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। आज भोपाल लोकसभा क्षेत्र के सांसद आलोक शर्मा ने सीहोर में सीवन नदी के विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया। शहडोल संभाग के तीनों जिलों में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 126 नए स्कूल भवन बनाने की तैयारी है। मंदसौर के श्री पशुपतिनाथ मंदिर परिसर स्थित भोजनालय के संचालन की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है। श्रद्धालुओं को सस्ती दरों पर भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। राजगढ़ में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और जन जागरूकता संबंधी गतिविधियां निरंतर संचालित की जा रही हैं। नीमच कलेक्टर की पहल पर गंभीर बीमारी से पीड़ित एक बालिका के उपचार के लिए भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी से 1,00,000 रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। सिंगरौली जिले में संचालित 5 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। रायसेन स्थित हजरत पीर फतेहुल्लाह शाह बाबा के दरगाह शरीफ परिसर में 1 पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। शिवपुरी में थोक उर्वरक विक्रेताओं के पास उपलब्ध स्टॉक की निगरानी और वितरण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए निरीक्षण दलों का गठन किया गया। छिंदवाड़ा के तामिया थाना क्षेत्र के ग्राम सिंथोली में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक किसान की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई। अशोकनगर में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों की बैठक ली गई। जबलपुर में राज्य अनुसूचित जाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ कैलाश यादव ने अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण और उत्थान से जुड़े कार्यों की जानकारी ली। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज एवं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि जगत।

हम बस देवा पो आ गए रे कि अरे मुरे राम, सबरे भैया बिन्नु हरोखो के अरे मुरे राम, जानी की भौजी की राम राम के अरे मुरे राम। हम बस देवा पहुँचे गाँव की अरे मोरे राम, हमने सुनो ऐसो किरदार के अरे मोरे राम, हर घर में जी को सम्मान की अरे मोरे राम। कतरा कतरा खोल रहो तो के अरे मोरे राम, अपने देश की लाज बचावे के अरे मोरे राम, राम प्रसाद नाम तो उनको के अरे मोरे राम, सो कर गए रामई जय सो नाओ के अरे मोरे राम। सेना की करके तैयारी के अरे मोरे राम, ब्रिटिश हुकूमत के रावण खो के अरे मोरे राम, ऐसो मंजा चखाओ उनने के अरे मोरे राम। आज भी धरती को हर कोनों के अरे मोरे राम, कहते हैं राम राम ही राम के अरे मोरे राम। सबई कला के रंगते उनमें के अरे मोरे राम, लेखक और कवि सोई हते के अरे मोरे राम। करके कांड का कोरी उनने के अरे मोरे राम, हिला दई अंग्रेजी सत्ता के अरे मोरे राम। और बने माँ भारती की के अरे मोरे राम, सबसे प्यारे लाल लाडले के अरे मोरे राम। आज भी उनके सबरे नारे के अरे मोरे राम, युवा क्रांति की ढाल बने के अरे मोरे राम। आज है उनको जन्म दिवस के अरे मोरे राम, जोन उम्र में बनते दूल्हा के अरे मोरे राम, ऊ उम्र में फांसी पे झूले के अरे मोरे राम। राष्ट्र धर्म निभावे उनने के अरे मोरे राम, हसत हसत दे दए ते प्राण के अरे मोरे राम। और सुनो भज्जा रो, पहलाऊ भेजा होते ते गाँव में के अरे मोरे राम, नुक्कड़ नाटक और नौटंकी के अरे मोरे राम, राजाओं के राज से लेके के अरे मोरे राम। मने होत तो हर युग में मनोरंजन के अरे मोरे राम, सो मनोरंजन को जोई तो साधन के अरे मोरे राम। रंगमंच और नाट्य कला के अरे मोरे राम, एक कला बस नोई रंगमंच के अरे मोरे राम। जीवन को हर भाव समानु के अरे मोरे राम, हर युग बदले इनके अंदाज के अरे मोरे राम, और हर युग की परछाई इनमें के अरे मोरे राम। और जो चल रहो पर सोतम महीना के अरे मोरे राम, सो कृष्ण कन्हैया के दर्शन कर लो के अरे मोरे राम, और जीवन सफल बना लो सबरे के।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: तो भज्जा बिन्नू हरो, अबे देखो कितना उमदा सो कृष्ण कन्हैया के दर्शन कर लू, भजन सुनाओ अपने मिठाई लाल चक्रवर्ती भैया ने। और आज का है, आज है गुरुवार, सो आज का सुनने पहलो बुंदेली कविता पाठ। कैसे आज गुरुवार को सब जने बुंदेली कविता पाठ वारी भैया बिन्नू हरे आउते हैं को न को। और आज भज्जा बिन्नू हरो, आज को जो बुंदेली कविता पाठ है सुन के आपोरन को अपने गांव की बाई बोली भाषा और वही वातावरण और उनके संगे संगे अहाने अटकों को आनंद अगर आज लेने होवे तो आज अपने गुप्तेश्वर द्वारिका गुप्त भज्जा को जरूर ही सुनियो। हाओ बे आज को जो बुंदेली कविता पाठ सुनावे वारे हैं, तो सुन लो भैया और सब जने।
4: किसान भैया, हम अपन लोगन के लाने एक गीत सुना रहे हैं। इमे कहा है कि हमारे जो जेठे सियानन ने कहावते कही हती पुरानी, उनको बांधो है हमने कविता में अपनी, जी बड़े काम की हैं, पुरानी पर गई, आजकल कोई सुनाउत नहीं है। हमने इन कहावतन के जोर तंगोर के अपन औरन के लाने सुनावे के लाने जी रखी है कि बिसर न जाइयो गांठ बांधियो हुई न हैरानी, बिसर न जाइयो गांठ बांधियो हुई न हैरानी, गुप्तेश्वर कह सुनो कहावत हमसे बड़ी पुरानी, गुप्तेश्वर कह सुनो कहावत हमसे बड़ी पुरानी। कौन सी कहावत? कि आलस नींद किसाने नासे, किसान को आलस नहीं करो चाहिए, जा ई कहावत में बात कही गई है कि आलस नींद किसाने नासे, चोरे नासे खांसी, हंसी खुशी सन्यासी नासे, विप्रे नासे दासी, तो सांसी सांसी सियाने कह गए, सांसी सांसी सियाने कह गए हमने वो ही बखानी, गुप्तेश्वर कह सुनो कहावत हमसे बड़ी पुरानी, बिसर न जाइयो गांठ बांधियो हुई न हैरानी, गुप्तेश्वर कह सुनो कहावत हमसे बड़ी पुरानी। तो भूख गए भोजन मिलवे, भूख गए जो भोजन मिलवे, जाड़ो गए रजाई, कहावत है जा के भूख गए जो भोजन मिलवे, जाड़ो गए रजाई, जौवन गए पे त्रिया मिलवे, कौन काम की भाई। तो भूल न जाइयो गांव भरे में, भूल न जाइयो गांव भरे में, सबई की जानी मानी, गुप्तेश्वर कह सुनो कहावत हमसे बड़ी पुरानी, बिसर न जाइयो गांठ बांधियो हुई न हैरानी, गुप्तेश्वर कह सुनो कहावत हमसे बड़ी पुरानी। और आगे सुनो, ये एक प्रकार से जा अटकई वारी बात है, बड़ी समझदारी से पुराने लोग अन्य कही रही, उनको हमने बांधो है कि बारे से हम बोलत नहीं है, जवान लगे मोरे भाई, बारे से हम बोलत नहीं है, जवान लगे मोरे भाई, बूढ़न खे हम छोड़त नहीं है, ओड़े फेरे रजाई, बूढ़न खे हम छोड़त नहीं है, ओड़े फेरे रजाई, तो जड़कारे की रित ऐसी जा, जड़कारे की रित ऐसी जा, करत रहत सैतानी, गुप्तेश्वर कह सुनो कहावत हमसे बड़ी पुरानी, बिसर न जाइयो गांठ बांधियो हुई है न हैरानी, गुप्तेश्वर के सुनो कहावत हमसे बड़ी पुरानी। तो रहिए जाके राज में भैया, ताकि

तैसी कहिए, रहिए जाके राज में भैया ताकि तैसी कहिए, ऊंट बिलैया ले गई तो फिर हांजू हांजू कहिए, रहिए जाके राज में भैया ताकि तैसी कहिए, ऊंट बिलैया ले गई तो फिर हांजू हांजू कहिए, तो मोह देखी कहे भलो होत जू, मोह देखी कहे भलो होत जू, फलत कही भई बानी, गुप्तेश्वर कहे सुनो कहावत हमसे बड़ी पुरानी, बिसर न जाइयो गांठ बांधियो हुई है न हैरानी, गुप्तेश्वर कहे सुनो कहावत हमसे बड़ी पुरानी। और सुनो जिस शरीर से जुड़ी भई कहावत है कि पहले पारे सबको जागे, पहले पारे सबको जागे, दूजे पारे भोगी, तीजे पारे रोगी, जागे चौथे पहर में जोगी, पहले पारे सबको जागे, दूजे पारे भोगी, तीजे पारे रोगी, जागे चौथे पहर में जोगी, तो ई में रत्ती फर्क ही नहीं है, ई में रत्ती फर्क ही नहीं है, कह गए ज्ञानी ध्यानी, गुप्तेश्वर कह सुनो कहावत हमसे बड़ी पुरानी, बिसर न जाइयो गांठ बांधियो हुई है न हैरानी, गुप्तेश्वर कह सुनो कहावत हमसे बड़ी पुरानी। और सुनो कि बाबे दासी चोरे खांसी प्रीत बिनासे हांसी, बाबे दासी चोरे खांसी प्रीत बिनासे हांसी, घग्गा उनकी अकल बिनासे खाए जो रोटी बासी, तो इसे रोटी बासी नहीं खाओ चाहिए किसान भैया रो, बाबे दासी चोरे खांसी प्रीत बिनासे हांसी, घग्गा उनकी अकल बिनासे खाए जो रोटी बासी, तो अनुभव कहो निचोर के अपनो कई को उतरो पानी, अनुभव कहो निचोर के अपनो कई को उतरो पानी, गुप्तेश्वर के सुनो कहावत हमसे बड़ी पुरानी, बिसर न जाइयो गांठ बांधियो हुई है न हैरानी, गुप्तेश्वर कह सुनो कहावत हमसे बड़ी पुरानी, तो राम भजन खो टेढ़े मेढ़े आला खो अनियारे, राम भजन खो टेढ़े मेढ़े आला खो अनियारे, जो कहूं सुन पाए फाग दीवारी खोंद खाए गलियारे, राम भजन खो टेढ़े मेढ़े आला खो अनियारे, जो कहूं सुन पाए फाग दीवारी खोंद खाए गलियारे, तो ऐसो जोर लगाऊ तो मनुआ, ऐसो जोर लगाऊ तो मनुआ बहक जात है जवानी, गुप्तेश्वर कह सुनो कहावत हमसे बड़ी पुरानी, बिसर न जाइयो गांठ बांधियो हुई है न हैरानी, गुप्तेश्वर कह सुनो कहावत हमसे बड़ी पुरानी। और एक और है गर्मी की रित को लेकर के बात कही गई है, सियाने देखो कैसी कह गए कि देवदार और चंदन टोरा खसको अतर मिलावे, देवदार अरु चंदन टोरा खसको अतर मिलावे, करे ओ पटनो देह लगा के गर्मी में सुख पावे, तो भरी दोपहरिया लू लपटन की चलत नहीं मनमानी, भरी दोपहरिया लू लपटन की चलत नहीं मनमानी, गुप्तेश्वर कह सुनो कहावत हमसे बड़ी पुरानी, बिसर न जाइयो गांठ बांधियो हुई है न हैरानी, गुप्तेश्वर कह सुनो कहावत हमसे बड़ी पुरानी। आखिरी बात है, देखो अपने क्षेत्र में का का चीजें चलती नहीं और कैसे कैसे लोगों ने बात समार के अपनी बात कही कि मऊआ मेवा बेर कलेवा गुलगुच बड़ी मिठाई, मऊआ मेवा बेर कलेवा गुलगुच बड़ी मिठाई, इतनी चीजें खान चाहो तो घटिया खा ले करो सगाई, इतनी चीजें खान चाहो तो घटिया खा ले करो सगाई, तो कोस कोस पे पानी बदले जा, कोस कोस पे पानी बदले पांच कोस पे बानी, गुप्तेश्वर कह सुनो कहावत हमसे बड़ी पुरानी, बिसर न जाइयो गांठ बांधियो हुई है न हैरानी, गुप्तेश्वर कह सुनो कहावत हमसे बड़ी पुरानी। और एक कविता और सुनाऊ थे है ना, जा सोई हमारे गांव की परंपराओं से जुड़ी भाई है कि टरे ने टारो आरव हुई है देत बखत हुंद रउआ, टरे ने टारो आरव हुई है देत बखत हुंद रउआ, आज भुंसरा मगरे ऊपर बोले कारो कौआ, आज भुंसरा मगरे ऊपर बोले कारो कौआ। छंद देखो कि चाह के बिरछन बैठ चरेरू,
चाहके बिरछन बैठ चरेरु, डिड़के थानन बंदे पड़ेरु। भुनसारे को काम है जो कि चाहके बिरछन बैठ चरेरु, डिड़के थानन बंदे पड़ेरु, डार उरेन सकारे सूरज, डार उरेन सकारे सूरज, घर घर देत बुलाऊआ, आज भुनसरा मंगरे ऊपर बोले कारो कौआ, टरे ने टारो आ रो हुई है देत बखत हुंद रउआ, आज भुनसरा मंगरे ऊपर बोले कारो कौआ।

0: अरे आस भर झउआ आज भुंस राम अगरे ऊपर बोले कारो कौआ टरे न टार आ रो हुई है देत बखत हुंद रउआ आज भुंस राम अगरे ऊपर बोले कारो कौआ। और देखिए बखत की बात है कि समय कैसो पलटी लेत रहत समय कैसी अपनी कारस्तानी दिखाऊत गांव वारन के तो मौसम मारत चले झपट मौसम मारत चले झपट्टा खाए गरीबी इते उपट्टा मौसम मारत चले झपट्टा खाए गरीबी इते उपट्टा तिल को ताड़ बनाऊत धर दो तिल को ताड़ बनाऊत धर दो बेकारी ने पौआ आज भुंसना मंगरे ऊपर बोले कारो कौआ टरे न टारो आ रो हुई देत बखत हुंद रउआ आज भुंसना मंगरे ऊपर बोले कारो कौआ। और सुनो किसान है खेती में अपने जी जान लगाए रहे इसे कौ गौ है कि इत आलस की निंदिया नहीं है इत आलस की निंदिया नहीं है माथे श्रम की बिंदिया सैया इत आलस की निंदिया नैया माथे श्रम की बिंदिया सैया कुमला जावे उंगर याउत वे कुमला जावे उंगर याउत वे नहीं कुमला के जउआ आज हंसरा मंगरे ऊपर बोले कारो कौआ टरे ने टारो आ रो हुई है देत बखत हुंद रउआ आज हंसरा मंगरे ऊपर बोले कारो कौआ। आखिरी बन सुनो कि डरे धूर के धूर ने रावे डरे धूर के धूर ने रावे घूरे के सोई दिन फिर जावे डरे धूर के धूर ने रावे घूरे के सोई दिन फिर जावे अंधियारे को रंग ओढ़ता से अंधियारे को रंग ओढ़ता से टपकन लागे मऊआ अंधियारे को रंग ओढ़ता से टपकन लागे मऊआ आज भुंसना मंगरे ऊपर बोले कारो कौआ टरे न टारो आ रो हुई है देत बखत हुंद रउआ आज भुंसना मंगरे ऊपर बोले कारो कौआ बोले कारो कौआ बोले कारो।
1: तो भज्जा बिन्नू हरो अब हो गई है किस्सा की बेरा और किस्सा सुन बेकलाने अब जो गुंडन जीत जी के चुन्नू मुन्नू हरे हैं उनसे कह दे जो तना शांति बना के रखें अच्छी शांति से बैठे हो साता से अच्छी किस्सा सुने कैसे भी ना मैं उचकान लगा दें सुतना सुलनत के यहाँ सुनो हो कि अभी हल्ला के मारे भज्जा ने अपनी किस्सा ढंग से सुनने पावे सो फिर प्रश्न कहाँ से पता चले सो चिड़िया ने लिख पाए उन्हें अभी क्या भी हो जाएगी अरे भोजी सुना ही नहीं पाए थे हम आखिरी में क्या सो तुमने कहा कही थी सो इसे इन्हें भज्जा रहो सो बहानों ने मेरे बिन्नू हर और को हो सो भज्जा रहो तो सब जने अच्छे आराम से अपने पेन कागजा निकाल लूँ कि उनको प्रश्न को लिखवे के लाने और कहानी सुनी हो सब जने बैठ के तो हम सोचे थे बिना अब लाग लपेट के अपनी किस्सा आज की शुरू करिए और आज की किस्सा को नाव है किस्मत को दूरो। तो हम बस देवा कहें कहानी के अरे मोरे राम बात है जा बड़ी पुरानी के अरे मोरे राम बड़े बूढ़ों ने गढ़ी कहानी के अरे मोरे राम हमसे सुन लो उनकी बानी के अरे मोरे राम अरे मोरे राम अरे मोरे राम के अरे मोरे राम। तो भज्जा बिन्नू हरो ऐसे ऐसे एक गांव में सुरजन नाव को मोड़ा रह तू अब सुरजन का हतो कि भेजें सीधो सादरो हतो और बड़ो साँचो एकदम बिल्कुल कहते नहीं के कंचन पानी घाई इतनो प्यारो हतो लड़का हो और उकारत का हतो सारंगी बजावे को काम करत तो गाउत तो सो अपनी सारंगी बजावे और गावे के सिवाय कोनो अछू और दूसरे काम काज करत नहीं तो सो गांव भर में ऊहो कोनो प्रेम से गबज्जा कह लय वो कोनो कहे के जो तो बड़ो कलाकार है अच्छू उमदा और कोनो हंसी ठिठोली में ऊह धरती को बोझ कहे कैसे के साँचा में भज्जा रहू गावी बजावी सेवा कच्छू काम करते नहीं तो को मन नहीं लगा तो के कहूँ दो पैसा कमज जे के कौन काम रोजगार मजदूरी मेहनत करिए तो तना घर के लाने सहारो बने सो जो हूँ कर नहीं तू करता ही नहीं तू सिवाय गावी बजावी के सो नाए बैठ गओ माए उ तरफ के पुरा में पहुँच गओ नाए पेड़ के तरह आके बैठ गओ सो चार हम तुम बैठ गए सुबह सु को गाना सुनत रहे अपने उन दूसरन को मनोरंजन भाव जो ही करत तू केवल सुबह जा रो गाँव में अब जैसे कोनो तीज त्यौहार होवे या फिर कोनो मेला ठेला होवे चाहे कोनो ब्याह बराते होवे हर जगह मौका अवसर के हिसाब से सुरजन हो गावे बजावे बुलाओ जात तो कैसे के सुर की ऐसी मतलब कृपा हती सरस्वती की ऊपर कि जैसे ही गावे सोई हम कित का छोटे का जेठे का बड़े सबई को।

अपनो सुख दुख शुद्ध बुद्ध बिल्कुल बिसर जातो। अकेले कितने हजारों के सू के मान सम्मान और भाई भाई से काहू जीवन चलावी हो तो दो पैसा चा नहीं पड़त है। सुबह जारो यसी टी के सुरजन के संगे उकी बूढ़ी मतारी भी है त्यूर एक छोटी बहन रहती। सो सुरजन की मतारी एक दिन कहने लगी कबों को सुरजन से कहे कि बेटा सारंगी बजा के जीवन नेकट है तुम आओ जीवन काट भी खिलाने कछु काम काज सोई करबो जरूरी है। कैसे कि अब हमारी जे बूढ़ी हड्डी हैं अब इनमें उतनी दम नहीं बची कि हम काम करिए मेहनत मजदूरी करिए खेतन पे काम करिए और फिर घर चलेगी। अब ऊपरे हैं कहा है तुम्हारी एक बहन संगे सो अपने संगे संगे ऊ के जीवन की तो सोई तो ना सोचो जय ऐसी की मतारी कहने लगे। सुरजन अपनी माई की हर बात को टार देवे बस जाय के देख यू माई एक दिन हमारी जाय सारंगी हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दे ऐसी और ऊपरे से कहने लगे अपनी मतारी से। अब भज्जारो ऐसी कह के तो चुप हो जाबे। अकेले सुरजन के गांव त्रिलोकपुर में बड़ो पैसा वारो एक नगर सेठ रहतु। जब ऊ के कानों लो सुरजन की जग गायकी की खबर पहुंची सो ऊने एक दिन सुरजन हो अपने ते गावे बुलाओ। सेठ ने ना पूरो गांव इकट्ठो भाओ सेठ के नापे और सुरजन की जैसी गायकी जब सेठ धर्मदास और ऊ की मोड़ी हती ऊ सेठ की एक नाम तो मोड़ी को सिग्या सो ऊ की मोड़ी सिग्या ने सुनी उकी गायकी सोई ब्योरे सोई उकी गायकी के बिल्कुल ऐसे कायल हो गए। अब सुरजन की गायकी सुन के सबरे तो चले गए कि सुरजन के सुर सिया के कानों में ऐसे अटके मने सिया को सुरजन के सुर के संगे संगे उनकी लो दीवानी हो गई। कौन सेठ की मोड़ी सिया सुरजन की दीवानी हो गई। अब कछ रोज लो उन दो जनन को मिलबो जोरबो को सिलसिलो चलत रहो। अकेले एक दिन पूरे गाँव की गली खोरन से लेके उनकी चर्चा प्रेम की सेठ धर्मदास के कानों लो पहुंची। सेठ ने बिना नाराजगी के अपनी मोड़ी सियाह बुलाओ और कहने लगे कि हमने जो कछु सुनो है बेटा जा बताओ कि जा बात सांची है। सुमोड़ी ने बिना कोनो दरी और लाग लपेट के कह दई कि हाओ पिताजी तुमने जो कछु सुनो बिल्कुल सांची की तुमने सुनी। जब मोड़ी की बात सेठ ने मतलब मोड़ी की बात में सेठ ने जब वजन देखो कि मोड़ी पूरी दम से कह रही कि हाओ बिल्कुल सांची बात या जा सुबह कछु तनक शांत से पर गए और उन्हें ज़्यादा कोनो ऐसी बात बहस नहीं करी है उसे। अब भज्जो सेठ धर्मदास की जो निकलौती मोड़ी सियाह थी सुबह उसे दूर नहीं हो वो चाहते सो उनने तनक समझाऊ भाई सियाह से कही कि देखो बेटा सुरजन की गरीबी से हमें कोनो दिक्कत नहीं है। वो गरीब है सुका भाई हम तो हैं धनवान हम पैसा से पूर दे भी हूँ अकेले दूसरों से मान सम्मान पावे के लाने पूरो जीवन चलावे के लाने बेटा दो पैसा हो वो सोई जरूरी है। बाकी फिर यहाँ सोए कि तुम्हारी मर्जी है तुम्हें कन्या ही हूँ के संगे ब्याह रहे नहीं हुए संगे तो अब हूँ मैं हम कचू नहीं कर सका। सुबह जारो जैसे ही जा अपने पिताजी को दरबार सिया ने सुरजन को सुनाओ जाके कि आज हमारे पिताजी ने हमसे ऐसी सी कही है। सोई फिर सुरजन ने ठानी कि जब लो अपने ही दम से और अपनी मेहनत ही से हम दो पैसा कमा के तुम्हारे पिताजी हो तुम आज भरोसो न जीत ले हैं तुम दो जनों को जब लो हम सोई तुमसे ब्याह न कर भी अकेले उन्हें सिया के लाने भरोसो दो कि हम दो पैसा कमावे गाँव छोड़ के जे हैं अकेले और 7 साल के बाद लौट के आए तो ठीक है ना फिर तुम अपनो ब्याह कहूँ और कर लेगी जहाँ तुम्हारे पिताजी कहें ठीक है। और उदासी मन से सुरजन हो सिया ने विदा कर दो और अपनो सुरजन बेचारो लौट आओ घरे। अब दूसरे दिन बड़े भुनसारे से सुरजन अपनी बहन और मतारी को भरोसा दे के कि हम 7 साल बाद लौट भी और सब ठीक कर देगी तुम्हारे चिंता न करगी और ऐसी कह के सुरजन गाँव से बाहर निकल गओ। इतने सियाहों चाहे विवारों और गांव के जमींदार को एक मोड़ा हतो रतनदीप सुरजन की हर सांस और सोच पे नजर रखा तू तो सो जैसे ही उन्हें सुरजन हो जा देखो सोई अपने घोड़ा लेके पहुंच गाओ और कहने लगो काय सुरजन चलो अपनी तो ये कई मंजिल कहा ही बजारो संगे ही चला थे। सुबह चलत चलत नदियां मिली सो हो पार करबे के लाने और रतनदीप सुरजन से कहने लगो कि तुम अपनी सारंगी और सामान ऐसा करो भज्जा हमें दे दो हम ई हो अपने लिंगा सुरक्षित रख ले भी और तुम हो नदिया पैर के पार कर लो और हम घोड़ा से पैर के अपनों तुम्हारा सामान लेके आ रहा और सुरक्षित आ जाए भी। सुरजन बेचारो सहज भरोसो हाथ उन्हें कही हाउ ठीक है भज्जा सो रतनदीप पे भरोसा कर ला उन्हें जैसे सुरजन पारू पहुंचो सो उन्हें रतनदीप को देखो कि मैं घोड़ा की वो तो सामान लेके गाय भज्जा वो कहूँ ने दिखानो हूँ पार। अब सुरजन जान गो कि रतनदीप ने उनके संगे धोखा करो अब क्यों दिना को भूखो प्यासो सुरजन भटकत भटकत पृथ्वीपुर नाव के गाँव में नगर में पहुंचो और इतने रतनदीप ने गांव जाके का कह दई सबरे गांव वारन से के देखो जी कपड़ा सारंगी दे के उकी माई और सिया शायद सबको बता दई के देखो सुरजन नदिया में डूब के मर गाओ है अकेले सिया और सुरजन की माई हो भरू सुने हतो कह सुने जो लगा तो के जो हो नहीं सका थे सो अगर यहाँ से हो तो को उन्हें मरु मरत तो देखो तो डूबत तो देखो तो नदिया में सूने कह दे यहाँ नदिया में डूबत को कह लें तो हमें भरोसा नहीं आवे अब भी कछु में गड़बड़ लग रहा हो सुरजन है और आ है एक दिन लौट के।

जो भरोसा उन्होंने होगा। अब भैज पृथ्वीपुर नगर जहाँ सुरजन पहुँचो वो बड़ो नगर हतो और बड़े बड़े राजघराने व्यापारी हत सो तई का हतो कि बाजार हाट हतो तई गावई को काम करने लगू कबू तो अपनो थोड़ो बहुत कहूँ अपनो गा लेबे और उगावे के बदले में दो पैसा जहाँ जैसे मिल गया सो को काम चलन लगू और भज्जारो ऐसे कछु भाव सो सुरजन के बाजार में अपनो सुर छोड़ो रो तई राम दरबार मतलब राज दरबार को कछु सेने खाते बाजार में सो उन सुरजन को जो गायबो गावो सुनो और जैसे उनने गावो सुनो भी भारी प्रसन्न हुआ उन्हें लगो कि जो तो छुमदगार और अपनो राजा जोन है वो तो गायकी को बेजा दीवानो है ने हो तो यूँ अपन अपने संगे लो जल के राज दरबार में यू तो राजा कछु मतलब अच्छो कर दी के संगे सो कही के ठीक है भाई सुबह लुआ गए अब राज दरबार में बैठो सोई राजा सामने गावी हूँ सुरजन से कही सो कहने लगो कि देखो हम कौन उनके मतलब कहे से गाउत नहीं अपनी मर्जी से गाउत हैं सो ऐसी बात सुन के दरबार में सना को खिंच गाउत न कैसे अब राजा के सामने ऐसी कैसे क्यों हिम्मत कर सका अकेले सबके कहे सुने से उन्हें जात जात एक गाना राजा के कैसे सुनाओ और जैसे ही उन्हें तान छेड़ी सोई राजा साहब की तो प्रसन्नता को ठिकानों ने रहो और उन्हें तुरंत ही उसे जाग गई कि अब तुम्हें कहूँ जा भी की जरूरत नहीं है बेटा अब तुम्हें तई रहो राज दरबार में और हमारे राज गायक बन के पूरे सुख साधन और राशि ठाट बाट के संगे रहो बस तुम्हें तय करने थे कहने लगो ठीक है अकेले सुरजन हो समझ आई कि इन ठाट बाट के चक्कर में कोनो उनसे उनके अपने वादे से वो अपने दूर हो रहा है सुरजन हो शाही ठाट बाट धन पैसा और बेजई मान सम्मान तो मिल रहा हो तो अकेले वो अपने घर के जो पुराने दुख भरे दिन हते भूलो ने तो सो अपनी कमाई को एक एक पैसा जोड़ के धर रहा हो तो बचा बचा के अब इतने हरे हने का भाव 7 साल पूरे बीतन लगे अब 7 साल होने लगे सो ये ते सिया बाट हेर रही थी कि और इतने मतारी भी आस लगाई थी कि हमारा बेटा आ है कबाऊ न कबाऊ तो अब का भाव एक दिन सुरजन को पता करवे के लाने सिया ने एक जुगत भड़ाई उनके गांव में एक परदेसी व्यापारी आऊ तो व्यापार करवे उन्हें ऊ काम उसे कही के देखो तुम्हारो काम है हर राज्य नगरों में घूम घूम के फेरी लगा के अपनो व्यापार करा तो सामान चीज़ें बेचा तो सुसिया ने उसे कही कि आप हमारी एक मदद कर दो सुरजन को पता लगा उन्हें हमें सुख व्यापारी कहने लगो ठीक है बेटा बताओ कैसे जाना चीना लगे थे आउजाद गांव में सुसिया ने वो सुरजन की सारंगी ला के दाई और कहने लगी कि आप हर गाँव में जहाँ जहाँ जाओ सो सबको जसारंगी बताइयो और उनसे कहियो कि जो कोई भी जसारंगी चीन लेवे तो ऊ होचे ते नाम दाऊ जे सू व्यापारी ने भज्जारू ऐसे ही करूँ और जब वो पृथ्वी पर पहुँचो सोते भी उन्हें हर गली और बाजार में जाई सारंगी बताई और चीन वे के लाने नाम भी की भी बात कही सारंगी की बात जब पृथ्वीपुर की गलियों और भज्जा राजमहल से दरबार लो पहुँची सो सुरजन को सारंगी देख के वो तो छटपटास हो गओ वो भी पहुँच गओ देख जैसे देखो सो भड़बड़ा गओ तो और तुरंत ही व्यापारी के लंगा पहुँचो और जैसे ही बात सारंगी उन्हें देखी और कहने लगू के भज्जा जा तो हम आई आए और जब व्यापारी ने कही कि हम तो त्रिलोकपुर से आए सो फिर तो कहने लगो कि सुरजन तो बिजली की नाई बिल्कुल राजमहल की तरफ तो दौड़ो और राजा साहब से मिलके उन्हें पूरी अपनी आप बीती सुनाई कि राजा साहब हमें ऐसी ऐसी आओ जो हम गांव से आओ जब सारंगी हम आई और हमें ऐसे गाँव के और हम अपने गाँव अब जाओ चाहत उन्हें राजा से ऐसी कही सो राजा हम भी बड़ी प्रसन्नता भाई सो उनने भी अपने कही किया ठीक है तुम अपने गाँव जाओ चाहत हो सो हम तुम्हारी मदद करें दी सो उनने वो एक माटी की डबिया भी दई हाथ उनके देख संत हते सुनने उस संत ने भी वो एक माटी की डबिया दई जी की माटी लगावे से आँखन की रोशनी लौटाती सो उन्हें एक निशानी के रूप में वो ज्यादा दई अपनी तरफ से तोहफा समझ के उन संत जी ने अच्छो उमदा गाओ थो लड़का जा रहा हो सो तना कछु तो दे दो सो ऐसे उनने वह दई माटी की डबिया में माटी धर के सो सब कछु अपने संगे लेके बड़ी तेज रफ्तार से अपने घोड़ा को सुरजन लेके गाँव त्रिलोकपुर पहुँचो उत्ते जात के ब्याह की तैयारी देखी गाँव में सो अकेले का भाव के तो घबरा अकेले अपनी फिर भी सोच के मतारी के पास जाके देखा थे और सुरजन तुरंत ही अपने घरे अपनी माई के पास पहुंचो माई ने सारंगी बजा के और गा के सुनाओ सोई भज्जा हरो सुरजन की माई सुरजन हो चीन गई सुरजन तुरंत ही अपनी माई हो लेके सिया के ब्याह बारी घर पहुंचो सो सुरजन हो देख के सिया मारे खुशी के बात तो बिल्कुल समझ गई कि देखो ऊपर देखो उन्हें के भगवान आकाश तरपी आसमान में कि देखो प्रभु ने हमारी सुन लई आखिर हमने हमें इंतजार हतो कि आज सुरजन आ है एक ने एक दिन आ है लौट के जिंदा है सुरजन और देखो सुरजन आ गओ सो बात तो बिल्कुल भीतर ही भीतर फूले ने समा रही थी उस खुशी के मारू की आंसू गबन लगे और रतन दीप ते दूल्हा बनू बैठो तो अच्छो साजू सो रतन दीप तो भड़बड़ा गओ कहने लगो अरे जो तो जो आ गए जो कहाँ से कैसे आ गओ और सुरजन राशि ठाट बाट में रतो सो यहाँ सो राजा महाराजा कहीं लग रहा तू कि उनके सामने तो रतन दीप कछु लगा ही नहीं रहो तू सोई सुरजन हो देख के और सुरजन की हालत और सब जान करके और सिया के पिताजी ने सेठ धर्मदास ने सिया को ब्याह
वही से करबी की ठानी सुरजन से, सो सुरजन के संगे सिया को ब्याह जैसे करबी की सोची, सो जो रतन दीप तना चिड़चिड़ा को भड़बड़ा को और ही को भज जाते सो लड़बी ठाणो होगा।

सो सब ने गाँव वाले ने कही के देखो तुमने उखो झूठ झपेट के तुम पावा चाहते, और उन्हें अपनी पूरे विश्वास से पूरे धीरज से और पूरे अपनी मेहनत से मोड़ी हों पावे की अपनी पूरी जंग जीती 7 साल की और वो आवे हूँ आज लुआवे के लाने, तो तुम होत कैसे हो, कैसे तुम उसे ब्याह करके देख लो, एक तरफी सुरजन है और एक तरफी पूरा सुरजन के संगे पूरा गाँव और एक तरफी तुम अब करके देख लीजिए अकेले कैत नहीं है भैया, जहाँ सच्चाई हो तो हर आदमी संग दे थे, सो ऐसे ही सुरजन को पूरे गाँव वालों ने भी संग दो और सुरजन हो गाँव वालों की जरूरत नहीं थी, खुदा ही एक अपने आप में सबूत है, तो इतना बड़ा आदमी बन के आओ तो गांव में सुबह सुनो यहाँ तू जमाने को सुरजन नहीं है तो 7 साल पहले को तो भज्जारो उनकी सिया के पिताजी ने सेठ धर्मदास ने बढ़िया सिया को ब्याह बड़े धूमधाम से वही मड़वा के नेचे सुरजन के संगे ब्याह करो, और सुरजन फिर कहा भाव सुरजन ने सिया को मतलब उके सिया के पिताजी ने सुरजन और सिया को अच्छे विदा करो, उके पूरे परिवार के संगे सेठ धर्मदास ने बड़ी धूमधाम से विदा करके और सुरजन ने पूरे परिवार के संगे पृथ्वीपुर जाके होते अपनों उरेन लगो कि अब तई जाके अपन अच्छे रहें तई अपने अपनों राजपाट चला है, और बस जैसे ही जे रंग गए सो बढ़िया अपने अच्छे रहने लगे पृथ्वीपुर में जाके सिया और अपने परिवार संगे सुरजन रहने लगो, तो भैया सुरजन को ऐसो जीवन बदल गओ। अब भैया रो धीरज और भरोसा कर बहुत ही जरूरी है, जब हमें अपनी मंजिल मिला थे ई किसा की जा सीख है, और अभी किसान एक प्रश्न बन रहा है जी को आप और उत्तर अपनी चिट्ठियां डाल के 15 दिना के भीतर पहुंचाऊने हैं भज्जारो, सो प्रश्न हम बता देते हैं कि प्रश्न है कि सुरजन हो बीच गेल में कौन ने धोखा दाओ तू, सुरजन हो बीच गेल में कौन ने धोखा दाओ तू, सो प्रश्न हमने बता दो और अब हम पता बता दी चिट्ठियां डारवे, सो कार्यक्रम हमारा पता है कार्यक्रम बसदेवा कृषि जगत द्वारा केंद्र उपनिदेशक कटंगा आकाशवाणी जबलपुर मध्य प्रदेश और पोस्ट बॉक्स नंबर 14 पिन कोड है को 4820001 सुबह 11 पता सोई और आप और उन्हें सुन लो और प्रश्न सुन लो और चिट्ठियाँ 15 दिना के भीतर जरूर पहुँचा दीजिए, और हमारी हो रही है अब जाबे की बेरा, सो हम बस देवा चल दे रे के अरे मोरे राम सबरे भैया बिन्नु हरों खो के अरे मोरे राम जानकी भौजी की राम राम के अरे मोरे राम, और जय जवान जय किसान।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को है सुर्खियों में, अब आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बस थोड़ा सा इंतजार।

0: रामलक्ष्मी का प्रसारण किया जा रहा था। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8 बजे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पाराशर।
2: नमस्कार। अब उपलब्धियों की बात होती है तो साल दर साल बात होती है। 12 साल एक लंबा समय होता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। एक के बाद एक कई रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। एक रिकॉर्ड जिसकी चर्चा हो रही है वो ये कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी, अब अगर हम बात करें कि कितने समय के लिए और कितने दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर रहे, तो वो रिकॉर्ड भी टूट रहा है। लेकिन सिर्फ बात इन रिकॉर्ड्स की नहीं है, बल्कि बात हो रही है क्या ये नया भारत कुछ विकास लेकर आया, विकसित भारत का नारा जो है वो साकार हुआ, और किसानों के लिए बहुत बात हो रही है क्या किसान वाकई में

0: खुश हैं क्योंकि किसानों से सीधे जो जुड़ाव रखते हैं वो खास मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको मामा भी कहते हैं लोग, अब आप पहचान ही गए होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद आपका।
0: अब मैं आपको मामा जी तो नहीं कहूँ, लेकिन मैं आपको नेता के तौर पर पहले शुरुआत करती हूँ। गर्मी बहुत है, किसान खुश है?
1: किसान खुश रहे इसके लिए सरकार दिन और रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, उनका अभिनंदन। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है और मैं अभी 2 साल से उनके साथ मंत्री हूँ। मेरे जैसे कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला, उनको बहुत बहुत बधाई।
0: अब क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी जी से ही शुरुआत की है, मैं अपने हाथ में आपकी किताब भी लेकर आई थी, अपनापन। ये किताब आपने नरेंद्र मोदी संग आपके अनुभव, तो 2 साल से तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप उनको देख रहे हैं, आप उनके कैबिनेट का हिस्सा हैं, सरकार में एक अहम पद पर हैं आप, लेकिन आपने जो इस किताब में अपनापन बताया है, आजकल अपनापन ये शब्द ही इस्तेमाल होना ऐसा लगता है खत्म हो गया है। कोई रणनीति की बात करता है, भारी भरकम शब्दों की बात होती है, ये अपनापन क्या जुड़ाव है मोदी जी के साथ?
1: भारतीय संस्कृति का मूल है एक ही चेतना हम सब में है, इसलिए दूसरा कोई है ही नहीं, आत्मवत सर्वभूतेषु। और यह भाव मैंने सदैव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में और उनके काम में देखा। अपनापन अपने सहयोगियों के लिए, अपनापन अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनापन देश की संपूर्ण जनता के लिए, अपनापन पीड़ित विश्व मानवता की सेवा के लिए। और इसलिए जब कोविड जैसी महामारी आती है तो वैक्सीन केवल भारत की जनता को नहीं लगती, 100 अलग अलग देशों के लोगों को भी लग जाती है। अगर प्राकृतिक आपदा किसी दुनिया के दूसरे देश में आती है तो सबसे पहले भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने हाथ आगे बढ़ाता है सहायता और सहयोग के लिए। लेकिन ये अपनापन केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, प्राणियों के लिए भी अपनापन। और इसलिए चाहे टाइगर हो चाहे चीता हो, वो सुरक्षित रहे, पुनर्वास हो, इसके प्रयत्न किए जाते हैं। अपनापन पेड़ पौधों के लिए, इसलिए एक पेड़ माँ के नाम जैसा अभियान चलता है, पर्यावरण और प्रकृति को बचाने की कोशिश होती है। अपनापन नदियों के लिए, और इसलिए गंगा जी से लेके बाकी सब नदियों को बचाने का अभियान चलता है। अपनापन पशु पक्षियों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी, नदियों पर्वत पहाड़ों के लिए भी और ग्रह नक्षत्र तारों के लिए भी, चारों तरफ अपनेपन का भाव दिखाई देता है। और वो अपनापन का अनुभव साथ काम करते हुए मैंने स्वयं भी किया है और सबके लिए अपनापन देखा, इसलिए किताब का नाम अपनापन। इससे आत्मीय और कोई शब्द नहीं मिला मुझे।
0: आपने कई जगह ये जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे पल थे जिसमें कई बार आप भावुक हुए और आपने उनको याद किया नरेंद्र मोदी को, जैसे आपने बताया कि 23 के चुनाव के समय तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने सीधे आपको फोन किया और उन्होंने कहा मैं किसी नेता से नहीं, अपने शिवराज से बात कर रहा हूं। ये जो एक कनेक्ट है मोदी जी के साथ, यही वो कनेक्ट है जो जनता के साथ भी महसूस होता है आपको?
1: सबके साथ ही, मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ, ऐसे अनेकों साथी होंगे। जब ऐसा लगा कि उनको अपनेपन की जरूरत है तो उनसे किसी पद के कारण बात नहीं की, स्नेह प्रेम और आत्मीयता से बात की। और जब कांग्रेस के लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि अब तो मामा का श्राद्ध हो जाएगा और अलग अलग तरह की चीज़ें चल रही थी, तब उनने फ़ोन करके कहा न चुनाव की बात, न मुख्यमंत्री से बात, अपने शिवराज से बात। यही तो अपनापन है।
0: शिवराज जी, अब क्योंकि हम 12 साल की बात कर रहे हैं, 12 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि आप इस सरकार की क्या मानते हैं?
1: प्रधानमंत्री जी पूरी शिद्दत से अपना एक एक क्षण देश की और जनता की सेवा में लगा रहे हैं। और अंतर अगर देखना हो तो हम नहीं कहते, जमाना कहता है। एक जमाना वो था जब दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कोई मान सम्मान और स्थान नहीं मिलता था। भारत को, हमारे प्यारे देश को, एक दिन आज का है जब जहाँ देखो पूरे सम्मान के साथ भारत का नाम लिया जाता है। हमारे देश के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। मैं विश्लेषण करूं क्या हुआ है तो घंटों लग जाएंगे, उपलब्धियां कितनी हैं, लेकिन देश आज पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ दुनिया में खड़ा है और कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है भारत।
0: ये तो वैश्विक स्तर की बात हो गई, लेकिन अगर अपने देश में सबसे बड़ी उपलब्धि देखें, जैसे आपको मामा, जो मैंने कहा इसलिए जाना जाता है कि बहनों, माताओं और सबके लिए आपने ऐसी स्कीम, लाडली बहना हो या तमाम स्कीम्स हो, कि पूरे देश ने बाद में उसको फॉलो किया, ऐसी क्या बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की जो एक आपको अगर गिनानी हो?
1: देखिए, एक तो संकट है
0: जिसको इतिहास याद रखेगा,
1: 25 करोड़ देखिए इतिहास को याद रखने वाली भी चीजें कही है, चाहे धारा 370 हो, अयोध्या।

0: हमें राम मंदिर हो, विकास से विरासत के एक नहीं अनेकों काम हो, नक्सलवाद से देश को मुक्त करना हो। कौन सोचता था कि यह दिन आएगा कि बस्तर की गलियों में आज शिक्षा से लेके रोजगार से लेके शांति की बयार बहेगी? कौन कल्पना करता था? अगर वो गुनाऊंगा तो संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन आम जनता की दृष्टि से अगर देखें, बहनों की बात करें तो 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, इज्जत घर जिनका नाम दिया था जनता ने, 10 करोड़ हमारी ऐसी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सम्मिलित है जिनमें से 3 करोड़ हमारी दीदियाँ लखपति दीदी बन गई है, गरीबों के 4 करोड़ से ज़्यादा घर बन चुके हैं। आप किसानों को अगर देखें तो 4 लाख करोड़ से ज़्यादा राशि किसानों के खाते में सीधे डालने का काम हुआ है। मैं अगर गिनाऊंगा तो इतने काम हैं कि समय कम पड़ता है। तो गरीबों का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, हमारे नौजवानों के कल्याण के काम सोचने का मामला हो, गरीब किसान महिला नौजवान सबकी प्रगति और विकास के लिए अनेकों कदम उठे हैं और आप देखेंगे कि जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है।
1: शिवराज जी, आप इतने अनुभवी नेता हैं, ऐसा कुछ लग रहा है कि एक साल के अंदर सरकार गिरने वाली है? LOP तो ऐसा ही मानते हैं राहुल गांधी, उनका कहना है एक साल भी नहीं चलेगी सरकार। बहलाने
0: को गालिब ख्याल अच्छा है।
1: नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
0: ये कौन से ज्ञान चक्षु है उनके पास, दिव्य दृष्टि है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन अभी तो 2029 आने वाला है, 2029 जीतेंगे हम मोदी जी के नेतृत्व में, और 2029 के बाद 2034 जीतेंगे, और 2034 के बाद 2039 भी जीतेंगे। वो ख्याली पकाओ, पकाना बंद करें, मुंगेरी लाल के सपने ना देखें।
1: बच्चों से आपका जुड़ाव काफी ज्यादा है, मामा सब कहते हैं। नीट एग्जाम को लेकर के एक अलग तरीके का विवाद पैदा हुआ है, बात हो रही है कि भाई क्या सरकार सही कर रही है?
0: हम बच्चों के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, कोई अन्याय नहीं होने देंगे। जैसे ही अनियमितता का पता चला, धर्मेंद्र जी ने तत्काल कदम उठाया, परीक्षा निरस्त की गई, दूसरी परीक्षा की तिथि 12 मई के बाद 15 मई को तत्काल घोषित कर दी गई, फीस लौटाई गई, अगली परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, और संपूर्ण व्यवस्थाएं ऐसी बनाने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है कि जिससे कहीं कोई गड़बड़ और दिक्कत ना हो। CBI को मामला दिया गया, अपराधी कई पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। जो सारे कदम उठाए जाने थे वो हर कदम उठाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी भी लगातार सजग और सचेत हैं, पहले भी पेपर लीक होते थे, इतनी तत्परता से कब कार्रवाई होती थी, लेकिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और एक के बाद एक जरूरी कदम उठाए गए।
1: आपने जो बात कही पहले भी पेपर लीक होते थे, तो ये नैरेटिव की लड़ाई में क्या पीछे रह गए हैं कि ये बात सही से सामने नहीं आ पा रही है कि पहले और अब में ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं?
0: ये है कि पहले कुछ नहीं होता था, अब कठोर कार्रवाई हुई है और जहां भी गैप मिला उसको ठीक करने की भरने की कोशिश की गई।
1: मतलब बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा?
0: सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चे देश का भविष्य हैं, बच्चे हमारी सबसे बड़ी दौलत है, किसी भी कीमत पर उनके साथ ना तो अन्याय ना खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, यही सरकार का संकल्प।
1: क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भारत है इसमें गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है? क्योंकि एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है, एक नैरेटिव पूरा सेट करने की कोशिश हो रही है।
0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए और वो कह रहे हैं गरीब गरीब होते जा रहे हैं।
1: नहीं तो हकीकत क्या है, इसका जवाब आप कैसे देंगे ऑपोजिशन को?
0: हकीकत तो यही जनता जान, देखिए हकीकत है पश्चिम बंगाल, हकीकत है बिहार, हकीकत है दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कहीं भी आप देख लीजिए, हर जगह अपवाद इक्का दुक्का छोड़ के भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त कर रही है, NDA शानदार सफलता प्राप्त कर रहा है। इसका अर्थ सीधा ये है कि जनता सरकार के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है।
1: इसमें वोट चोरी का कोई रोल नहीं है?
0: नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वोट चोरी होती तो तमिलनाडु भी जीत जाते।
1: नहीं लेकिन अब देखिए, अब ज्ञानेश कुमार जी को लेकर के भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि वोट चोरी है, और फिर जहां जहां बीजेपी जीत रही है वहां वहां पर विकसित भारत की बात नहीं हो रही, वहां वहां पर नैरेटिव वही आ जाता है, डेमोग्राफिक चेंज हो रही है या फिर हिंदू मुसलमान। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी से यही बात हो रही है।
0: केवल भारत का विकास है और जनता का कल्याण, ये दोनों काम दिन और रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, इसलिए जनता साथ खड़ी है। उपलब्धियां तो मैं कई घंटों आपको गिना सकता हूँ
1: सर, लेकिन नेहरू जी का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, नेहरू जी वो प्रधानमंत्री थे जो कि जब भारत आजाद हुआ स्वतंत्र भारत के बाद की नींव रखी, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, दोनों के इस अंतर को आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए कौन कितने समय प्रधानमंत्री रहा, इससे

0: ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कौन ने कैसा काम किया। एक जमाना था जब भारत को अपनी जनता का पेट भरने के लिए ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। PL 480 जैसा गेहूं, लाल गेहूं, जिसको मतलब जो इंसानों के खाने के लायक ही नहीं था, वो हम इम्पोर्ट करते थे। उस जमाने में विकास की दृष्टि नहीं थी। कई ऐसे फैसले हुए जिनने देश और देश की जनता को बहुत नुकसान पहुंचाया। सिंधु जल समझौता ही अगर हम देखें, आज वो पानी हमारे काम आ रहा है जो बह के पाकिस्तान जाता था। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन 24 घंटे में से भी हर क्षण, हर मिनट और हर सेकंड राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। निरंतर काम राष्ट्रहित सर्वोपरि, जनहित सर्वोपरि, इसी भाव से निरंतर काम चल रहा है। और चाहे वो देश के विकास का काम हो, इंफ्रा का सवाल हो, गरीबों के कल्याण का सवाल हो, किसानों के उत्थान का सवाल हो, नौजवानों के बेहतर भविष्य के निर्माण का सवाल हो, या महिला सशक्तिकरण का मामला हो, आप चारों तरफ देखेंगे कि एक के बाद एक अनेकों निर्णय हो रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं और वो जनता की जिंदगी बदल रहे हैं।
1: शिवराज जी, आप तो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ हर दूसरे दिन आप देश के किसी ना किसी राज्य में होते हैं, अलग अलग जगहों पर। लोग आपसे ये बात करते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या LPG के दाम की बात पूछते हैं क्या लोग?
0: आप तुलनात्मक दृष्टि से देखिए, मिडिल ईस्ट के संकट के बाद दूसरे देशों में कितने दाम बढ़े हैं और हमारे यहाँ कितने दाम बढ़े हैं। जनता बहुत समझदार है, हर परिस्थिति जनता के सामने है। मिडिल ईस्ट के संकट को भी जनता अच्छी तरह से पहचानती और समझती है, और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उससे देश के सामने जो बड़े खतरे और संकट हो सकते थे उनसे निपटने में मदद मिली है, और जनता ये सच जानती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का संकट को पहचानना और पहचान के रास्ते निकालना, अभी जो उन्होंने अपील की पिछले दिनों, और अपील की उन लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया। कोविड से जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निपटे, अगर कई बार मैं सोचता हूँ तो मतलब मन कांप जाता है कि मोदी ना होते तो क्या होता। दो दो वैक्सीन 9 महीने के अंतराल में बनकर लग भी गई, केवल हमारे देशवासियों को नहीं लगी, दुनिया के कई देशों के लोगों को भी लगी। और जिस ढंग से जनता कर्फ्यू, थाली ताली, दीपक जलाओ, आप एक के बाद एक कदम के बारे में सोचिए। जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेनें चली और खाली जो टैंकर थे वो वायुसेना के हवाई जहाजों से वापस भेजे गए। जिस ढंग के कदम उठे, कोई कल्पना करता है क्या? अब कोई तो कोविड में भी आनंद देखे कि जनता परेशान है और वो आनंद ले। अगर विपक्ष की मानसिकता हो तो मैं उनकी बुद्धि को मैं क्या कहूँ। इसलिए हर संकट में अवसर ढूंढना राजनीति के ये गलत है। हर संकट का मुकाबला भारत ने बहुत मजबूती से किया है। परिस्थितियां बनती है तब कुछ निर्णय होते हैं, लेकिन देश लगातार आगे बढ़ता है।
1: मैंने पता किया, मुझे पता लगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी, आपने उसी दिन तुरंत अपने ऑफिस में कर्मचारियों को सबको बुलाकर उनको बताया था कि अब क्या करना है, कैसे प्रधानमंत्री की अपील का एक तरीके से पालन करना है। आपने भी कुछ टिप्स अपने ऑफिस में दे दिए थे लोगों को?
0: तत्काल देखिए, मैं तो उनके हर भाषण को ध्यान से सुनता हूँ। पहली बार जब मैं मंत्री बना उनके नेतृत्व में, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। मैंने तुरंत वहां से उतरते ही लाल किले की प्राचीर से अपने दोनों सचिवों को फोन किया, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, और कहा कि कल सारे कर्मचारी अधिकारी इकट्ठे होंगे, बाकी सब वर्चुअल जुड़ेंगे। और हम सब ने खड़े होकर संकल्प लिया राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए कि हम भी 3 गुना ताकत से काम करेंगे। प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हम पीछे कैसे रहें। उन्होंने इस बार कहा कि सरकार फाइल में नहीं, जनता की लाइफ में दिखनी चाहिए। हमने तुरंत नियम और प्रक्रियाओं के सरलीकरण का एक व्यापक अभियान छेड़ा कि जनता को कोई तकलीफ ना हो किसी भी कीमत पर। जो अभी उनकी अपील आई उस पर तुरंत हमने अमल करते हुए, कैसे हम कार पूलिंग कर सकते हैं,
1: अच्छा,
0: कैसे विदेश यात्रा अनावश्यक बिल्कुल नहीं करनी है, डीजल पेट्रोल कैसे बच सकता, उसके एक एक कदम हमने उठाए जिनमें मैं भी शामिल हूं, और मिलकर उन पर अमल करने की कोशिश की।
1: तो आप भी कार पूल करते हैं अगर बाहर जाते हैं तो?
0: हम बैठक में जाते हैं कैबिनेट की, और दूसरे मंत्री जा रहे हैं तो हम साथ बैठ के जाते हैं। तो काय को हम दूसरी कार ले जाएं, जब पिछली बार बैठक में हम 3 मंत्री एक साथ गए थे।
1: अच्छा, देखिए ये सब खबरें बाहर नहीं आती है, ये पता ही नहीं चलता किसी को,
0: और इसलिए कोशिश करते हैं कि यथासंभव जनता के काम को नुकसान ना पहुंचाते हुए हम जो भी बचत कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें।
1: शिवराज जी, AI नैनो की भी बहुत बात हो रही है, उसको लेकर थोड़ा सा विजन बताइए कि क्या विजन है, और इससे किसानों को किस तरीके से, मतलब अगर कुछ दिक्कत है तो सामना कैसे करें और फायदे क्या पहुंच सकते हैं?
0: देखिए, हमको

0: एग्रीकल्चर के माध्यम से अगर आप बात करते हैं तो तीन बड़े लक्ष्य हमारे, एक देश की खाद्य सुरक्षा में सुनिश्चित करना है, दूसरा पौष्टिक आहार जनता को उपलब्ध कराना है, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण इन दोनों से भी किसान की आजीविका और रोजगार सुनिश्चित करना है। और उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और इसलिए एआई का उपयोग भी हम कैसे हम कर सकते हैं, मैकेनाइजेशन का काम कैसे करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उत्पादन की लागत घटा सकते हैं, इस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। एक ने अनेकों प्रयोग हो रहे हैं, जैसे एआई के माध्यम से ही अगर आप बात करेंगे,
1: जो अलनीनो की हम बात कर रहे हैं,
0: हमने अलनीनो की भी हम बात करें, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। हमने एक भारत विस्तार, हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर कोई भी किसान पूछता है अगर कोई सवाल कि मेरी फसल की पत्ती पीली हो रही है, ऐसे लक्षण है, अब मैं क्या करूं, तो तत्काल उसको जवाब मिलता है कि फलानी बीमारी हो सकती है, आप ये दवाई डालिए। ये एआई का इस्तेमाल है। मोबाइल लेके आप खेत में खड़े हो जाएं तो ये पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन कौन से तत्व है और हमको कितनी खाद डालनी चाहिए, और नहीं तो बिना मतलब के जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी डाले जा रहे हैं, खर्चा भी बढ़ता है, उत्पादन में भी कोई लाभ नहीं होता। तो एआई के ऐसे अनेकों उपयोग है जो निरंतर कर रहे हैं। अभी अलनीनो का संकट दुनिया पे बरकरार है, केवल भारत नहीं, दुनिया के मौसम विज्ञानी ये कह रहे हैं कि अलनीनो के कारण यहाँ बारिश कम हो सकती है। हमने वो 197 डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान की है जहाँ कम बारिश होने की संभावना है, और हमने एआई के माध्यम से उन जिलों को न केवल पहचाना है बल्कि उनका कंटेंजेंसी प्लान बना रहे हैं कि वहाँ अगर ऐसी परिस्थिति बनी है, संभावित है, क्योंकि मौसम के बारे में 100% कोई नहीं कह सकता, संभावित है, तो उनका कंटेंजेंसी प्लान हमने बनाया उन जिलों में कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन से बीज इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी किस्म बेहतर रहेगी। अगर बारिश में तो स्पेल में लंबा गैप हो गया, एक दिन बारिश हुई और फिर 15 दिन बाद 20 दिन बाद बारिश होती है, तब हमको क्या करना चाहिए, तो सारी चीजों का आकलन करके और उसकी एआई की मदद से हम उससे कैसे निपटेंगे, इसका प्लान भी हम तैयार कर रहे हैं। मध्य भारत के कई इलाकों में कम बारिश की संभावना है तो उनमें हम क्या करेंगे, उसका प्लान हमने तैयार किया है। हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी का सहारा हम ले रहे हैं। हर सप्ताह मैं मॉनिटरिंग करता हूं, रोज हमारे अफसर मॉनिटरिंग करते हैं कि आज मानसून कहां पहुंचा, कितना पहुंचेगा, किस गति से बढ़ेगा, कहां कम संभावना है, कहां ज्यादा संभावना है, तो सब चीजों का आकलन करके हम फैसले कर रहे हैं।
1: आपको लगता है शिवराज जी कि बंगाल के इलेक्शन ने ये तुष्टिकरण और ये वोट बैंक की राजनीति को काफी हद तक खत्म किया है?
0: देखिए, सीधा तुष्टिकरण अब ये देश स्वीकार नहीं करेगा, वोट बैंक की राजनीति ये देश स्वीकार नहीं करेगा। आज गर्व के साथ हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक सुपर ह्यूमन है, भारत के लिए भगवान का वरदान है, उनके नेतृत्व में जो हम कर रहे हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, घुसपैठ जैसे मामले हो, प्रगति और विकास और जनता का कल्याण तो है ही, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रहित सर्वोपरि मानते हुए, जो विश्व हित की भी सोचता हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है, ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है।
1: शिवराज जी, बहुत बेबाक तरीके से आपने बात की। एक ऐसी बात नरेंद्र मोदी के बारे में, क्योंकि हम 12 सालों पर बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आप हमेशा उनसे सीखते हैं और उनकी बात को याद रखते हैं, क्या वो एक स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, या सॉफ्ट हार्टेड हैं, क्या हैं?
0: केवल एक ही घटना में सुनाऊंगा। एक बार मैंने उनके सामने, मैं और वो दोनों थे, उनके कामों की प्रशंसा की कि ये बहुत अच्छा हुआ, देश उसको बहुत पसंद करता और हमारे मन में भी आपके प्रति श्रद्धा का इसलिए भाव है, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, मैं प्रशंसा से नहीं, मैं काम से प्रसन्न होता हूँ, जो काम करेगा उसको कंधों पर बैठा के मैं नाच सकता हूँ, लेकिन प्रशंसा मैं नहीं सुनता, केवल काम पसंद करता हूँ। और वो चीज़ मुझे हमेशा ध्यान में रहती है, काम करो, काम करो, काम करो, चलते रहो, चरे वेती चरे वेती चरे वेती, अपने देश के लिए काम करते रहो, अपनी जनता के लिए काम करते रहो, इसी में मानव जीवन की सार्थकता है।
1: बहुत आपने एक हम सबको भी एक सीख दी चरैवेती चरैवेती के इस मंत्र के साथ, और यही मंत्र होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ इस खास बातचीत।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पाराशर। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अब सुनिए संस्कृति मंत्रालय के सचिव

0: विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत।
1: छब्बीस मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली। उस समय उन्होंने सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि एक नए भारत के संकल्प को नई ऊर्जा दी और तब से लेकर के पिछले 12 सालों में चाहे विकास की बात करें या सुशासन की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करें या फिर गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत की बात करें, लगातार मोदी सरकार पूरे देश में काम कर रही है। और गुलामी की मानसिकता की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, कैसे आगे बढ़ रही है पूरी आधुनिकता के साथ में, ये भी हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत की संस्कृति अपना परचम लहरा रही है और केंद्र सरकार का बराबर साथ दे रही है। केंद्र सरकार का मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय, तो खास मेहमान है संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में।
2: धन्यवाद।
1: भारत किस तरीके से जो उसकी संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो उसका पुनः जागरण हो रहा है। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत, तो उसको संस्कृति मंत्रालय कैसे आगे लेके जा रहा है?
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिया वो यह है कि भारत की जो सभ्यता है वो युगे युगीन है, वो युगों युगों से चली आई है और वो अटूट है। बीच में ऐसे कालखंड आए जिन कालखंडों में इस अटूट सभ्यता को तोड़ने की कोशिश की गई या जो इस सभ्यता के स्मारक थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई, पर इन सब प्रयासों के बाद भी जो हमारी युगे युगीन भारत की सभ्यता है वो अनावृत चलती रही। इस अध्याय को पुनः स्थापित करने के लिए और जो गुलामी का कालखंड रहा उसकी याद को समाप्त करने के लिए या उसकी याद को एक ऐसे पृष्ठभूमि में रखने के लिए जिससे कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमारी ज्ञान परंपराएं, उनको हम पुनः स्थापित कर पाएं और हमारे जो नागरिक हैं, खासकर जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनके समक्ष ला पाएं, उसके लिए बहुत सारे कदम भारत सरकार ने उठाए। बहुत सारे जो हमने काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उसमें कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जो कॉलोनियल समय में भारत की सेक्रेटेरिएट थी और जहाँ से भारत के राज्य का संचालन अंग्रेज करते थे, उस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब एक नया म्यूजियम बनाने की घोषणा की जिसपे हम काम कर रहे हैं और वो भी म्यूजियम युगे युगीन भारत के नाम से। भारत की जो ज्ञान परंपरा है, अगर आप लॉर्ड मैकले ने जब भारत की एजुकेशन पॉलिसी बनाई कॉलोनियल के समय में, उन्होंने कहा कि यूरोप की किसी भी लाइब्रेरी में जो एक शेल्फ की किताबें हैं वो भारत की पूरी ज्ञान परंपरा से ज़्यादा बेहतर हैं। उसको जो वो भावना भारत में लाने की कोशिश की गई कॉलोनियल राज द्वारा, उसको मिटाने के लिए और भारत की जो अपनी ज्ञान परंपरा है उसको पूरे विश्व के सामने लाने के लिए और भारत के नागरिकों के सामने लाने के लिए ज्ञान भारतम का काम प्रारंभ हुआ है, जिसमें जो हमारी हस्तलिखित मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारी पांडुलिपियां हैं, जो विभिन्न विषयों पे हैं, खासकर जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे हैं, वो चाहे मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हीलिंग सिस्टम्स हो, मेडिसिन हो, जो चिकित्सा के साथ साथ जो सर्जरी की डेवलपमेंट थी उसके ऊपर जो हमारा काम था, उस सब को अब हम पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं, एक नेशनल रिपोजिटरी बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल थे, हमने उनको पुनः निर्मित करते रहे, बार बार तोड़ते रहे और हम निर्मित करते रहे, इसको भी भारत की याद में दोबारा भारत के नागरिकों के समक्ष लाने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हम मना रहे हैं।
1: सर, आपने युवा पीढ़ी की बात कही, जहाँ किसी भी देश का हम कहते भी हैं कि अगर कोई भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसका जो आधार होते हैं उस देश के युवा होते हैं। और जैसा कि हमने किताबों में भी पढ़ा है कि चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी देश को खत्म करना है तो उसकी संस्कृति खत्म कर दीजिए, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपने भी जिक्र करा शिक्षा में भी बदलाव हो रहा है, और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि जब पूरा विश्व समझने की कोशिश कर रहा था कि सभ्यता होती क्या है, उस वक्त हम सभ्यता के धरातल पर दौड़ रहे थे और उसको भी संस्कृति मंत्रालय अब आगे लेके जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
2: भारत की ज्ञान परंपरा का एक बड़ा सेंटर नालंदा विश्वविद्यालय था, जो प्राचीनतम, जो विश्व में अकेला ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय था जिसके साथ पश्चिम भारत में तक्षशिला था। नालंदा की जो परंपरा थी उसको इसी कालखंड में जब भारत पे हमारे पे अतिक्रमण हुए, हमारे पे बहुत सारे आक्रमण हुए, उस समय नालंदा पे भी आक्रमण हुआ, उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसका पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास हुआ, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब नालंदा की जो ज्ञान परंपरा है उसका पूरा रिवाइवल हुआ है। वहाँ पे नालंदा विहार विश्वविद्यालय चल रहा है जिसमें जो बुद्धिस्ट और पाली लैंग्वेज और पोटी लैंग्वेज का जो लर्निंग है वो होता है, इतिहास, संस्कृत और साथ में जो सांस्कृतिक धरोहर नालंदा की थी, जो ज्ञान परंपराएं थी उसके ऊपर वहाँ पे शिक्षण का कार्य होता है, उस पर रिसर्च का कार्य होता है। उसी तरह जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन को साथ जोड़ के एक बहुत बड़ा कार्य इस सरकार द्वारा इस समय में किया गया है।
1: आपने अभी जिक्र किया राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है या जो हमारे राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता था, मतलब आज की जेंजी की अगर मैं बात करूँ तो वो ज्यादा जानते हैं, रादर हम अपनी बात करें अपने समय में हमें नहीं पता था, तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके से अगर ये दोबारा निर्माण किया जा रहा है या फिर जो स्थानों के नाम राष्ट्रीय सेनानियों के नाम पर रखे जा रहे हैं, क्या उससे कोई बदलाव आएगा और एक जो सभ्यता है वो पुनः जागृत होगी?
2: बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब कॉलोनियल शासन था तो अंग्रेजों के जो उस समय के प्रशासक थे या उस समय के गवर्नर जनरल थे या वाइसरॉय थे, उनके नाम पे बहुत सारे भारतीय स्थानों के नाम रखे गए, जैसे पोर्ट ब्लेयर था जो अब श्री विजयपुरम है, जो वहाँ पे द्वीप थे वो अब नेताजी द्वीप के नेताजी के नाम से द्वीप हुआ, जो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनमें कॉलोनियल लिगेसी थी उनको परिवर्तन करके हमने अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको पुनर्जागृत किया है। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक स्थल हैं या जो पुरातत्व स्थल हैं उनको हम अगर विकसित करते हैं और उनके ऊपर हम विजिटर एम्यूनिटीज अच्छे से डेवलप करते हैं, और खासकर वहाँ के जो इंटरप्रिटेशन सेंटर हैं और वहाँ पे अगर हम ऑडियो विजुअल गाइड के साथ ARVR एक्सपीरियंस क्रिएट करके हम पूरा नैरेटिव जो वहाँ पे जो हमारे यूथ हैं, हमारे नए पीढ़ी के लोग हैं वो जाते हैं, तब उनको वो समझ में आएगा कि वास्तव में इतिहास में इन स्थानों का क्या महत्व था और क्या हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी सभ्यता की ऊंचाई थी प्राचीन समय में। जैसे लोथल में एक बहुत बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम स्थापित हो रहा है, ये लोथल 5000 वर्ष पुरानी साइट है। 5000 वर्ष पहले यूरोप अमेरिका में तो कुछ भी नहीं था, परंतु भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी और उस सभ्यता का संपर्क था विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ, और डॉकयार्ड था, पूरा मैरीटाइम सिस्टम था, वेयरहाउसेस थे, ट्रेड का सिस्टम था, सील्स थी, करेंसी थी, तो एक पूरी विकसित सभ्यता थी जिसको उजागर अगर हम अच्छे से प्रॉपरली इन साइट्स को डेवलप करके करते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी को उसकी उसका महत्व और उसकी ज्ञान की जो जो जो ज्ञान का ज्ञान की प्राप्ति होगी उससे ना केवल नेशनल प्राइड डेवलप होगा बल्कि जो एक पूरा माइंडसेट है वो भारत के नागरिकों का बदलेगा।
1: एक सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, खासकर हमारी जेन जीज के लिए, क्योंकि आपने दोनों दौर देखे हैं सर। आपने वो दौर भी देखा जब ये गुलामी की जो मानसिकता थी वो पूरी तरीके से छाई हुई थी और अपनी ही सभ्यता, अपनी ही संस्कृति, अपने ही इतिहास से हम बच्चे थे, और आज जब आप इस दौर में है संस्कृति मंत्रालय के सचिव बनकर जब आप विदेशों में जाते हैं, कई कार्यक्रम करते हैं, तो और खास कर जब भारत की वो पुरानी धरोहर हैं, वो मूर्तियाँ, वो अमूल्य चीजें आप जब भारत वापस लेकर के आते हैं तो कैसा महसूस होता है, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
2: देखिए, मिक्स्ड भावना होती है। जब विदेश में जाते हैं तो कई बार हमें दिखता है कि भारत की धरोहरें उन्होंने अपने म्यूजियम्स में रखी हुई हैं और वो प्राउडली उनको डिस्प्ले करते हैं, तो मन में ये भी आता है कि ये धरोहर भारत की है और भारत के पास वापस आनी चाहिए। पर जब हमें कुछ हिस्सा धरोहर का हमें वापस मिलता है और हम वापस भारत में लेके आते हैं तो एक बहुत गर्व की भावना भी होती है, क्योंकि ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने बहुत निश्चय करके इस मूवमेंट को स्टार्ट किया है। बट ये शुरुआत है, मेरा मानना है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको लीड कर रहे हैं और जिस तरह से पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है इसमें ना केवल भारत का कल्चर मंत्रालय या संस्कृति

0: मंत्रालय काम करता है, बल्कि भारत के सभी मिशंस, सारे एम्बेसीज, सारे हाई कमीशंस, हमारे हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स पूरे विश्व भर में इस कैंपेन का हिस्सा बन के इस काम को कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो हम करते जा रहे हैं और जितनी हमें सफलता प्राप्त हो रही है, उससे पूरे भारतवासियों को उस पर गर्व होगा। पर मैं ये भी मानता हूँ कि और भी काम होना है, उस काम के लिए हमें और शक्ति हमारा देश देगा, हमारे नागरिक देंगे। और मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि जो भारत की रिस्पेक्ट और भारत की वॉइस जो आज सुनी जा रही है विश्व में, वो पहले कभी नहीं थी। जैसे आपने कहा कि मैंने पूर्व का दौर भी देखा है, मैं इंटरनेशनल डेलीगेशंस में पूर्व में भी जाता रहा हूँ और अब भी मैं इंटरनेशनल डेलीगेशंस में जाता हूँ, पर आज जो हमारी वॉइस है और जो जिस तरह से भारत को बहुत गंभीरता से सुना जाता है और जहाँ भारत कोई स्टैंड लेता है तो हमेशा हमारे को साथी मिलते हैं, क्योंकि हमारी बात नॉर्मली हम वैसी बात करते हैं जो विश्व के कल्याण की हो, जो विश्व को साथ लेके चलने की हो, और जब हम वो बात करते हैं तो हमारे को साथ भी मिलता है और हमें सफलता भी मिलती है।
1: सर, एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों और खासकर हमारे जेन जी दर्शकों से, जबकि भारत में महिलाओं का वही सम्मान जो उन्हें दिया जाता था, महिलाओं के लिए सामने आ रहा है वही संस्कृति, आज हमारी दीपावली का त्यौहार पूरा विश्व मनाने जा रहा है, तमाम बदलाव आपने लेकर के आए केंद्र सरकार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, बहुत सारे प्रयास हुए थे जिनको उस समय सफलता नहीं मिली। जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में एक सोसाइटी बनी थी, इट वॉज, उसको कहा गया था ग्रेटर इंडिया सोसाइटी। उसका मतलब ये था, जो करीब 1926 में कोलकाता में बनी थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो भारत से विश्व को गया उसको हम विश्व को बताएं। तो शुरुआत हुई, अब हम उसको बहुत अच्छे से विश्व को बता पा रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने गर्व से अपना सीना ताना सिर ऊंचा किया और अपनी बात पूरे विश्व में कहना शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और आज जब हम कह रहे हैं, पूरा विश्व उसको सुन भी रहा है और उसको मान भी रहा है, और इसको हम सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं और इसको रिकग्निशन के लिए, ताकि ये ऐसा नहीं हो कि हम कहें और शुरू में माना जाए उसका इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं हो, उसकी हम इंस्क्रिप्शन भी यूनेस्को में कराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो पूरा जो जो प्रक्रिया है, पूरा सेटअप है, वो ऐसा है कि ना केवल हम किसी चीज़ को एस्टैब्लिश करें, बल्कि उसको एस्टैब्लिश करके हम इस तरह से प्रस्तुत करें कि पूरा विश्व उसको रिकग्नाइज करे और रिकग्नाइज करके उसको डॉक्यूमेंट करे और फाइनली वो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में विश्व में मान्यता प्राप्त करे। उस और हम बहुत अच्छे से और बहुत सिस्टमैटिकली हम काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी।
1: तो हम बात कर रहे थे अब संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी से, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: मीडिया वेब पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:35 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं यस बॉस फिल्म से। इसे आवाज दी है अभिजीत ने, जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा और संगीत से सजाया जतिन ललित ने।

श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। आपके मैसेज हमारे गीत कार्यक्रम आपके लिए शुक्रवार रात 9:30 से रात्रि 10 तक आपके अपने प्राइमरी चैनल पर प्रसारित किया जाता है। इस बार की 5 फिल्में जिनके लिए आपको व्हाट्सएप संदेश भेजना है शुक्रवार शाम 4 तक। फिल्मों के नाम हैं गीत, गीत के बोल हैं जिसके सपने रोज हमें आते रहे, फिल्म ईश्वर, गीत के बोल हैं आगे सुख तो पीछे दुख, फिल्म थोड़ी सी बेवफाई, गीत के बोल हैं आंखों में हमने आपके, कुली नंबर 1, गीत के बोल हैं आ जाना, फिल्म सपने, गीत के बोल हैं आवारा भवरे। हमारा मोबाइल नंबर है 9425149342। मोबाइल नंबर एक बार पुनः नोट करें 9425149342। आपके संदेश हमें शाम 4 तक मिल जाने चाहिए। सूचना समाप्त हुई।

0: फिल्म पीसे प्यार है।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता

0: की बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the governing council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज MT सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
2: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को MT सेट्टेबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर MT जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
5: The visit will provide an opportunity.
6: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
5: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
2: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद

0: ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
1: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
3: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है, जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
2: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
4: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है, जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
2: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

Countrywide. मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है धारावाहिक हंसना मना है का भाग 5। आलेख हेमंत कुलकर्णी का है, परिकल्पना विमल कांत येंडे की, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर वैजनाथ गौतम।

0: हाँ तो पुष्पा औलाद करो और किस्सा शुरू करो।
1: तो भैया बहुत पुरानी बात है कि एक नगर में धुंधपाल नाम को राजा रहतु, जैसो नाम सो बैसो गुण। राज काज कछु ने देखत तू, सवाई काम नौकरों चाकरों के भरोसे चलत तू, नौकर के चाकर चाकर के कुकर हो रहे। सो राज में अंधेर गर्दी मची थी, कौन आऊ देखन सो ननवारो हतो ही ने। अब राजा ही ऐसे सो प्रजा कैसी रहे। सो राजा के भैया 3 बीसी रानिये हती और सैकड़ा भर लो लड़कोर हती, और इतने लोग सो महलन को खर्चा बहुत था। तो हराई रानी के नौकर चाकर अलग अलग हते,
2: बे सब अपने अपने मालकन को खर्चा जुटावे के लाने मनमानी लूट खसोट करत रहते। न को पूछन वारो और न को सुनन वारो।
1: सो भैया ज्याय देखो उतई अंधेर ही अंधेर।
2: ओई नगर में एक लालाचू रहते ठलुआ भैया, ने आगे नात न पीछू पड़ा। सो उनने सोची
3: पीठ के लाले कछु करो चाहिए। राज में ढील पुल तो चलो ही रही है, अपन सोई बहती गंगा में हाथ धो ले है।
1: सो बस भैया फिन का आए, उनने कचेरी के सामू एक बरिया के तरह दरी बिछा के बैठक जमा लई। सामू एक संदूक धरी और कछु कागज पत्तर धल्ले सोई, और बे अपने खो बरिया बारे मुंशी कहन लगी।
2: यही नाव से उनने अपनी मुहर सोई बनवा ली। जब भी कोनाउ कचेरी में कछु काम की अर्जी लगावे जाए तो बे हुए टेर के उकी अर्जी पे अपनी मुहर लगा देवे और फीस 1 रुपया ले लेवे। बे कहे
4: बरिया वाले मुंशी की मुहर लगे बिना कोनो कागज की सुनवाई नहीं होत। बरिया वाले मुंशी की मुहर लगवावो जरूरी है। हाँ।
1: सो भैया कछु देना ने सही होत करत बरिया वाले मुंशी की मुहर चल पड़ी। उकी मोहर लगवाबू जरूरी समझो जान लगो। जोन कागज पे बरिया वाले मुंशी की मोहर ने लगे और ने होए ओ पे तो ऊ कागज ऊपर से लौटा दो जात तू। सो ऊपर से हो काम हो जात तू के कागज अधूरा है, ई पे बरिया वाले मुंशी की मोहर नैया, सो लगवाई जावे।
2: अब भैया का है के लाला जू की तो वारा 5 उंगरिया घी में बे जे कागज खो जितो कीमती समझे ऊ की फीस उत्तई लेन लगे।
1: एक दिना का भाओ के एक बड़े हाकम खो खत्म काम से ओई दिना छुट्टी पे जाने तू। सो ऊने छुट्टी की अर्जी बजीर खो दई पे ऊ पे बरिया वारे मुंशी की मोहन ने लगी थी। सो बजीर ने बार जी लौटात भाई कई,
5: अरे ई पे तो बरिया बारे मुंशी जू की मोहर नहीं लगी। सो पहला मोहर लगवा के ले आओ, नहीं तो छुट्टी मंजूर नहीं हुई है। मोहर लगबो जरूरी है, नहीं तो अर्जी आगू नहीं बढ़ सकत।
2: अब भैया दिन डूबे बारो तो रात आई खो उनको जाबो सुई जरूरी। तो लाचार हाकम बरिया बारे मुंशी जू को घर ढूंढा ढूंढा तू के तो पहुंच गयो। और उनने कही
6: मुंशी जी जय गोपाल, जय छुट्टी की अर्जी के कागज पे अपनी मोहर लगा भी कृपा करो मुंशी जी, छुट्टी पे जाने हमें।
3: अरे वाह रात के कऊ मोहर लगाई जात है। मोहर तो ओतई बरिया तरे लगत का समझे है।
1: हाकम ने सोची के जब बखत परे बांका तो गधे से कहो काका। सो भैया उने आरजू में नत करके केसौ करके सो को पत्ता जैसा ही खिसकाओ नेचे से। सो लाला जू ने झटाई से मोहर लगा दियो गोड़े आके वो रोपजा
3: सो को पत्ता
1: अपनी आंटी में खोस लो।
2: बताओ
1: पे हाकम खो तो बात आस गई थी।
2: अब हाकम जैसा ही छुट्टी से लौटो तो उन्हें छानबीन

0: करी के जो मुंशी को आए की के हुकम से जो मुहर लगाऊत
1: राजा के सामू रिपोर्ट भाई। उ रिपोर्ट में लिखी के जो सरकार के हुकम के बिना सब सरकारी कागदन पे अपनी मुहर लगाते है ये हटाओ जाए और हेसो धोखाधड़ी के जुर्म में सजा दी जाए। सो राजा ने सुन के अपना फैसला सुनाओ।
2: बढ़िया वाले मुंशी की मुहर सवरे कागदन पे लगी देखी जात है। बहुत दिनन से ऐसो होत आ रहो है इसे उए नहीं हटाओ जा सकत। उके लाने बढ़िया तरह बैठवे काजे एक बंगला बनवा दो जाए।
0: आप तो भैया लाला जू की चका चक, काम तो बिल्कुल पूरो पक्को होगा।
1: ऐसा ही भैया ऊ नगर में एक गड़रिया रेत तू ऊ के ते सेकरन भेर वो करिए ती। जब जब ऊ उनमें से कछु बेचवे करवे बाजार में लेवा जाए तो हाकम को अमला एक एक भीड़ बुकरिया अपनी लाने ले जाए। कीमत देवे के नाम पे ठन ठन गोपाल सब आई फोकट को उड़ाए खाए।
0: अब ई तरह से ऊ की सबरी भेड़े और बुकरिया सरकारी अमला खा गो और वे एक फूटी कुआड़ी लोको उन्हें नहीं दाई बेचारो हाथ मलत रह गो। का कर सकत तो जबर के आंग की चले और तला पे रह के मंगरा से कुबेर करे।
1: नगर में एक ठाकुर सुई रहती जमीन जांगा अचलपुर के राजा। एक टूटी टपरिया भर उनकी जायदाद हती। उनको हाल तो के नंगे सपरे का और निचोए का पे हाथी सांसो कतवारे तेकरम भिड़ा के अपनी गुजर कर लेते।
0: एक बेर उन्हें खर्चा की तंगी आई सो उन्हें टपरिया पे फरे भय आठ कुमड़ा टोरे और पिछोरा में बांध के बाजार बेच भी ले गए।
1: बाजार में पहुंचता ही जैसे ही उन्हें पिछोरा छोड़ के कुमरा निकारे ही थे के कोटवार पटवारी जमींदार चुंगीवार वो सिपाही सब आई आठ की आठ ही अमला बारी या धमकी और उन्होंने पिछोरा पैसे ये के कुमरा उठाओ और चलते बने। जैसे ही ठाकुर ने उन्हें जात देखो सो रोक के बोलू
3: अरे काय भैया जो का करत है अबे मैं छोड़ के धरते ही जात हूँ और अपन और
4: ठीक है ठीक है ले आए हो जानत नहीं है का है सरकारी बाजार में बेच भी ले आए हो तो का दस्तूर न दे हो है दस्तूर लेबे को हमारों को हक है का समझे बड़े आए है।
1: ठाकुर के कुमड़ा ले लें के सब चलते बने भैया। ठाकुर उनन को मुंह देखता ही रह गो कुमड़ा ये कौने बचो तो बेच वेखो उनन के सामू बहस कर वे की अब उमे ताकत ने हती पिछोरा अकेलो बिछो रे गो तनक दूरा ये खसुआ ठाणो वो खसुआ ठाणो ठाणो ताकत रहो। सो ऊ सोई ठाकुर के यंगरे पहुंचो और बिछो पिछोरा उन्हें उठाओ और अपने कंधा पे डाल लो।

0: আরে বারে, আয় পেছরা বারে। হ্যাঁ, আরে জান নাই কা, হায় হায়।
1: अरे का भैया तुम को आओ है। अरे कोमड़ा तो बेसबरी अमला बारे ले गए, अब जो हमाओ पे छोरा।
0: अरे हाय हाय, अरे बड़े हाय पे छोरा बारे। हैं, हमें नहीं जानत का है।
1: अरे जो तो ठीक है, पे छोरा तो मोरू आए, ये उठा के इकते हैं क्या ले जात।
0: अरे हाय हाय ठाकुर, मैं ड्योड़ी का सारो कहाओ। अरे हाय हाय, समझ में आई का, जब पे छोरा तो आप मोरो है।
2: इतनी क्या के वो खसुआ।

कूले मटकाउत थपोड़ी बजाउत चंपत हो गौ। बेचारे ठाकुर रेगा और निमुआ नुआन सो चौंक है।

0: मड़ा बेच बे
1: पे
0: ऊंसा यहाँ झोला उत घरे आ गए कछु पैसा धेला हाथ ही नहीं लगो गांठ की गठिया अंदाई सो अलग
2: उदना ठाकुर खो घर में खेबे लो को ठिकानो ने हाथो दिन बुढ़ाई गाओ तो लौटती बेरा सुबह क्या और नहीं जा पाए रात को भूको यही पार रहे बेचारे पे नींद क्या धारी थी आवे आते तो भूख के मारे सुड रही थी सुबह परे परे सोचन लगे
3: अदा धुंध के राज में सांचाऊ कितो अंधेर मचो है को सुनबे बारो नहीं है ई बेरा पे मोह पे जोन बीती सो बीती पे अब मैं सोई धुंध पाल के राज में काय ने कछु लाभ उठाऊ
0: और भैया उनने परे परे मन में जोगत बैठा लई बस फिन का है सकारे उठी मोहा धो तेल कंगी करी पतिये पारी और अच्छे मूछन पे ताव दियत नेंगठाड़ी भाई
2: उनने एक ठैया लम्बी नकरिया को डेउआ बनवाओ फिन हुए कंधा पे धर के बीच बाजार में जाठाड़ी भाई गेरव नजर दोहराई फिर एक कोदाई से हर दुकान पे जाके वो डेउआ खो बोड़ात भाई गेहूं चार दार भरी और हुए अपने खलता में डालने लगे
0: सुज्जा देख के एक दुकानदार ने बूझी कि काय भैया जो काया कर रहे हो सो ठाकुर साहब बोल पारे
3: भैया साले रा को डो और बात न पूछे को
2: जोन दुकानदार कछु पूछे सो बस ठाकुर साहब इत्ती कह के सामान उठाए और अपने खलता में धरे और आंगू बढ़ चले
3: अरे साले रा को डो और बात न पूछे को
0: सो भैया वे गाउत गाउती ऐसे आंगू बढ़ा जावे और ई तरह से वे रोजा ही सब चीज बस्तन की ओगाओ नहीं करन लगे कछु आई देनन में ठाकुर साहब को घर चीज बसत से भर गओ अब उन्हें कछु बात की कमी नहीं रही बाजार में कबाऊ नाओ कोनाऊ दुकानदार टकरा जाए और उनसे बूझो तो वे बस इतना ही कहे
3: अरे साले रा को डो बात न पूछे को
2: आपका भैया ठाकुर साहब के तो दिन ही फिर गए रोज मन मन को बनाए रोज मन मन को खाए मूछन पे ताव दे और शान स्वागत करे अब उनकी तो पांच उंगलियां घी में थी
0: और मुंडी कढ़ाइया में सो ठाकुर साहब के पड़ोसई में भैया एक बोपा बाई रहती देखवे सुनवे में खूबसूरत जनी अच्छी गठीली बदन की ऐसी बनी ठनी रहे भाई ऐसी बढ़िया दिखाती खूबसूरत के का बताए घर में अकेली रहती वे बाल बच्चों तो हतो ही ने ठाकुर जू से वो को मीर होगा भैया अब तो भैया चाय जब बाओ नहीं के घरे बैठी रहती हंसी मजाक करे ठिटोली करे नाय माय की बातें करे और ठाकुर साहब को कवाऊ कवाऊ अपनी ही की पीरा सोई सुना उतरे
2: उन्हें देखो क्या ठाकुर साहब के तो कोना तरह की कमी नहीं है उनकी तो चांदी चटक पड़ी सो मैं सोई काय सपनान सू को खाऊं उन्हीं से कहत हो जाके बाईती सोच के पहुंच गई ठाकुर साहब की टपरिया में और उनसे कहन लगी ठाकुर लला देवा ने तो तुम्हारे दिन फेर दे अब कछु हमारी सोई फिकर करो
3: अच्छा
2: कम ऐसी डरी रहो
3: अरे कैसी बात करती भौजी राम राम राम तुम और
2: तो फिर कौन हिलने से हमें सुई लगा दियो जन्म जन्म भर तुम्हारे जस गाँव में
3: अरे भौजी मैं का बड़ी बात है अरे धुंधपाल को राजा जो तो कोई पूछवे ताचो।

0: अरे उनैया,
1: कहो तो तुम्हें रानी बना दूं।
2: अरे लाला की बात है। रानी और मैं कैसी कह तो लाला, हम ही मिले तुम्हें बुलिया देखो है।
1: अरे नहीं भौजी, मैं बोलियात नहीं हूँ, सांची आई कहत। अब ते मुए ऊंसा ही नहीं समझ। अरे ते हाँ भर तो के फिन देख।
2: अरे वाह लाला, तो फिर नेकी और पूछ पूछ।
3: इत्ती के बाद मुस्कियात भाई अपनी घरे चली गई। ठाकुर साहब ने अपनो डेउआ उठाओ और कंधा पे धर के रनवास कुदाई चल पड़े। उते जाके उनने घूम फिर के देखो परखो।
1: भैया साले राको डो और बात ने पूछे को।
3: राजा की 3 बीसी रानिये हती।
4: 3 बीसी
3: हाओ
4: साठ
3: हाओ, और हर को के अगल अगल रहवास हती।
2: हाँ।
3: कछु रानिये मर गई थी सो उनन की बकरी खाली डरी थी।
2: हाओ
3: उमे से एक बकरी जोन तना साजी सी लगी, वे ठाकुर साहब ने चुन लाओ।
2: हाओ।
3: और पाल की बारे कहारन से कही,
1: अरे तुम और क्या चले जात हैं? अरे मैं तुम्हारा उनको कब से ढूंढत फिर रहा हूँ। अरे राजा से कह दे हो तो खलरिया उधर जे है, ऐसे ही समझात का?
5: अरे मालक कैसी बात कर रहे, कहो का बात, हुक्म करो अपन तो।
1: हुक्म का करो, तुम्हारा उनको पता नहीं है का कि पोपा बाई को लेवे चलने हैं। झट्टी करो, पालकी लियाओ और चलो।
3: पालकी वारे पालकी लेके आ गए। ऐसा ही फिन बाजे वारन से भी कही उनने,
1: जल्दी बाजे लेके आओ नहीं तर तुम्हारी खैर नहीं। अरे देख नहीं रहे, देरी हो रही है, पोपा बाई को लेवे जाने हैं। चलो ले आओ और बजाओ बाजे और चलो।
3: भैया ऐसा ही से ठाकुर साहब गाजे बाजे से उमदा पालकी लेके पोपा बाई के घरे पहुंचे और तुरत फुरत वे पालकी में बैठरवा के रनवास के महलन को दाई चल पड़े। ठाकुर आंगू आंगू कंधा पे डे हुआ धरे और चले जा रहे थे और कहा जाते।
1: हटो हटो हटो, गेल छोड़ो, रानी पोपा बाई की सवारी आ रही है, हटो हटो। भैया साले राको डो और बात ने पूछे को।
3: राजमहल में पहुंच के रनवास वारे महलन में जोन खाली परी बखरी थी सो होते पोपा बाई को उतार दो। नौकर चाकर सब लगा दे। राजा के भंडारी से जाके रसद को सुबी तो करवा दोगा। पोपा बाई की बकरी को काम दूसरी रानियन के घाई चलन लगो। सुभैया को खोन जा खबर ने आई के पता तो करें कि जे को आए क्या ऐसे आई हैं। हाओ पोपा बाई रानी बनी अपनी रेल लगी रनवास में। ठाकुर साहब उनके कामदार बन गए और बकरी के खर्चा के लाने एक इलाके से तहसील वसूली सोई करन लगी। अब वजीर मुख्तियार समझे के पोपा बाई सोई राजा जू की एक रानी आए सो ऊ की सबई मांगे पूरी होन लगी। इते लो के ऊ को हुकम सोई चलन लगो। की मजाल के ऊ के हुकम को टार दे। तो भैया ऐसी अंधेर गर्दी मची के कछु काता ही नहीं बना। जा बात कछु जनन को भोता ही आसी के पोपा बाई ने जो काम मचा रखो। सो ए सोच के बूझ के कछु जनन ने पोपा बाई के बारे में राजा जी से कहा सुनी कर दई पे उए सुनो अन सुनू कर दोगा। सो ई तरह से पोपा बाई के दिन चैन से कटन लगी और उन्हें उते रेत रेत बहुत साल बीत गई सुख से रेन लगी।
2: एक दिना की बात है,
3: पोपा बाई को खबर मिली के ऊ को ढोसर मार गओ।

अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक हंसना मना है का भाग पांचवा। आरेख हेमंत कुलकर्णी का था, परिकल्पना विमल कांत येंडे की, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर वैजनाथ गौतम। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है।

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए सुभाष दीक्षित का वायलिन पर बजाया राग केदार। तबले पर संगत कर रहे हैं इफ्तिखार हुसैन खान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुभाष दीक्षित का वायलिन पर बजाया राग केदार। तबले पर संगत कर रहे थे इफ्तिखार हुसैन खान। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है।

श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। आपके मैसेज हमारे गीत कार्यक्रम आपके लिए शुक्रवार रात 9:30 से रात्रि 10 तक आपके अपने प्राइमरी चैनल पर प्रसारित किया जाता है। इस बार की 5 फिल्में जिनके लिए आपको व्हाट्सएप संदेश भेजना है शुक्रवार शाम 4 तक। फिल्में हैं, फिल्म का नाम है गीत के बोल हैं जिसके सपने रोज हमें आते रहे। महेंद्र कपूर लता मंगेशकर का स्वर है। फिल्म ईश्वर, गीत के बोल हैं आगे सुख तो पीछे दुख। फिल्म थोड़ी सी बेवफाई, गीत के बोल हैं आंखों में हमने आपके। फिल्म कुली नंबर 1 आ जाना, गीत के बोल हैं। फिल्म सपने, गीत के बोल हैं आवारे भवरे। हमारा मोबाइल नंबर है 9425149342। आपके संदेश हमें शाम 4 तक मिल जाने चाहिए। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कल शुक्रवार को रात 10 बजे आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित अजय पोहनकर का गाया राग बागेश्वरी में ख्याल विलंबित। रात 10:30 पर होगा फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। रात 9:30 पर कल आप सुनेंगे आपके मैसेज आपके गीत।

मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। मन भावन सुनने वाले सभी श्रोताओं को राजेश का नमस्कार। दोस्तों, मन भावन कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं वो गीत जो आपके मन को भाते हैं, और इन गीतों को सुनने के लिए आपने हमें लिख भेजे हैं ढेर सारे पत्र। तो आइए शुरू करते हैं पत्रों का और गीतों का सिलसिला। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तुम्हारी नजर से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का युगल स्वर, रवि का संगीत, साहिर लुधियानवी के बोल, माफ करिएगा, फिल्म का नाम है दो कलियां। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है, रवि का संगीत, साहिर लुधियानवी के बोल, और पसंद करने वाले श्रोता है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, सदर जबलपुर से लखन राही, लक्ष्मी राही, अंकिता राही, सिद्धार्थ राही और सृष्टि राही, बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने और चंचल, अर्जुन गवनेकर और धीरज सव्वासेरे, आदर्श नगर मलोट पंजाब से पत्र प्राप्त हुआ है और ये श्रोता है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा, महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजय, राहुल कुमार, विशाल, शीला और गायत्री, खुर्दी रोड मानपुर से विजय, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद और उनके परिवार के सभी सदस्य।

लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वलीउल्ला फकीर, डब्लू उल्ला फकीर और परवीन आसमा फकीर, बुलंदशहर से बदरू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी और फर्जी वली अंसारी, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से पत्र भेजने वाले ये श्रोता हैं, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, शोएब सायमा, पोतरा मुस्ताबा, पोत्री आफिया खान, राउफ भाई, शहीद भाई, गानीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशालीन कटनकर। हमारे इन सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है कुमार सानू को, फिल्म क्रिमिनल, MM करीम का संगीत और इंदीवर के बोल।

फिल्म क्रांति में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश को। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत लिखा है संतोष आनंद ने। इस गीत को पसंद किया है हमारे जिन श्रोताओं ने, उनके नाम है सर्वानिया महाराज, जिला नीमच मध्य प्रदेश से, गोविंद पाटीदार, ममता पाटीदार, पूजा पाटीदार, मधुसूदन पाटीदार, यशस्वी पाटीदार, हंसवी पाटीदार, बर्गीनगर जबलपुर से रविंद्र गदे, सुभाष गदे, दिगंबर गदे, राजेश गदे, शिवम शुभांग व सृष्टि गदे, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र औसनमती, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया।

आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम का अगला गीत, इसे हमने लिया है फिल्म रंग से। नदीम श्रवण का संगीत, अलका याग्निक और कुमार सानू, पी सुनंदा का स्वर और गीतकार हैं समीर। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं तीन महुआ खापरखेड़ा जिला रायसेन से, तुलसीराम साहू, मुकेश कुमार साहू, हेमंत कुमार साहू, आरती ममता गोमती रागनी और फ्रांसिसी साहू। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले। कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा गुजराती, महिमा हर्षिता, भूमिका मुस्कान और अभय गुजराती। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। साथ ही पत्र भेजने वाले श्रोता हैं आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत, सरिता और प्रिंस एकांश। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली,

शैलेश, सुमित और कुमारी ध्वनि, सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा आज का फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन अब संपन्न होता है। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने श्रोताओं के ज़्यादा से ज़्यादा पत्रों को कार्यक्रम में शामिल करें। जिन पत्रों को हम आज अपने कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाए, उन्हें हम अपने अगले कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। इस वादे के साथ अब अपने रेडियो दोस्त राजेश को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश

0: दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi has said when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Vikasit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister urged states to focus on one district, one product initiatives and developed export-oriented strategies around it. He also identified defence manufacturing as an emerging sector where India is establishing a distinct identity and encouraged the states to formulate policies to leverage the opportunities arising from its growth. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047. Briefing media after the conclusion of the Governing Council meeting, Niti Aayog Vice Chairperson Ashok Kumar Lahiri said the theme covers all aspects of life, including education, health and employment.
2: The topic for the Governing Council meeting was Inclusive Human Development for Vikasit Bharat 2047. And it was about details. The states talked about what they're doing. Inclusive Human Development covers all the 4 stages of life, from childhood to youth to working life to old age. A skilled population is the key to success.
1: A tripartite memorandum of understanding MOU was signed between the centre and the governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas along the Assam-Nagaland border. The MOU was signed in New Delhi in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and Nagaland Chief Minister Naifiu Rio. Speaking on the occasion, Mr. Shah termed it as a historic moment, as this initiative will enhance the prospects of oil and natural gas exploration and opens up possibilities for mineral mining as well. India strongly condemned the recent attack on Palau-flagged tanker MT Setebalo off the coast of Oman, in which 3 Indian nationals lost their lives. Addressing an inter-ministerial media briefing in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that in this regard, the government has lodged a strong protest by summoning the US Charge d'Affaires. Mr. Jaiswal noted that the continuing attacks on shipping in the region are deeply worrisome and linked to the ongoing conflict.

है। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर हम पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे अपने कल के कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।

0: सर टेस्टिंग यहाँ की कर ले। मेरी आवाज मिल रही सर आपको? माइक नंबर 2 की आवाज मिल रही सर? माइक नंबर 2 की आवाज मिल रही है सर? घड़ी लाई कंसोल घड़ी 5:15:58.60 और स्टूडियो घड़ी 5:16:33.34.35 वर्क स्टेशन 1 की टेस्टिंग दे रहा हूँ सर। वर्क स्टेशन 2 की टेस्टिंग दे रहा हूँ सर।
1: लाला लाजपत राय ने कहा था